0: क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ आसमान और जमीन में है अल्लाह उसको जानता है, ये सब कुछ किताब में लिखा हुआ है, बेशक ये सब अल्लाह को आसान है।
1: वया

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: Entertainment, Hoya updates. यह तुम्हारी हर मूड का दोस्त.

बात करनी ना तुझको सुनानी, सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले हैं फेक, उनके बारे में मेरा है टेक। I don't care what you think, what your emotions are, I'm

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: And now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

101 FM。

0: FM 101 आपके मन की आवाज, आपके दिल की धड़कन।
1: Cruising on your FM dial. This is 101 FM.

0: सुन रहे हैं FM 101।
1: मौसमियाती तब्दीलियों के बाद दर्जा हरारत में हालिया इजाफे से हीट वेव का खदशा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर PDMA पंजाब अलर्ट। मुमकिना मुतासर अजला में हीट वेव कैंप्स का क्याम। दूर दराज इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील्स, जबकि अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स और अद्वियात की फराहमी। थल, चोलिस्तान और जुनूबी पंजाब में गर्मी और हब्स की शिद्दत में मुतवक्को इजाफे के पेश नजर साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर बाउजर्स के साथ साथ टोबाजात में मवेशियों के लिए 24 घंटे पानी की यकीनी फराहमी और हब्स वाले इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अवाम भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। गर्मी में बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। धूप में निकलना जरूरी हो तो सर को ढांप कर रखें। वक्फे वक्फे से पानी और मशरूबात पिएं। ढीला ढाला और हल्के रंग का सूती लिबास पहनें। सख्त धूप में मशक्कत वाला काम न करें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। हीट वेव में एहतियात, महफूज हया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब।

0: सुन रहे हैं FM 101।
1: मौसमियाती तब्दीलियों के बाद दर्जा हरारत में हालिया इजाफे से हीट वेव का खदशा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर PDMA पंजाब अलर्ट। मुमकिना मुतासरा अजला में हीट वेव कैंप्स का क्याम। दूर दराज इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील्स जबकि अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स और अद्वियात की फराहमी। थल चोलिस्तान और जुनूबी पंजाब में गर्मी और हब्स की शिद्दत में मुतवक्को इजाफे के पेश नजर साफ पानी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर बाउजर्स के साथ साथ टोबाजात में मवेशियों के लिए 24 घंटे पानी की यकीनी फराहमी और हब्स वाले इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अवाम भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। गर्मी में बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। धूप में निकलना जरूरी हो तो सर को ढांप कर रखें। वक्फे वक्फे से पानी और मशरूबात पिएं। ढीला ढाला और हल्के रंग का सूती लिबास पहनें। सख्त धूप में मशक्कत वाला काम न करें। बच्चों बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। हीट वेव में एहतियात महफूज हया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हुकूमत पंजाब।
2: And now you are tuned into
3: FM 101.

0: now you're tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.
3: FM 101.

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मनाजिर हुसैन से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद को फरोग देने में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के किरदार को सराहा है। नायब वजीर आजम ने बैन अलाक़वामी क़वानीन और माहिदों की पासदारी यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। आमदात में एक तारीखी संग मील अबूर करते हुए गुज़श्ता माली साल 4.5 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बरामदात की हैं। और यूनिसेफ की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि अफगानिस्तान को खुराक के शदीद बहरान का सामना है, जिससे 90% बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। और अब खबरें तफसील के साथ।
1: This is FM
2: 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम एफएम 101 सुनने वाली तमाम खूबसूरत स्मार्टों को इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खैर वाफियत से होंगे, जिंदगी के रंगों को खूब एंजॉय किया जा रहा होगा और वहां उस एंजॉयमेंट में एफएम 101 को अपने साथ रखे हुए होंगे। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ आपकी अपनी आरजे ज़ुबैया शफीक, आपके अपने प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज में। लेडीज लाउंज में मेरा आपका साथ हुआ करता है हर मंगल की सुबह 11 से 1, वादे के मुताबिक आ गई मैं। कैसे हैं आप? आप तमाम को कहते हैं वेलकम। जो हमारे प्रोग्राम का इंतजार कर रहे थे उनका हुआ इंतजार खत्म, और जो इधर उधर घूमते घामते हमारे पास आ गए, ट्यून इन किया और सामने से इतना खूबसूरत सा म्यूजिक सुना और फिर इतनी सुरीली आवाज, हाय। आपको ये यकीन दहानी दिलाते चलूंगी कि आपका आज का ये जो रैंडमली कहीं किसी भी प्रोग्राम में जाना है ना, इसका फायदा ही होगा, नाकामी और मायूसी नहीं होगी, कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, कोई ना कोई बात, बिकॉज हमारे लिस्टर बड़े ही समझदार हैं। आपने हमारे साथ रابطہ करना है, رابطے का नंबर शुरू में बता देती हूँ ताकि आपको बार बार जो है वो मसले मसाइल ना हो। आप हमारे साथ رابطہ कर सकते हैं थ्रू दी कॉमेंट्स, एफ एम 101 के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कॉमेंट करेंगे, कॉमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। 14th of July है आज, मिड हो गया जुलाई का, पूरे एक महीने बाद हम कहेंगे जी आज 14th of August है। हाय हाय मजे। इसके अलावा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, आप मैसेज के राइट ऑप्शन में जाएंगे, 101 स्पेस नाम पैगाम सेंड कर देंगे, उसको 4471 पे 4471 पे भेजे गए पैगाम मुझ तक पहुंचेंगे, मैं उनको ऑन एयर शामिल करूंगी। और इसके साथ भी आपने एक और काम करना है, आपने करना ये है कि आपने ना मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ऑफ एयर कॉल का सिलसिला थोड़ा बहुत मैं साथ में रखूंगी।
1: मैं आली वाली
0: 0422111001 डायलिंग नंबर। बहुत सारी बातें करनी है आपसे, हीट वेव चल रहा है जनाब, गर्मियां शदीद, बादल के साथ भी बहुत ज्यादा हब्स, इस सारी हब्स को कंट्रोल कैसे किया जाए, खुद को हीट स्ट्रोक से कैसे बचाया जाए, ये सारी बातें मैंने आपको बता के जानी है। आपको पता है ये तो मेरा काम है, मैंने आपको बताते जाना है, मनना ना मनना तड़ी मर्जी, मान जाएंगे तो अच्छी बात है। मैसेजेस करें मुझे, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे पता चले कि आप जो है ना वो इंतजार कर रहे थे। एवं कई जान दियो हमें इंतजार था, हमें इंतजार था, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानूंगा ऐसे।
1: मेरा पी
0: जी बड़ा ही एक
1: यदे मुर्तजा
0: ब्यूटीफुल सा कलाम आप तमाम के लिए, इसको सुने, जरा सुन के वापस आए, फिर मैं आपके आपसे बात करती हूँ ना, बताती हूँ ना आपको, सुनाती हूँ आपको, वो खरी खरी सुनाने वाली नहीं, कुछ बातें जो मैंने आपको बतानी है, पूरा हफ्ता मैं याद करती हूँ, ये बात याद रखनी है, ये मैंने जाके अपने प्रोग्राम में बतानी है, ये इंसिडेंट हुआ ये तो जाके मैंने अपने रिश्तेदार को बताना है ना, लेकिन फैमिली है ना हम, फिर बताना तो बनता है ना, स्टिक अराउंड।

0: वेलकम बैक,
1: दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी जुबिया शफीक। आपका अपना प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज, और लेडीज लाउंज में हमारे साथ हादसातों वाकयात होते रहते हैं। पता नहीं चलते चलते मुझे लगता है किसी को कुछ ख्याल आ जाता है, वो कहते सीधा सीधा चल रहा है सब कुछ, हल्ला दो, उलट पलट दो सब कुछ और फिर उलट पलट जाता है सब कुछ। एनीवेज जी, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। हमें अनिला अपी की कॉल आई, उनकी बेटी हुमैरा की बर्थडे है। अनिला अपी, मैं अभी जो है ना वो आपका रिलेटेड सॉन्ग भी लगा रही हूँ, हुमैरा मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। पाक आपके नसीब बहुत अच्छे करे और इस तरह की हजारों लाखों बर्थडेज आपको नसीब करे। लाखों कैसे करे वैसे, दसो हैप्पी बर्थडे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स। जी हमें साजिदा की कॉल आई, कहती है बड़े प्यार से मुझे कहते हैं जुबिया की दीवानी। मैंने कहा ना करया करो, सबको यही कहती हो आप, सबको कहती है ये। एक दफा पता क्या हुआ, एक दफा कोई कंबाइन प्रोग्राम था, मैंने कहा साजिदा आप वो बात बोलो जो मुझे बोलती है, आए बाएं दाएं शाएं, मैंने कहा ना कर कुड़िए। साजिदा बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम का जी बहुत बहुत शुक्रिया। हीट वेव की बात मैं कह रही थी, मैं कह रही थी कि गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है, और गर्मी जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से सन स्ट्रॉक होता है, और इसके साथ साथ क्या होता है, मसला ये होता है कि अक्सर उकात धूप नहीं होती लेकिन हब्स इस कदर ज़्यादा होती है कि आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, और जब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो डिहाइड्रेशन होती है, जिसकी सूरत में आपने पानी का इंटेक अच्छा रखना है। कोशिश कीजिए पानी की एक बोतल लें और उस बोतल में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी मिलाकर उसको मिक्सअप करें और उसको पीते रहें, इससे आपकी नमकियात की कमी जो है, नमकोल खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप जो है ना वो अच्छे से पानी की कमी आपकी पूरी होती रहेगी। पोस्ट को अपडेट में कर चुकी है एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे, और मुझे कौन कह रहे थे कि आपकी प्रोग्राम का इंतजार बहुत ज्यादा होता है, हफ्ता बहुत लंबा लग रहा होता है। मैं क्या, मुझे तो लग रहा है अभी कल की बात है, वैसे दिन इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं, महीने इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है। मैंने कहा कोई किसी की तारीफ करता नहीं है, लेडीज लाउंज प्रोग्राम है, खवातीन की वैसे भी तारीफ की जाए, खवातीन बहुत खुश हो जाती हैं, कहते हैं खवातीन जो है ना वो पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखते हैं, और आप उन्हें सिर्फ इतना कह देना कि तुमने कितने अच्छे तरीके से ये काम सर अंजाम दिया, बेचारियां खुश हो जाती हैं। मासूम, इतनी मासूम होती है ना खवातीन, जितनी मर्जी मुझे लगता है कभी कभी कि, और मुझे लगता है कि ये सही बात भी है कि खवातीन जितनी मर्जी तेज हो ना फिर भी बड़ी भोली होती है, छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती हैं। आज चावल पके हैं, रोटी नहीं पकानी पड़ेगी, खुश हो गई। लाइट नहीं गई आज, मशीन लगानी थी, खुश हो गई। बिरयानी बनानी थी, बिरयानी मसाला घर से निकल आया, खुश हो गई। दही के साथ चटनी बनी हुई है, खुश हो गई। मतलब ये छोटी छोटी खुशियां हैं, और मुझे लगता है कि ये खूबसूरती है। खातूने खाना ये, और जो लड़कियां हैं, जो खवातीन हैं, उनकी खूबसूरती है कि वो छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाती हैं। लाइक उनको आप गिफ्ट के नाम पे चूड़ियां दे दो, खुश हो जाती हैं। अब कुछ एक स्पेसिफिक एक सर्टन वो होता है, खवातीन की एक किस्म होती है जो इतनी चीज़ों से खुश नहीं होती होंगी, अगर कोई मुझे ये कहे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो मुझे लगता है मेजॉरिटी यही होता है। अम्मियों की अगर हम बात करते हैं तो अम्मियों को किचन की कोई एक्सेसरीज ला दो ना, अम्मियाँ इतनी खुश, वाह। तो ये सारे मामलात होते हैं खवातीन के साथ। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपसे क्या पूछने वाली हूँ, बात तो ये मैं सारी खवातीन की कर रही थी, बात ये मैं कह रही थी कि आपने मुझे ये बताना कि कोई एक ऐसा काम अगर कोई आपकी तारीफ नहीं करता तो चलो अपनी तारीफ खुद ही कर लो ना, कोई एक ऐसा काम जो आपको लगता है आपसे बेहतरीन, आपसे अच्छा वो काम कोई नहीं कर सकता, ये आपने मुझे बताना है। बताने का तरीका क्या है, एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे जाना है, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कॉमेंट करना है, और कॉमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाना है। यहाँ पे क्या करने लगी हूँ भला, मैं एक अदद गाना लगाने लगी हूँ, और इस गाने के बाद मैं वापस आती हूँ और फिर मैं आपसे मजीद बातचीत करती हूँ। आप कॉल कर सकते हैं 04221100101, कॉमेंट करें ना मुझे। आज वैसे मैं बड़े अच्छे अच्छे गाने लेकर आई हूँ, लगाने हैं मैंने। दिस इज फॉर यू जो हमें सुन रहे हैं, वैसे मैंने वीडियो भी बनाई है, जो वीडियो में हमें देख रहे हैं ना उन तमाम के लिए भी ही स्टिक अराउंड।

वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियोस, मी जुबिया शफीक, आपका अपना प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज। तो क्या बात कर रही थी मैं आपसे पूछ रही थी कि आप तो मुझे ये बताना है कि कोई एक ऐसा काम जो आपको लगता है कि आपसे अच्छा, आपसे बेहतर, आपसे बेहतरीन कोई नहीं कर सकता। और आप कहते हैं अक्सर औकात होता है ना खवातीन की, अगर हम बात करें तो खवातीन कहती है कि मैं ना हुंदी ते तेरे नाल किन्ने निभाना सी, मैं ही आ जो निभा गई हां। ये तेरी तलख कलामिया कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो हम में तुम में निभा है मेरे हौसले का कमाल है। हाय हाय क्या क्या याद आ जाता है। तो ये है कि आपने मुझे ये बताना है, एक छोटा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। वो एक काम आपने मुझे बताना है। हाली नूर हमारे साथ आ गई, बिल्कुल सामने मेरे उसका मैसेज आया, कहती हाय चंदा। एक बड़ी ही अच्छी दोस्त, थैंक यू सो मच हाले, अपनी नींद को ख़राब करके। वैसे तो 12-12 एक बजे तक ये लड़की नहीं उठती, लेकिन जिस दिन मेरा प्रोग्राम होता है मैं हैरान हो जाती हूँ जब कभी इसका मुझे मैसेज आता है पूरे 11 बजे। आज बल्कि इसका मुझे पौने दस बजे हाँ मैसेज आ गया, कहती उठ जाओ, 50 पराठे बना दिए हैं, नाश्ता करो और FM चली जाओ, तुमने प्रोग्राम भी करना है। मैं कहता डा पला हो गया, आजकल मैं पराठे छड़े हुए, बहुत टाइम हो गया पराठे छोड़ दिए। कुछ पैगाम आपके मेरे सामने मौजूद हैं, उनको मैं साथ में शामिल करना चाहूंगी ताकि आप मजीद पैगाम भेजिए। बड़े तेज हैं आप भी कहती हैं पिछले मैसेज पहले पढ़े ना, बाद में अगले मैसेज, नेक्स्ट मैसेज बाद में करेंगे। एम रिजा चौधरी साहब आ गए, ढेर सारी इतनी सुबह सुबह इतनी, ये इंसुलिन जो है ना वो रेजिस्टेंस वाली चीज़ें हैं, आपकी स्पाइक हो जाती है। एम रिजा चौधरी साहब तो मिट्टी चाय और ऊपर से रस और बिस्किट आपने मुझे भेज दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फ्लावर्स भेजने का ये काफ़ी वाला मामला सही है कि ये जो आपने आजकल दिल को लगी हुई है। वैसे मेरे, मैं सुबह के टाइम पे बस यही नाश्ता कर रही हूँ, लेकिन हाँ एक बात का ख्याल रखिए, कॉफ़ी पीने से पहले जो लोग कॉफ़ी लवर हैं, ब्लैक कॉफ़ी जो पीते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी कि पानी कॉफ़ी पीने से पहले जो है ना, कॉफ़ी पीने से पहले पानी का इंटेक लाजमी तौर पर करें, 1 से 2 गिलास जो है ना वो अपनी रूटीन का हिस्सा रखें और उसे पिया करें लाजमी। कोशिश किया करें कोई ना कोई हर्ब जो आपको सूट करती है ना उसको उस पानी में भिगो दिया करें रात को, और फिर उसके बाद सुबह उठ के, कई लोगों को सौंफ सूट कर रही होती है, सौंफ भिगो दिया करें या उसका पानी बना लिया करें, जैसे वो अर्क टाइप होता है वो बना लिया करें, उसको पी लिया करें। तो 1 से 1.5 गिलास जो है ना वो आपने पहले पीना है, आफ्टर दैट आपने जो है ना वो कॉफ़ी लेनी है। बिकॉज अब जब आप डायरेक्ट कॉफ़ी लेते हैं ना तो अक्सर लोगों को जो है ना वो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हो जाते हैं, या फिर उनको क्या होता है, एसिडिटी के प्रॉब्लम होते हैं, फिर डिकार आने लग पड़ते हैं, कुछ खाया पिया नहीं जाता। और ख़ासकर जो IBS के पेशेंट हैं ना, मेरे सामने एक बंदी बैठी हुई है और उन्होंने इतना अजीब सा मुंह बना लिया, मैं बताती हूँ ना मैं किस लिए हूँ, जब मैं कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज बोलूँ तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करती होती हूँ। आंतों की सोजिश या आंतों के मसाइल हैं जिनको, जिनका मैदा जो है, जिनका स्टोमिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो कमज़ोर है, सेंसिटिव है, तो वो जो पेशेंट है ना वो खासकर कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत कम किया करें या ना किया करें। सिट्रस जो फूड हैं या सिट्रस जो आपके है, जितना भी आप इंटेक करते हैं उसका इस्तेमाल भी डायरेक्ट कम किया करें, इनडायरेक्ट लिया करें, बिकॉज आपके मैदे में भी ऑलरेडी एसिड बन रहा होता है, और इस सूरत में जो होता है ना वो IBS की सूरत में एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा होता है, और वो एसिड इस कदर ज़्यादा बन रहा होता है, मैं आपको एक छोटी सी, यहाँ मैं पूरा डॉक्टरी ना खोल के बैठ जाऊँ, यहाँ मैंने कहा थोड़ी सी चीज़ें ये जो है इन्फॉर्मेटिव होती हैं जो हमारे हर जानने वाले को, हर सुनने वाले को समझ होनी चाहिए। मसला ये होता है कि हमारे मैदे के दरमियान अराउंड में ना एक झिली होती है, ठीक है, वो झिली क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है हमारे मैदे को। जब IBS का प्रॉब्लम होता है ना, और ये जो जब ये मसला आता है ना, तो वो झिली जो होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जब वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और वो झिली इतनी प्रोटेक्ट करती है कि जितने भी हमारे जो भी हम खाते पीते हैं ना वो हज़म होते हैं और वो उसको जाके लगते नहीं, हमारे मैदे को डैमेज नहीं करते। जब वो झिली ख़त्म होना शुरू होती है ना, फिर वो मैदे को डैमेज की दीवारों को डैमेज करना शुरू होते हैं। उसका भी नुकसान ये होता है जनाब, उसका नुकसान ये होता है कि आप कुछ भी खाते हो, अक्सर आपके पास ख्याल आता है यार खाते हो ना तो जलन होना शुरू हो जाती है, एसिडिटी होना शुरू हो जाती है, डकार आना शुरू हो जाते हैं खट्टे, इसके साथ पेट फूल जाता है, कोई भी चीज़ खाते हो लगता है जाकर ठा लगी है मैदे पर, ये सारे मामला तब होते हैं। देखा मैं कितनी अच्छी हूँ। इसका आपने एक सिंपल सा हल बताऊं, सुबह के टाइम ना योगर्ट इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें,
एक होता है आप जो जाके डिफरेंट बैक्टरीज से दही लेते हो, वो दही नहीं इस्तेमाल करना. दही वो इस्तेमाल करना है या तो फिर जो वो कुंडे में लगा हुआ होता है, या घर में लगाएं तो सबसे बेस्ट है. तो उस दही का इस्तेमाल करें, हल्का सा बीच में जीरा डालें और हल्का सा नमक डालें. और इसको आप मॉर्निंग में जो है ना वो चीनी डाल के इस्तेमाल ना करें, नमक हल्का सा और हल्का सा जीरा डाल के जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा. ये सारे मामलात मैंने कहा आपके साथ डिस्कस करूं, इतना कुछ मैंने बता दिया. अब एक गाना आपको सुनाना बनता है ना, एक गाना आपको सुनवाते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक और आप तमाम के नाम. और यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, जिसने आज पहली दफ़ा, जिन्होंने हमें आज पहली दफ़ा ट्यून इन किया उनको बता दे चले कि FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाइएगा, वहाँ पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कॉमेंट कीजिएगा, कॉमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाइएगा. लिसनर्स सुने ना ये लवली

दूंगी उन्हें, समझ रही है ना नीरा आपी, आप समझ रहे हो ना तुसी? हाँ बस वही बात जो आप समझ रही है ना, वही वो कहना चाह रहे हैं। खैर जी, आज रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 में आपको जैसे पता है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। हर दफ़ा जब मैं आती हूँ ना, नए नए चेहरे मेरे सामने होते हैं, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत क्यूट क्यूट और बड़े एनर्जेटिक और बड़े सवाल करने वाले बच्चे, जेन जी के बच्चे, और सवाल ना करें, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तुसी उन्होंने जवाब दे के जाना है। जो बात आप उन्हें समझा रहे हैं ना, वो आपसे पूछेंगे कि ये क्यों समझा रहे हैं, क्या वजह है इसके बिहाइंड से। और यहाँ हमें टीवी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्रीज़ के बहुत बड़े बड़े नाम भी देखने को मिलते हैं, और माशाल्लाह ये काविशें तो आपको पता है किन की हैं। हमारी पूरी मैनेजमेंट बहुत ही ज़ौक और शौक से इसके साथ लगी हुई है, और ये आरजे डॉक्स, इसका सेहरा जो है ना, वो स्पेसिफिकली उनके सर पे जाता है। बहुत अच्छे से चीज़ें उन्होंने मैनेज की, लेकर चले, और हर हर्डल को साइड पे करके उन्होंने कहा कि तुसी ये काम करो, आगे के जो हर्डल्स हैं ना उनको मैं जानूँ, मेरा काम जानूँ। ये मैनेजमेंट वाला और ये जो होता है ना, ये लीडरशिप वाला एक जो काम होता है, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मुझे लगता है लीडरशिप बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर वो तो ऑलराउंडर हैं माशाल्लाह से। एनीवेज जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे आपने बताना है कि ये जहाँ बात हो रही ना कि आपसे बेहतर काम कोई नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि ये बात, अगर वो मुझे सुन रहे होंगे, वैसे तो नहीं सुन रहे होंगे, अगर सुन रहे होंगे तो फिर लीडरशिप उनसे अच्छी मैंने नहीं देखी। ये किसी किसी का काम होता है, नो डाउट। एनीवेज जी, कुछ मैसेजेस, कुछ पैगाम मेरे सामने आपके मौजूद, उनको मैं साथ में शामिल करती हूँ ना। अच्छा, ये अपने बीजीएम पे मेरा खुद ही झूमने को दिल करता है। आज का दिन की रूटीन इतनी हैक्टिक है ना, मैं सुबह सोच रही थी मैं घर आने दो, कुछ नहीं करती, सोती रहती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं नहीं यार, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, उधर तो जाना चाहिए। अच्छा रियाज भट्टी साहब, ये आप क्या बताना चाह रहे हैं, 2026 अल्लाह वाले हो, अद्धा भी नंग गया, मतलब ये 7th मंथ जा रहा है और आधा गुजर गया वो भी, तुम 2026 पर जी जा रहे हो। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। मलिक मोहम्मद आदिल हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, आरजे जुबैर शफीक एंड ऑल आरजे एफएम 101 लाहौर। और शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह खैर। अमरजा चौधरी साहब ने बहुत सारे सलाम भेजे, सलाम भी किया, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम कहती हैं, स्पेशल सलाम हमारा बेग। ओके जी, आपके स्पेशल वाले भी पहुंच गए, और जो आपने, अच्छा इन, अच्छा अमरजा चौधरी साहब, मैं बताती हूँ जरा, ये देखें, ये एक मैसेज करते हैं उसमें सारों के नाम लिखते हैं और सलाम भेज देते हैं, फिर एक मैसेज ये स्पेशल लोगों को भेजते हैं। ये जरा ना मेरे आए फेसबुक पे आए लोग सारे, और आके देखें जरा, ये देखें, आपको नॉर्मल सलाम करती हैं और फिर स्पेशल सलाम भेज देते हैं। लिखना अमरजा चौधरी साहब, लोग आपसे पूछेंगे है कि मसला। शमसी रेडियो लिस्टर क्लब लाहौर की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं हम आपको खूबसूरत शो करने पर, और दो दो दो दो दो दो। शमसी रेडियो लिस्टर क्लब जो है ना, ये बहुत अच्छा भई है, इसमें हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे कॉलर्स जब आते हैं तो वो बताते हैं। अब्दुल रफीक हमारे साथ थे फरुखाबाद से, बर्फी वाले। अच्छा, अब मैंने नाम को अगर मैंने थोड़ा सा कर गई हूँ प्रोनाउंसिएशन में तो माफ़ी, लेकिन बर्फी वाले हैं वो कहते हैं कि मैं बर्फी बहुत अच्छी बनाता हूँ, ये मेरा हिडन टैलेंट है, आई एम टैलेंटेड।

कमल नाज आ गई हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम कहती हैं कैसी हैं आप आरजे जुबे शफीक। वेलकम जी आया नू, और आपने फ्लावर भेजा, बहुत शुक्रिया जी। ये भी शमसी लिस्नर रेडियो क्लब की तरफ से है। मुझे लगता है कि ये शमसी रेडियो लिस्नर क्लब वालों ने ना, इनके जो एडमन है ना, जो भी हैं, सुबह सुबह ना वो कहते हैं कि जिसका भी मैसेज गया और जिसने भी कॉल की, अगर आपने लिस्नर क्लब का नाम ना लिया तो आज क्लास के विच तुहानू कन्न फड़ाए जाएंगे। है ना, बात ऐसी है ना कुछ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग्स आ रही हैं। हम कॉलेज में जब होते थे ना, तो तब होता था कि हमारे बैच बने होते थे डिफरेंट, तो हम अपने बैच जो हमारा जो होता था ना, स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करवाते थे। तो ये जो नहीं करवाता था ना, उसको फिर जो है ना, वो इस तरह के मामला तो होते होते थे कि भाई तुम भूल गए, तुम्हें नहीं पता था, इंट्रोड्यूस करवाना था तुमने पूरा मासूम बचपन।

गुमराह जवानी, मोहताज बुढ़ापा, बेरहम मौत, बस यही जिंदगी है प्यारे, है ना प्यारे। अफजल प्यारे देखा था किसी ने? क्या और क्या ड्रामा था अफजल प्यारे। खलीलुर रहमान कमर का लिखा हुआ ड्रामा था, और आपको पता है खलीलुर रहमान कमर साहब लिखते हैं तो फिर छा जाते हैं वो। और अफजल प्यारे और उन्होंने हमजा अली अब्बासी ने इस पर एक्ट किया था, साथ में थी, क्या नाम है उस लड़की का, प्यारी सी जो लड़की है, आयजा खान। बड़ा अच्छा एक ड्रामा था। अच्छा जी, हमारे साथ शायर कसूर खरल बट्टाकोट, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त शो, आवाज की दुनिया की शहजादी। हाय हाय, वे शर्म आ गई, शमू आ गई है, शमू, बहुत शुक्रिया जी। कहते हैं आरजे मुस्कान के नाम एक गाना लगा दे। अच्छा जी, यहाँ पे एक गाना जो मैंने लगाना है ना, वो गाना मैंने लगाना है अनीला आबी की बेटी के लिए स्पेसिफिकली, और उन्होंने मुझे स्पेशल कहा कि मुझे ये गाना बड़ा पसंद है, इसलिए यही गाना आपने लगाना है। मैंने कहा जी ठीक हो गया। मेरा उस शख्स से बस इतना सा ताल्लुक है, उसे जब दर्द होता है मुझे महसूस होता है कैसे, जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशाई। ये नहीं सुना आपने हैं कमल, बताएं जरा। असी ताड़ा इंतजार कर रहे सी, मैं सुबह, मैं कहनी अगली बारी तो सुबह 8 बजे ना आइए मगर। अच्छा जी, आकाश अली हैं, सन ऑफ सहर नकवी हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका। अली फरमान हमारे साथ हैं, वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। माज अली हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, मैं हूँ माज अली पिशावर। ओके, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद हमजा खैमटा, ये खैमटा क्या है, नहीं प्रोनाउंस नहीं सही किया। मूसा वाली पिपला से आप हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद शहजाद, अच्छा आज माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मेरी नज़र ही ना लगा दे, बड़े अच्छे अच्छे बड़े नए नए नाम मेरे सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम का, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप मैसेजेस कर रहे हैं। ये जो गाना मैं लगाने लगी हूँ, ये मैं आप तमाम के नाम लगाने लगी हूँ, होपफुली आपको पसंद आएगा। एक एरा होता है ना किसी भी चीज़ का, अपने एरे का कमाल ड्रामा और कंपोजिशन, लेकिन मैं देख नहीं पाई अभी तक। अच्छा मेरे साथ मामला पता क्या होता है, मेरे साथ मामला ये होता है कि ड्रामा चल रहा होता है तो मैं कहती हूँ, जैसे अभी जंजीरे चल रहा है तो मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा ड्रामा है, मुझे उसकी कास्ट बड़ी पसंद है, मुझे उसके जो सीनरियाँ हैं ना, जो उसका एक्ट जहाँ पे हुआ हुआ है, जहाँ उसकी वो सारी ड्रामा बना हुआ है, वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसको देख इस वजह से नहीं पा रही कि मुझे लगता है कि जब वो ख़त्म होगा ना, वो ड्रामा जब ख़त्म होगा तब मैं उसको देखूंगी और फिर उसके बाद फिर उसके रिव्यूज़ दूंगी। लेकिन बाज़ दफ़ा इतना ज़्यादा वो मसला दरपेश आ जाता है कि वो ड्रामा गुजर जाता है और उसके बाद मुझे वो भूल जाता है। तो ये तेरा मेरा है प्यार अमर, और ये ड्रामे का नाम क्या था भला, नाम थोड़ा सा मेरे माइंड से, इश्क मुर्शद नाम था, और ये ड्रामा भी इसी वजह से मेरे से स्किप हो गया कि मैंने कहा कि ये गुजरेगा तो फिर मैं इसे देखूंगी। एनीवेज जी, यहाँ पे ये गाना मैं लगाने लगी हूँ, नीला आपी की बेटी का नाम, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे से रिलेट करता गाना नहीं है, लेकिन आपकी पसंद का गाना है, और उन तमाम लिसनर के नाम जिन्होंने हमें आज फर्स्ट टाइम मैसेज किए, ये ढेर सारे जो आपके पैगाम आ रहे हैं ना, आप तमाम के लिए इंजॉय कीजिएगा दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। मैसेजेस कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा, एफ एम 101 के ऑफिशियल पेज पर जाइएगा, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, इस पर कॉमेंट करके मैसेज शामिल हो जाइएगा। 0422111010 डायलिंग नंबर। 12 बजे के बाद ऑन एयर कॉल लूंगी, अभी ऑफर जा रही है, इसलिए जब मैं ऑन एयर आती हूँ ये टन टन टन टन ना किया करें।

खोया अपने जी. वेलकम बैक, दिस इज एफएम 1:53 और आज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने मुझे बताना है कि ऐसा कौन सा काम है जो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता. रजा चौधरी साहब हमारे साथ थे, कहते हैं कि मुझसे बेहतर, मुझसे ज़्यादा मैसेजेस हिस्ट्री में एफएम पे कोई नहीं कर सकता. मैंने कहा ठीक हो गया, मैंने कहा चलें आज फिर ना मैं ये कहती हूँ इनको कि रजा साहब ये कहते हैं. वो कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा कॉमेंट करके दिखाओ ना, मैं भी देखूँ कौन करता है. अच्छा जी, वाह जुबिया वाह, कमल क्या हुआ. अच्छा नाइस सॉन्ग, सॉन्ग पे कहा आपने. अच्छा हमारे सामने मैसेज है जी, लड़के आ गए हो तुम, कहाँ था तुम्हारा मैसेज गुम गया मुझसे, कुछ मैसेजेस गुजरे मेरी नजर से. अब्दुल रहमान रहमान हमारे साथ है, कुछ शायरी भेजी, बहुत शुक्रिया जी आपका. हम तस्लीम, वो कहते हैं कि उसे हम याद आते हैं फकत फुर्सत के लम्हों में, मगर ये बात भी सच है उसे फुर्सत नहीं मिलती. ओए होए दुखी बेचारा. आगे वो कहते हैं हम तस्लीम करते हैं, ये दूसरे शायर का मुझे कंफर्म नहीं है ना इसलिए मैं शायर का नाम नहीं ले रही. कहते हैं हम तस्लीम करते हैं हमें फुर्सत नहीं मिलती, मगर जब याद करते हैं जमाना भूल जाते हैं. ये तो बात ना हुई कि अपने मुताबिक याद करना, और जब आप ईजी नहीं हो तब याद ही ना करना, तब कहना ओके ओके ठीक है सो जाओ, बात नहीं हो सकती अभी मैं बिजी हूँ, ऐसे तो नहीं ना होता था. ऐसे तो नहीं होता था ना. फिर जुबाना भूल जाती है तेरी एक दीद की खातिर, ख्यालों से निकलते हैं तो सदियां बीत जाती हैं, सदियां बीत जाती हैं ख्यालों से निकलने में, मगर जब याद आती है तो आंखें भीग जाती हैं. ओए होए होए होए दुखी लोग. अस्सलाम वालेकुम सजाद अली लाडला साहब आ गए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात, तुहाड़ा शो सत बिस्मिल्लाह जी आया नू. उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगी और आपको सुन के अच्छा लग रहा है. सलामत रहे आमीन, अल्लाह आपको सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, परेशानियों से दूर रखे और आपके नसीब अच्छे करे. बहुत शुक्रिया सजाद, थैंक यू सो मच कि आप आए और मैसेजेस किए. अब्दुल रहमान हमें अस्सलाम वालेकुम कहते हैं. वालेकुम अस्सलाम. ये लड़कियां भी अजीब होती हैं, बर्तनों की वजह से अम्मी से मार खा खा कर ढीठ हो जाती है और फिर नाम रख लेती हैं जिद्दी गर. क्या कमाल बात की है ना, ऐसे ही होता है ना, मुझे भी यही लगता है. रेहाना खान बकर से हमें सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम रेहाना खान बकर, वेलकम टू द शो. हालेलुया, थैंक यू जी. हाले ने मुझे वैसे एक सॉन्ग कहा था, हाले में वो सॉन्ग लगाऊंगी. नाराज हो जाती है लड़की, कहती है मैं तुम्हें जो भी कहती हूँ तुम नहीं लगाती. गाली कोई नहीं है लगा दूंगी. अच्छा जी पाकिस्तानी लड़कियां माफी कैसे मांग. अच्छा खुर्शीद शहजाद जो है ना, मुझे लगता है कि ये इन्होंने ना लड़कियों पे ही मैसेजेस किए हैं सारे आज. दुआ करो. अच्छा पाकिस्तानी लड़कियां दुआ माफी कैसे मांगती हैं, मैं बुरी हूँ ना, दुआ करो मैं मार जाऊँ. होता है ऐसे होता है होता है ना, आप भी ऐसे करती है ना. हाँ दुआ मांगो, मेरी वजह तो ही सारे मसले ना, दुआ करो करो मैं ही मार जाऊँ, सारे मसले तो खत्म हो. जी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने मुझे बताना है कि ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, ये मुझे बताना है. तमाम सुन्नती और उम्मती अच्छा मुसलमान माँ बहनों को सलाम. सजाद ने भेजा, कहते हैं कि कमल कहती है कमल आपका भी मैसेज पढ़ती हूँ. यहाँ हमारी सामने सैम तबस्सुम का मैसेज है. अस्सलाम वालेकुम, बहुत प्यारा शो है, आई एम पेरिस. उसी पेरिस हो आप, पेरिस हैं सैम, आप पेरिस में रहते हैं या आप पेरिस हैं, ये जरा मुझे मैसेज करके बताना. बताना जरा पेरिस फ्रांस का मौसम कैसा है, फ्रांस की कौन सी चीज अच्छी होती है वैसे. खुशबू है ना, खुशबू अच्छी होती है ना फ्रांस की, परफ्यूम्स. तबस्सुम बहुत शुक्रिया, वेलकम आपको कहते हैं, आप फर्स्ट टाइम प्रोग्राम में शामिल हुए, थैंक यू सो मच. सजाद अली लाडला कहती हैं आरजी ग्रीट आरजी जुबे शफीक, पहुंच गया तुसी, पहुंच गए हो तुसी ओ वी. कहते
कहते हैं आज तुसी अच्छा नाश्ता करके आया, कहले कहले नहीं मैंने कॉफी पिया बस, कोई नाश्ता नहीं किया। सुबह सुबह नाश्ता आजकल करने को दिल ही नहीं करता, चाय कॉफी पी लो तो फिर तो वैसे ही दिल नहीं करता। और ये लड़के तुम जो इंग्लिश उर्दू पंजाबी मिक्स मुझे भेज देते हो ना, कख मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। देखा मैं लाइक स्टूडेंट बनने की कोशिश करती हूँ, पढ़ लेती हूँ फिर भी। अच्छा जी, कमल कहती है मेरी तरफ से अभी शमीम आपी की बेटी की बर्थडे है। कमल बहुत कंजूस हैं आप, वैसे जब तक आप तक मैसेज ना पहुंचे तुसी जिक्र नहीं करते, इस तरह है आप कंजूस हैं आज। पराठे भी अकेले नहीं, वो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि पराठे बन गए हैं तो तुम उठ जाओ और खा लो। ऐसा नहीं है कि मैंने खाए। अच्छा यहाँ पे जो है ना वो एक अदद न्यूज़ ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है और आपको भी न्यूज़ ब्रेक की तरफ लेकर चलेंगे और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे कि आपने मुझे बताना है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको लगता है कि आप पे मौजूद है किसी और में मौजूद है। ये आपने मुझे बताना है, बताने का तरीका बहुत ही आसान है। फिर F101 के ऑफिशियल पेज पर जाइएगा, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। इसके साथ साथ अब 12 बजे के बाद मैं कोशिश करूँगी ऑन एयर कॉल, 12 बजे से ऑन एयर कॉल लेनी शुरू करूँगी रात में। अभी मैसेजेस ही मैं पढ़ूंगी इसलिए अभी मुझे ढेर सारे कमेंट्स चाहिए। फिर हम वापस आते हैं। आज मैंने 2-3 गाने सोचे थे, ये गाने मैंने लगाने। तानू दुखी लगते ने लगन, मुझे नहीं पता मैंने लगाने, नहीं नहीं दुखी गाने नहीं लगाने, मुझे मैनेजमेंट की तरफ से अभी कॉल आ रही। क्या चाह रही हो लड़की तुम? स्टिक अराउंड जी।

0: अच्छा सज्जाद मुझे कहते हैं कि मुझे खुद पे इतना एतमाद है कि मैं सारा काम कर सकता हूँ आज जो मुझसे करने वाला हो, लेकिन पोइट्री और सिंगिंग में दिल से डूब के करता हूँ ताकि सुनने वाले के दिल में उतर जाए और उसे पता भी चले कि दिल से गाया है तो दिल तक बहुत अच्छी बात। हाँ, पोइट्री तो आप बहुत अच्छी पढ़ते हो, मैंने एक आध पोइट्री आपकी पढ़ते हुए सुनी है, बहुत अच्छी। और अच्छा जी, आज आंटी फरी को आरजे टॉक सर का नाम याद था, वाह है ना। मैं भी यही कहती, मैंने लास्ट टाइम उन तक पहुंचाई थी ना, मैंने कहा जरा बताएं ना कि किनका नाम ले रही थी आप फिर उन्होंने आज याद रखा। कहती हैं OMG, दिल से निकल रही है जुबिया। अच्छा, दिल से निकल गया, ठीक हो गया जी। 04-2111-0101 हमारा डायलिंग नंबर है, उसको आपने डायल करना है और डायल करके हमारे साथ रहना है। कॉलर लेते हैं और फिर हम गाने पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम।
0: कौन हमारे साथ, कहाँ से?
1: जो रुके तो कोहे ग्रां से हम, जो चले तो जान से गुजर गए, राहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। नाम है अरशद इकबाल द्रक्षा, मकाम और पहचान है मंडी बालदीन
0: जी। ये अपना रेडियो थोड़ा सा बंद कर दिएगा,
1: ये रेडियो बंद हो गया जी।
0: जी क्या कहिएगा
1: जी, आज पहली दफा सुनने का इत्तेफाक हो रहा है।
0: सर दोबारा आएंगे या कहा के गलती कर ली?
1: नहीं नहीं नहीं ओ अब तो कहते हैं ना, इस कदर मानूस हो गया हूँ से याद से, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाऊंगा।
0: ओए होए होए,
1: तो कहीं के ऐसी उनसियत का रिश्ता जुड़ जाता है ना।
0: बिल्कुल ऐसी है
1: वो, फिर एक बार आए तो बंदा वहीं पे ठहर जाता है।
0: बहुत
1: मुझे लगता है इधर ठहर गए हम आके।
0: बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर।
1: तो
0: क्या कहिएगा?
1: एक वो टॉपिक के बारे में यही कहूंगा कि गालिब ने कहा था कि न खंजर पे कोई दाग न दामन पे कोई छेंट, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो।
0: कमाल।
1: तो हम ऐसा कमाल करते हैं ना कि एक तो मैं इस गर्मा गर्म मौसम में चाय के 12 कप एक दिन में पीता
0: हूँ। खैर खैर,
1: तो कोई नहीं इतना पी सकता ना। मैं वो मैंने बुजुर्गों से सुना था कि जहर को जहर से मारते हैं, लोहे को लोहे से काटते हैं, तो मैं गर्मी को चाय से मारता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी।
1: तो ये एक बात है। मैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा है, शायरी में, पैरोडी करने में,
0: बिल्कुल
1: तकरीर करने में, खत लिखने में, अगर खत लिखना पड़ जाए तो मुझे गालिब सानी का लकब मिला था, मैं पढ़ता
0: था। माशाल्लाह माशाल्लाह,
1: यकीन मानिए। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये मलका हासिल है। तो मैं और कुछ नहीं, छोटी सी तारक वीर की याद दहानी के लिए ना,
0: शोर
1: के लिए। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों को भेद खूब जानता है, आने वाले मोहतरम मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद, आने वाले मोहतरम मेहमानों को तारक अजीज का और रक्षी का सलाम पहुंचे। अजीजाने मन, आज का प्रोग्राम हम ईगल पेन बनाने वालों के वसात से शुरू करते हैं। उन्होंने उमरे का टिकट भेजा है और 5 सवालों की दूरी पे उमरे का टिकट है। अगर कोई साहब ये हासिल करना चाहता है तो जीत सकता है। इनका कहना है कि ईगल आलमगीर कल।
0: सर मिल गया, बहुत शुक्रिया सर।
1: बहुत सारी तालियां दोस्तों की और अलेक्सा टेलीविजन आपको मुबारक हो। फूलों का गुलदस्ता आपको याद दिलाता रहेगा कि कभी मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे।
0: बहुत शुक्रिया सर,
1: जाते जाते कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल, जिसे अंदेशा ये जवाल ना हो, यहाँ जो भी फूल खिले खिला रहे बरसों, यहाँ खजां को भी गुजरने की मजाल ना हो।
0: कमाल।
1: पाकिस्तान
0: जिंदाबाद।

0: बहुत अच्छी आवाज और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वो पूरी पूरी पैरोडी की। बहुत शुक्रिया जी, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नुमान हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच सर, आप सुन रहे हैं।
1: सुबह को आँखों खुलते याद,
0: और ये यहाँ से देखती आँखों सुनते कानों से मुझे एक याद आया कि तारिक अजीज साहब जो है ना वो देखती आँखों कहा करते थे जब अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते थे। तो एक दफ़ा वो कहते कोई ब्लाइंड जो है वहाँ पे मौजूद था, तो उन्होंने कहा कि आप कहते हैं देखती आँखों तो मैं तो नहीं देख सकता आपको। तो फिर उसके बाद जो है ना वो ये सारा मामला शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि देखती आँखों और सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम। और कुछ आवाज़ें जो होती हैं ना वो इतनी मानूस होती हैं कि वो आपके दिल में घर बना लेती हैं और उस जैसी आवाज़ दोबारा नहीं आ सकती। तो मुझे लगता है ये कुछ आवाज़ें ऐसी हैं, वैसे तो हर आवाज़ जो है वो अपनी सानी खुद होती है, लेकिन कुछ आवाज़ें मिलती जुलती भी होती हैं ना, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिक होती हैं, उन जैसी आवाज़ दोबारा नहीं आ सकती।

तो जनाब आपने मुझे बताना है कि आप में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो आपको लगता है कि ये स्पेशलिटी मुझ में है, ये मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। और 0422111001 हमारा डायलिंग नंबर है। एक गाना मेरी नज़र से गुजरा जरा कल, मैं सुन रही थी इसे, तो मैंने कहा है ये इसने भी गाया हो, इसने भी गाया हो। आतिफ असलम ने जी ये सॉन्ग जो है वो दोबारा से सिंग किया है, और ये आप सुनेंगे ना आपको एक अलग सा वो लगेगा, फील एक अलग सी आएगी। इसको सुनिएगा। ये उन तमाम के लिए जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम मुझे कॉल की, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम मुझे मैसेज किया, मेरे तमाम वो न्यू लिसनर जो मुझे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाले, दिस इज फॉर यू।

0: बत्तियां बुझाई रख दी दीवा बले सारी रात. हमारे साथ एक लाइन पे कॉलर मौजूद हैं और देखते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम बानो बान के सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से मुस्कुराता हुआ अस्सलाम वालेकुम. दुबिया शफीक कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं? ठीक हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बेटी के लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएं और हमारी सब लिसनर्स जो हैं वो भी बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं. वो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रही थी कि अनिला आपी या शमीम आपी, तो मैंने उनको क्लियर भी किया कि शमीम आपी की बेटी की जो है ना वो बर्थडे. जी बोलिएगा.
1: जी तो मैं सबसे पहले तो ये शुक्रिया कर रहा हूँ भाई ने किया बीच और मारिया ने किया बीच. आपने इतने अच्छे गाना प्ले कर दिया
0: जी
1: उसका जहांजेब का.
0: बिल्कुल.
1: तो बाकी हमारे भाई आते हैं तारक कोएत से, तो उन्होंने ना कल किया था बेच को खसूसी तौर पे कॉल करके ना रजा उसने तारक भाई ने.
0: ठीक है.
1: को बीच
0: ठीक हो गया.
1: तो
0: ठीक
1: अगर वो सुन रहे हैं इस वक्त तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि इतनी दूर से कॉल करना बड़ी बात है.
0: बिल्कुल ऐसी है, याद रखना बिल्कुल.
1: तो सब सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत. हाँ आपके टॉपिक की तरफ आ जाए कि जुबिया जी देखो मुझे ना घर की सफाई जो होती है ना ये मेरी एक सारे हमारे रिश्तेदार रिश्तों में वो कहते हैं घर देखा तो शमीम आपी का देखा है.
0: माशाल्लाह माशाल्लाह.
1: सफाई होती है इतनी सफाई मैं रखती हूँ घर की सफाई की तरफ मैं बहुत ख्याल रखती हूँ.
0: जबरदस्त जबरदस्त.
1: हर वक्त साफ सुथरा होता है. मिसालें देते हैं मेरी.
0: हाँ,
1: जब
0: हाँ,
1: भी जाओ किसी वक्त भी चले जाओ तो घर
0: साफ सुथरा होता है. जबरदस्त. ठीक हो गया शमीम आपी, बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच आपने कॉल की.
1: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है शो आपका. इतना अच्छा जबरदस्त लग रहा है. सब सुनने वालों को मेरी तरफ से हनीफ भाई भी आ जाएंगे अभी. कोई बात नहीं, अगर आपने नीला का कह दिया तो कोई बात नहीं, वो भी हमारी अपनी है.
0: बिल्कुल. चलिए बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच
1: जी.
0: अल्लाह. अच्छा जी ये हमारे साथ ही शमीम आपी और शमीम आपी की बेटी की आज जो है वो जी बर्थडे है. और हम यहाँ भी हमने जो क्वेश्चन किया ये तो अच्छा खातून खाना जो होती है ना, जो खातून जो घर में, मुझे लगता है जो घर में रहती हैं और जो जॉब भी करती हैं दोनों सूरतों में खवातीन में ये स्पेशलिटी होती है. और पहले ना बड़े बूढ़े पता है क्या कहा करते थे, अगर मैं अपने मेरी दादों की भी बात करूं या मेरी नानों की भी बात करूं तो कहते थे कि किसी औरत की सफाई देखनी है ना कि वो कितनी साफ़ सुथरी है तो उसका किचन देखें और उसका वॉशरूम देखें कि वो किस कदर साफ़ सुथरा है, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए. और ये चीज़ें जो हैं वो चलती हैं. और कुछ चीज़ें अभी तक ज़िंदगी में उनको जो लोग शामिल करते हैं या जो लोग लेकर चलते हैं वो लोग मुझे लगता है कि वो बहुत सुकून दे ज़िंदगी गुजारते हैं. हम अपनी ज़िंदगी को जितना भी लग्जरियस्ट बना लेते हैं ना, जितना भी हम जो है वो ऑटोमेटिक्स चीज़ों पर चले जाते हैं, लेकिन जो खूबसूरती खुद करने से है ना वो खूबसूरती दोबारा कहीं नहीं मिलती. तो मैं आपसे पूछ क्या रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने मुझे बताना है कि ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि आप करते हैं आपके अलावा कोई नहीं करता. कुछ मैसेजेस हैं. सजाद अली कहती हैं अमरजा चौधरी साहब किंग लिसनर हैं जी FM के, उनका कोई मुकाबला नहीं. वादे के सिलेंडर कर गए हैं बिना मुकाबले के जो है ना वो रजा साहब. ये सजाद जो है ना वो ये लड़का सिलेंडर कर गया है. कहते हैं OMG मैं डर गया, ये सच्ची समझते तुसी गए होगे. बाकी अच्छा कॉन्फिडेंस इनका है ना. हर इंसान अपनी जगह पे उसकी अब अपनी एक अलग पहचान होती है, उसका अपना एक अलग म्यार होता है. और मुझे लगता है कि आप में जो स्पेशलिटी है ना, आप में जो खूबी है, आपको उस खूबी को पहचानना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के अंदर वो चीज़ देखकर उसको कॉपी करने की कोशिश. हाँ कुछ अच्छी चीज़ें कॉपी करनी चाहिए, लेकिन अगर आपका होगा ना मैं सेम टू सेम उस जैसा बन जाऊँ या उस जैसी बन जाऊँ तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती. बिकॉज ऐसी पॉसिबिलिटी इस वजह से नहीं होती क्योंकि आप हैं. वो हो सकता है कोई एक ऐसा काम हो जो आप उससे बेहतर कर सकते हो, इसलिए उस काम को पहचाने, उस बात को पहचाने और फिर आप ज़िंदगी को आगे लेकर चलें. डेफिनेटली आप बहुत कामयाब होंगे. 04211100101 हमारा डायलिंग नंबर है जी. अस्सलाम वालेकुम. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं?
2: मैं ठीक हूँ. मैं बिस्मा लाहौर से बात कर रही हूँ.
0: जी बिस्मा क्या कहिएगा.
2: लास्ट वीक आपका इतना वेट किया मंडे वाले दिन, फिर अचानक से मैंने ट्यून किया ट्यूसडे को तो आपकी आवाज़ सुन के मैं हैरान थी. मुझे याद आया कि दिल से राह होती है, सही कहा था किसी ने. फिर मुझे पता चला आपकी टाइमिंग चेंज हो गई है, आज मैं भूल गई थी कि आपका 11 से 1 बजे तक होता है, मैं 10 बजे वेट कर रही थी, वो सॉन्ग्स लग रहे थे बड़े मजे मजे के आपके आने से पहले, सुन सुन के फिर उसके बाद ना ये रिपोर्ट करवाने भेजा हुआ था भाई की, उसकी रिपोर्ट आई है, वो अभी बैठ के पढ़ रही हूँ साथ में आपको कॉल कर रही हूँ। तो
3: बहुत जबरदस्त,
2: शो बहुत अच्छा है।
3: क्या कहोगी बिस्मा, ऐसी कौन सी ऐसा कौन सा काम है जो लगता है कि आप सबसे बेहतर कर सकती हो, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता?
2: यही तो प्रॉब्लम है कि मुझे ये पता ही नहीं, और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि हाँ उनको पता है कि वो कौन सा काम बेहतर कर सकते हैं। मेरी मम्मा तो कहती तुम्हारे में कोई यूजी नाम की चीज है ही नहीं दूर दूर तक।
3: अम्मिया
2: तो
3: यही कहती होती हैं, अम्मिया यही कहती हैं। मेरी अम्मी मुझे कहती है।
2: मैं तो आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपको कोई लग रहा है, कोई पता चल रहा है कि मेरे अंदर कोई यूजी भी होगी कि नहीं? या
3: नहीं नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती हो आप, एक्सप्लेन अच्छा करती हो, अगले बंदे को चुप करवा देती हो, कहती हो मेरी सुनो, बस मैं बोल रही हूँ ना मेरी सुनो।
2: अच्छा,
3: ये खूबी है, खूबी होती है ये, अपनी बात को मनवाना, अपनी बात को सुनवाना, अपने स्टैंड पे खड़े रहना, ये खूबी होती है ना। बहुत शुक्रिया बिस्मा, थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का, दोबारा जरूर आइएगा, जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास।
2: मेरे ना आज दोस्त को मेरे सलाम किए ना, आज वो आए होंगे और आप तो खैर से आज आ गई हैं, कल मेरा था कि मैं आज आऊँ क्लास में अटेंड करूँ आज या कल, तो दुआ करें कि आप कह रही है ना कि उसकी बात मनवाती होगी वो, तो कोई मनवा दूँ कल मैं आ जाऊँ, दुआ करती हूँ।
3: डन हो गया, डन हो गया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह
2: आएंगी कल,
3: देखेंगे देखेंगे, मसरूफियत हुई तो नहीं आऊंगी, नहीं मसरूफियत हुई तो आऊंगी।
2: मंडे वाले दिन तो आप लाजमी आते
3: हैं, मंडे को नहीं, ट्यूसडे को, ट्यूसडे को लड़की, ट्यूसडे को। बहुत शुक्रिया हमारे साथ, बहुत ही अच्छी कॉल है, पावे दिल सिर दी बाजी लग जावे तो बिस्मा बस कोशिश करते रहना चाहिए, अगर आप अपनी जगह पे ठीक हो, आपका मौकफ ठीक है ना, तो फिर कोशिश करते रहना चाहिए, कभी ना कभी वो कहती है ना पत्थर पे भी पानी गिरता रहे ना तो निशान छोड़ जाता है, इसलिए जिंदगी में कोशिश को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ उस कोशिश को बरकरार रखना चाहिए, उसके बाद जिंदगी आसान हो जाती है, कभी ना कभी आपका स्टैंड दूसरे के सामने आ जाता है, वो उस मौकफ को मानने की कोशिश करता है, अगर वो बाज़ दफ़ा होता है कि मानना चाह रहा होता है मान नहीं पाता, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो मान भी जाता है, इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं अक्सर कहती हूँ कंसिस्टेंट रहिए, कोशिश करते रहिए, चलो इस साल नहीं आ पाई, मे बी नेक्स्ट ईयर, विश यू गुड लक।

0: अच्छा जी 04 2111 0101 डायलिंग नंबर, इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं फिर 101 के ऑफिशियल पेज पे आपने जाना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि कैसे कर लेते हैं आप ऐसे ये चीज। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: वालेकुम
1: अस्सलाम, कमल नाज़ बोल रही हूं।
0: कमल नाज़ कैसी हैं आप?
1: मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाओ?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या कहेंगी?
1: मैं कहूंगी कि मैं बेवकूफ बहुत अच्छा बना लेती
0: हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात।
1: मैं नहीं, ये तो मैं मजाक कर रही थी ना वैसे ही। दरअसल मुझ में ये चीज है कि मैं कोई भी चैलेंज हो ना उसको एक्सेप्ट करती हूँ और उसमें कूद जाती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसको हल करूँ और उसका जो जीत हार है वो अल्लाह पे छोड़ देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जीत के निकलूँ वहाँ से।
0: वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात।
1: और क्वालिटीज तो हर इंसान में होती है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर ही ये खूबी है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने खूबियां और खामियां रखी हुई हैं। कोई क्या कर सकता है, कोई किसी चीज में कमाल कर सकता है, कोई चीज में कमाल कर सकता है। तो जिस तरह आप भी बहुत कमाल करती है।
0: हाय शुक्रिया।
1: हाँ और बहुत अच्छा शो है,
0: माशाल्लाह
1: बहुत जबरदस्त और बहुत ग्रेट रहता है आपका। और मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स को बहुत प्यार मोहब्बत से सलाम, सेहत तंदुरुस्ती की दुआ मेरे शमसी ग्रुप को और जिन जिन की सालगिरह है सबको हैप्पी बर्थडे।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कवल, थैंक यू सो मच। कवल नाज थी हमारे साथ, बहुत शुक्रिया कवल। हमारे सामने जी कुछ पैगाम हैं, उनको मैं शामिल करूंगी साथ में। सज्जाद अली लाडला कहते हैं, आपको पता है आपके शो के लिए हम भी नींद खराब करते हैं कि कुर्बानी देते हैं। कितनी गलत बात है, 11 बजे तक लड़के तुम भी सोए रहते हो, बहुत बुरी बात। वैसे मैंने आजकल अपनी रूटीन को ना चेंज कर दिया है। आपको पता है इस रूटीन को चेंज करने का क्या फ़ायदा हुआ है? मुझे रात को 12 बजे तक नींद आ जाती है, मैं सो जाती हूँ और फिर सुबह मेरी आँख खुल जाती है लाइक 4:30। आज भी मेरी आँख 4:30 बजे खुल गई, फिर मैंने नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर मतलब जागती रही और फिर मैं तकरीबन 7:15 बजे मैं लेटी। मैंने कहा थोड़ा सा सो जाऊँ, घंटा को सो लिया, फिर मैं उठी। उसके बाद भी मैं सारे दिन एक्टिव रहती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता था, सारी रात तो मुझे नींद नहीं आती थी। दिन में मैं सोती थी 11-12 बजे तक, क्योंकि क्लिनिक टाइमिंग जो है वो 2 बजे के बाद स्टार्ट होती है, तो मैं उस हिसाब से जो है ना वो आराम से सकून से लेटी रहती थी। लेकिन अब मैंने कहा कि नहीं यार, सुबह उठना करना है और ये सुबह उठने वाली जो रूटीन है ये बहुत अच्छी है। जब आप यकीन जाने मैंने इस वीक में ये रूटीन स्टार्ट की है और बहुत सारे काम सीधे होने शुरू हो गए हैं। सीधे इन द सेंस के मुझे 12 बजे लगता है आधा दिन गुजरा है, पहले तो मेरा 12 बजे दिन शुरू हुआ करता था। तो ये सारे मामला होते थे। 04 2111 0101 अस्सलाम वालेकुम जी।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन हमारे साथ कहां बहुत सारे लोग आपको याद कर रहे थे कि अनीफ साहब आ रहे हैं। मैंने कहा बस फिर आ रहे हैं, लगे हुए हैं लाइन में क्या कहिए,
2: बस आप पीछे लाइन में लगे हुए नंबर आ ही गया।
0: हाँ जी जी, क्या कहिए,
2: पहले तो माशाल्लाह तुम सत बिस्मिल्लाह जी आनु कहंगा मैं।
0: बहुत
2: शुक्रिया, बनते बहुत अच्छा शो बोलन दा अंदाज गुफ्तगू माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है।
0: थैंक यू सो मच।
2: तो इहदा मकसद ए नहीं होंदा कि मेरी कॉल नहीं आंदी ते मैं सुनदा नहीं होंदा,
0: नहीं मुझे पता आप सुनते होते हैं, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है।
2: ते लगन मौजूदगी दा साथ मैं उदों ही दवांदा जदों मैं वेला किते बैठा हां। हां
0: हां सही है।
2: ते लोबिया भी टॉपिक लाइए, पहले तो शमसी ग्रुप नू मेरे लो जिन्हें भी मिंबर ने सब नू मुहब्बत भरिया सलाम पहुंचे थे, बहुत सारिया दुआवां वास्ते। ते लोबिया भी देखो हर बंदे दा अपना पॉइंट होंदा, कोई ना कोई ते हर बंदे दे विच कोई टैलेंट होंदा है ना।
0: आप बड़ा एटिकेट्स का ख्याल रखते हैं, जो सिग्नल वगैरह आप अक्सर बताते हैं कि मैं रुक जाता हूँ, तो ये चीजें ये क्वालिटी बिल्कुल।
2: देखो आप ही जरूरी ये नहीं होता कि जेड़ा बंदा आप मतलब के लोगों को समझाता ना, फिर आप गलत काम करे ना तो बुरा मैं कहना बंदा ही कोई।
0: बिल्कुल ऐसी
2: है। मैं तो दूसरे नु समझाने की कोशिश करना के अल्लाह ताला हर किसी नु अपने इज्जत मान च रखे।
0: बिल्कुल ऐसी
2: है। दूसरी गल जो भी आती है कि साड़ी बड़ी एक अच्छी आरजे रबीना मजाहद
0: जी,
2: ते वो मतलब के ओदा शो वापस लिया गया किसी वजह तो, ते ओनू छुट्टी ओदी हो गई, तो वन वन तो ते मैं पूरी मैनेजमेंट नु ए
0: बिल्कुल हनीफ साहब, आपके पैगाम जो है ना वो मैनेजमेंट तक पहुंच जाएगा और इंशाल्लाह इसके ऊपर वो कुछ किसी वजह से जो है ना वो थोड़ी देर के लिए चीजें हुई हैं लेकिन वो हो जाएंगी, दोबारा से रिकवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

0: हनीफ साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया हनीफ जी. हनीफ साहब ने कहा कि ड्राइविंग आपसे अच्छी कोई नहीं कर सकता. बिल्कुल, हर इंसान जो होता है ना उसका अपना एक टैलेंट होता है. सज्जाद अली लाडला कहते हैं कि मुझे लगता है कि जिस इंसान को खुद पे एतमाद है ना, वो इंसान ना मुमकिन को भी मुमकिन कर जाता है. बस खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, आपकी कामयाबी कदम ज़रूर चूमेगी. बिल्कुल, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी यही बात शेयर करती हूँ कि कंसिस्टेंट लाजमी तौर पे रहें. अपनी जो भी फील्ड है, जिस फील्ड के साथ भी आप अटैच हैं, उसके साथ कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब आप कंसिस्टेंट नहीं रहते तो चीज़ें फिर ख़राब होती हैं. ना जी ना, आप ऐसा ना बोलें, बस भाई के लिए प्यार है सर. सजाद, मैंने ना कान पकड़वा देने हैं तुम्हें, इतने मुश्किल मैसेज करते हो मुझे. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: कौन है भाई? सर कहाँ से?
1: लाहौर डिफेंस से.
0: कहाँ से?
1: लाहौर डिफेंस से.
0: खान बाबा.
1: यस.
0: कैसे हैं आप?
1: अल्लाह का फजल करम है बेटा, आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह. क्या कहेंगे आप?
1: जो बात मानने की होती है वो इंसान मान जाता है, जो मानने की नहीं होती है तो वो कैसे हो सकता
0: है ना, ऐसे ही होता है. तो खान बाबा में ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जो उन्हें लगता है कि मुझ में सबसे मुनफरिद है?
1: मुझ में जो बात मानने की होती है वो इंसान मान जाता है, जो मानने की नहीं होती है तो वो कैसे हो सकता है
0: ना, ऐसे ही होता है. तो खान बाबा में ऐसी कौन सी स्पेशल

0: कुछ हैं जिंदा तो कुछ मरे हुए लोग, साथ क्या देंगे ये डरे हुए लोग, बताएं जरा। सजाद बहुत अच्छा कहते हैं कि आपने बोला है ना कि मैं सरेंडर कर गया हूँ, तो ये कहा कि रजा भाई की प्यार के लिए लिए कहा कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, किसी के प्यार के लिए भी जो सरेंडर कर जाते हैं ना, वो भी क्या खूब लोग हुआ करते हैं। हाय ओए दिल के बदले 04221100101। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम, एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान से आपको वेलकम, खुश आमदीद जी आया नु, अहलन वसहलन मरहबा वाली करी आया नु ते बगैर अगले एंड गुड गुड आफ्टरनून। कैसी हैं आप?
0: कैसी कर लेती हैं इतना लंबा इंट्रो तैयार?
1: बस देख लें
0: क्या कहोगी हमारा।
1: मैं कहूंगी कि जैसे मैं आती हूँ शायद कोई नहीं आता।
0: बिल्कुल ऐसी है, हर इंसान में अपनी एक खूबी होती है ना, उसके
1: हर इंसान के अंदर एक एक खूबी रखी होती है, जो खूबी मेरे में वो आप में नहीं है, जो आप में है वो मेरे में नहीं है। इसी तरह जितने लिसनर आते हैं सब में एक एक खूबी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा शो कर रही हैं आप, जबरदस्त, इतनी एनर्जी के साथ सुबह सुबह,
0: वल्लाह कैसे कर लेती हूँ मैं, बस ऐसे ही कर लेती हूँ। वो हमारे ज़िया कहते हैं ना, आरजे जो है वो कहते हैं पैसे मिलते हैं हमें। चलें हमारा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
1: बिना आप ही के लिए मेरा भी वही है जो हनीफ अंकल ने कहा है कि
0: बिल्कुल आपका पैगाम जो है वो पहुंच गया और इंशाल्लाह पहुंचा भी दिया जाएगा, सुन लिया मैनेजमेंट ने, इंशाल्लाह इस पे वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चीजें थोड़ी सी हर दफा हर मंथ कुछ ना कुछ चीजें क्यूरिस चेंज होती है, तो वो इंशाल्लाह दोबारा से हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।

0: अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम।
1: वेलकम टू द शो।
0: थैंक यू जी।
1: बड़ी मुश्किल से मेरी तो आज बस बस हो गई कार मिलाते मिलाते।
0: तुसी खुश नहीं हुई?
1: बड़ी बड़ी खुशी हुई मुझे। इतनी खुशी हुई ना कि सिंगल आस पे मेरी कार मिल गई।
0: आई हाय जी रजा साहब क्या कहिएगा।
1: तो माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है आपका। तो देखो अभी मशीनों का शोर भी आ रहा है।
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो मैं ये कहता हूँ जो मैं करता हूँ वो कम लोग ही करते हैं।
0: क्या मैसेज?
1: मैं वो ना मैसेज मैसेज ठीक है। दूसरा वो जो दो लोग नाराज होते हैं ना उनकी सुलह कराने में मैं बड़ी जल्दी करता हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात करते हैं। ये तो बहुत अच्छा काम। ये तो बहुत अच्छा काम।
1: देखो जो भी एक बात ये है कि हम अगर हम गाँव ना जाए घर ना जाए हमारी फैमिली वालों को बड़ा फिक्र होता है कि हमारा बच्चे हमारा क्यों नहीं आए। जैसे रेडियो वाली भी हमारी फैमिली है
0: जी।
1: तो अगर हमारा कोई जैसे आरजे ना आए तो मुझे बड़ा फिक्र होता है यार हमारे वो आरजे क्यों नहीं आए।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसे हमारी रुबीना बजाज अभी नहीं आ रही उसका शो नहीं हो रहा
0: अभी इसी दफा तो... मेरे ख्याल से प्रोग्राम उनका हो रहा है थोड़ा सा शायद कुछ वो हर मंथ का कुछ सर्कल चेंज होता है इस तो वजह से थोड़ा सा हुआ है।
1: माशाल्लाह आपकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है।
0: जी जी।
1: मैं इनको सलूट पेश करता हूँ कि इतना अच्छा शो देते हैं हमें।
0: बिल्कुल ऐसे।
1: और ये आपकी पूरी मैनेजमेंट को सलूट है।
0: बिल्कुल ऐसे।
1: इनको हमारी फैमिली है तो मेरा तो कहीं दिल नहीं लगता जब तक वन वन से कॉल ना करो। सही बात है कि कोई परदेसी हो आउट ऑफ सिटी का हो तो जब तक वन वन ना सुनो तो मुझे सुन नहीं आता।
0: बहुत शुक्रिया रजा साहब। बहुत शुक्रिया
1: जी।
0: थैंक यू जी।

वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक, इसको अब हम साथ में रखेंगे, थोड़ा सा टाइम रह गया, बैक टू बैक कॉलर्स भी लेंगे, कुछ पैगाम भी शामिल करेंगे, कोशिश कीजिएगा बिल्कुल शॉर्ट बात कीजिएगा, टू द पॉइंट। सजाद कहते हैं कि हाँ जी गलत ठीक है, प्यार के लिए भी बंदा कर लेता है, प्यार के लिए ही कर लेता है, प्यार के लिए भी नहीं। सजाद पैसे मिलते हैं ना। लड़के तुम कॉल करो, जब मिले मुझे मैसेज, इधर कमेंट करो, मैं फौरन चौक लेनी हूँ कॉल।

0: अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम, क्या
0: हाल है साजिदा हमारी? साजिदा जल्दी जल्दी बताओ, कौन सा ऐसा काम है जो आप कर सकती हो, कोई और नहीं कर सकता?
1: हाँ, तो मैं ऐसा ही काम है जो इनके घर के बर्तन और आटा गूंथ,
0: भांडे बहुत लचकांदी है कुड़ी, आटा बहुत सोना गूंदी है, फौरन रोटी बन जाती है।
1: हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही।
0: ओके हो गया,
1: मैं शॉपिंग भी अच्छी कर लेती हूँ।
0: डन हो गया, बहुत शुक्रिया साजिदा। साजिदा हमारे साथ वाली बड़ी क्यूट सी लिस्टर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जल्दी बताओ कौन सा ऐसा काम है जो आप कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता?
2: मैं कर सकता हूँ, अभी मैंने हेल्प में यार किसी के लिए मदद वगैरह मैं कर सकता हूँ।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू।
3: आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है मौत।
0: अस्सलाम वालेकुम जी।
4: वालेकुम, अब्दुल हमीद फरूक बात हूँ।
0: अब्दुल हमीद साहब, ऐसा कौन सा काम है जो आप बर्फी अच्छी बना सकते हैं, जल्दी जल्दी बताइए।
4: बर्फी बना लेता हूँ तो मैं अपने हर एक तो, हर एक नो अपने तो अफजल समझदा, बस।
0: बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच। मैंने कहा आपका गिला ना रह जाए, कॉल नहीं मिल रही तो खुश है ना आप। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अच्छी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताइएगा लियाकत साहब, कौन सा ऐसा काम है जो आप बेहतर कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता?
5: देखिए मेरी सबसे जरूरी है, मैं ना अच्छे तरीके से मैं ना बात को सुनता हूँ, ठीक है, बीच में रोकता नहीं और टोकता नहीं।
0: डन हो गया, डन हो गया।
5: अच्छे तरीके से बात का जवाब देता हूँ,
0: बात को सुन के फिर उसका जवाब देते हैं, अदरवाइज जो है ना वो बीच की बात को टोक के नहीं जवाब देते। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, हमें सलीम ट्रेलर साहब सुन रहे थे इचरा से, बहुत शुक्रिया जी आपका।
3: चल संभलता नहीं है, क्या संभालोगे तुम मेरे?
0: हाले नूर कहती है हाई डियर, हाई डियर।
3: जब ये आंचल संभलता नहीं है,
0: तुसी जा रहे हो, बाय। मुझे इतना पता है मेरी तरह पार्टिसिपेंट कोई नहीं, बिल्कुल सजाज, ये तुम्हारी क्वालिटी है लड़के जो यूनिक बनाती है तुम्हें हर बात। बहुत कम लिस्टर होते हैं जो पॉइंट टू पॉइंट बात का जवाब देते हैं, साथ साथ रहते हैं। आप और कंवल नाज दोनों में ये क्वालिटी मौजूद है। एम रजा चौधरी साहब भी साथ साथ रहते हैं अक्सर, लेकिन आप लोग जो हैं वो हर पॉइंट का जवाब देते हैं।

0: अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कौन हमारे साथ, कहाँ से?
1: एहसन खान।
0: एहसन, जल्दी जल्दी बताएं, ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता?
1: बिजली का।
0: बंद तो नहीं कर देंगे
1: जी?
0: बंद तो नहीं कर देते?
1: दोनों कर देते।
0: बहुत शुक्रिया एहसन, थैंक यू सो मच।
1: और अगर कोई तारीफ ना करे तो फिर और ज्यादा बंद कर देते हैं।
0: डन हो गया, बहुत शुक्रिया। जी जी, जरूर जरूर जरूर, पहुंच गई सर, पहुंच गई, बहुत शुक्रिया। आपके पैगाम, पहला पैगाम ही पहुंच गया सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच एहसन।
2: तेरी नजरों का जो।
0: अस्सलाम वालेकुम जी, सेकंड लास्ट कॉलर।
3: वालेकुम अस्सलाम।
0: कौन हमारे साथ, कहाँ से? कौन हमारे साथ, कौन?
3: असद
0: साहब, पहली दफा आए आप?
3: जी जी, मैं फर्स्ट टाइम।
0: वेलकम करते हैं आपको, और जल्दी जल्दी बताइएगा कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है कि आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता?
3: अपने से अफजल समझता
0: हूँ। ओके हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया, और कुछ कहेंगे?
3: हर बंदे को मैं अपने से अफजल समझता हूँ, और मेरे प्यारे से भाई हैं जिया भाई, उनके लिए मैं बिलखसूस दुआ करूंगा, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे।
0: इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: मौसमियाती तब्दीलियों के बाद दर्जा हरारत में हालिया इजाफे से हीट वेव का खदशा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पीडीएमए पंजाब अलर्ट। मुमकिन मुतासरा अजला में हीट वेव कैंप्स का क्याम। दूर दराज इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील्स जबकि अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स और अद्वियात की फराहमी। थल चोलिस्तान और जुनूबी पंजाब में गर्मी और हब्स की शिद्दत में मुतवक्को इजाफे के पेश नजर साफ पानी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर बाउजर्स के साथ साथ टोबाजात में मवेशियों के लिए 24 घंटे पानी की यकीनी फराहमी और हब्स वाले इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अवाम भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। गर्मी में बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। धूप में निकलना जरूरी हो तो सर को ढांप कर रखें। वक्फे वक्फे से पानी और मशरूबात पिएं। ढीला ढाला और हल्के रंग का सूती लिबास पहनें। सख्त धूप में मशक्कत वाला काम न करें। बच्चों बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। हंगामी सूरत हाल में पीडीएमए की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। हीट वेव में एहतियात महफूज हया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हुकूमत पंजाब।
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: मौसमियाती तब्दीलियों के बाद दर्जा हरारत में हालिया इजाफे से हीट वेव का खदशा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर PDMA पंजाब अलर्ट। मुमकिन मुतासर अजला में हीट वेव कैंप्स का क्याम। दूर दराज इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील्स, जबकि अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स और अद्वियात की फराहमी। थल, चोलिस्तान और जुनूबी पंजाब में गर्मी और हब्स की शिद्दत में मुतवक्को इजाफे के पेश नजर साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर बाउजर्स के साथ साथ टोबाजात में मवेशियों के लिए 24 घंटे पानी की यकीनी फराहमी और हब्स वाले इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अवाम भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। गर्मी में बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। धूप में निकलना जरूरी हो तो सर को ढांप कर रखें। वक्फे वक्फे से पानी और मशरूबात पिए। ढीला ढाला और हल्के रंग का सूती लिबास पहने। सख्त धूप में मशक्कत वाला काम न करें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। हीट वेव में एहतियात, महफूज हया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: सुपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अली की खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने बैंकों और मालियाती इदारों को हिदायत की है कि वो कैशलेस मईशत के फरोग में अपना भरपूर किरदार अदा करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल की करारदादों पर मिनवन अमल दरामद के जरिए बैन अल-अक़वामी तनाज़ात के पुरमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में जारी मुश्तरका ऑपरेशन शाबान के दौरान मजीद 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने कलदम एक्शन कमेटी की कानून शिकनी करने वाले इंतशारी अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक तनाज़े को हल करने के लिए अपना मौसर किरदार अदा करे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की खवातीन अंडर 19 टीमों के दरमियान 5 मैचों की सीरीज का पहला T20 बैन अल-अक़वामी मैच आज कराची में खेला जाएगा।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: मौसमियाती तब्दीलियों के बाद दर्जा हरारत में हालिया इजाफे से हीट वेव का खदशा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर PDMA पंजाब अलर्ट। मुमकिन मुतासरा अजला में हीट वेव कैंप्स का क्याम। दूर दराज इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील्स, जबकि अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स और अद्वियात की फराहमी। थल, चोलिस्तान और जुनूबी पंजाब में गर्मी और हब्स की शिद्दत में मुतवक्को इजाफे के पेश नजर साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर बाउजर्स के साथ साथ टोबाजात में मवेशियों के लिए 24 घंटे पानी की यकीनी फराहमी और हब्स वाले इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अवाम भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। गर्मी में बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। धूप में निकलना जरूरी हो तो सर को ढांप कर रखें। वक्फे वक्फे से पानी और मशरूबात पिए। ढीला ढाला और हल्के रंग का सूती लिबास पहने। सख्त धूप में मशक्कत वाला काम न करें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। हीट वेव में एहतियात, महफूज हया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: मौसमियाती तब्दीलियों के बाद दर्जा हरारत में हालिया इजाफे से हीट वेव का खदशा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पीडीएमए पंजाब अलर्ट। मुमकिना मुतासर अजला में हीट वेव कैंप्स का क्याम। दूर दराज इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील्स, जबकि अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स और अद्वियात की फराहमी। थल, चोलिस्तान और जुनूबी पंजाब में गर्मी और हब्स की शिद्दत में मुतवक्को इजाफे के पेश नजर साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर बाउजर्स के साथ साथ टोबाजात में मवेशियों के लिए 24 घंटे पानी की यकीनी फराहमी और हब्स वाले इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अवाम भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। गर्मी में बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। धूप में निकलना जरूरी हो तो सर को ढांप कर रखें। वक्फे वक्फे से पानी और मशरूबात पिएं। ढीला ढाला और हल्के रंग का सूती लिबास पहनें। सख्त धूप में मशक्कत वाला काम न करें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। हंगामी सूरत हाल में पीडीएमए की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। हीट वेव में एहतियात, महफूज हया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: मौसमियाती तब्दीलियों के बाद दर्जा हरारत में हालिया इजाफे से हीट वेव का खदशा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर PDMA पंजाब अलर्ट। मुमकिना मुतासर अजला में हीट वेव कैंप्स का क्याम। दूर दराज इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील्स, जबकि अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स और अद्वियात की फराहमी। थल, चोलिस्तान और जुनूबी पंजाब में गर्मी और हब्स की शिद्दत में मुतवक्को इजाफे के पेश नजर साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर बाउजर्स के साथ साथ टोबाजात में मवेशियों के लिए 24 घंटे पानी की यकीनी फराहमी और हब्स वाले इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अवाम भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। गर्मी में बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। धूप में निकलना जरूरी हो तो सर को ढांप कर रखें। वक्फे वक्फे से पानी और मशरूबात पिएं। ढीला ढाला और हल्के रंग का सूती लिबास पहने। सख्त धूप में मशक्कत वाला काम न करें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। हीट वेव में एहतियात, महफूज हया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब।
2: This is FM 101.
1: मौसमियाती तब्दीलियों के बाद दर्जा हरारत में हालिया इजाफे से हीट वेव का खदशा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर PDMA पंजाब अलर्ट। मुमकिना मुतासर अजला में हीट वेव कैंप्स का क्याम। दूर दराज इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील्स, जबकि अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स और अद्वियात की फराहमी। थल, चोलिस्तान और जुनूबी पंजाब में गर्मी और हब्स की शिद्दत में मुतवक्को इजाफे के पेश नजर साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर बाउजर्स के साथ साथ टोबाजात में मवेशियों के लिए 24 घंटे पानी की यकीनी फराहमी और हब्स वाले इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अवाम भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। गर्मी में बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। धूप में निकलना जरूरी हो तो सर को ढांप कर रखें। वक्त और मशरूबात पिएं। ढीला ढाला और हल्के रंग का सूती लिबास पहने। सख्त धूप में मशक्कत वाला काम न करें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। हीट वेव में एहतियात, महफूज हया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

All right. अच्छा जी, सो शो को स्टार्ट करेंगे मैडम नूरजहां का गाना रीमेक, और क्योंकि दिस इज लाहौर ऑन है विद आरजे शिवा मलिक, और दो घंटे आप लोगों को पता भी नहीं चलना कि ये जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है. इसके साथ साथ देखेंगे आज इंटरनेशनल डेज कौन से हैं, वर्ल्ड डेज कौन से हैं, और क्या क्या कुछ हो रहा है इस दुनिया में, टॉप ट्रेंडिंग क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, फैक्ट चेक क्या है, और पता नहीं व्हाट नॉट, आई डोंट नो. सो इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी बातें हैं, सो डोंट मिस माई शो. हियर वी गो, लाहौर ऑन है विद आरजे शिवा मलिक. स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग.

Alrighty, so आज लाहौर ऑन है और स्पेशल चीज़ें जो हैं आज हमने डिस्कस करनी हैं और स्पेशल म्यूज़िक रहेगा, बहुत कुछ होने वाला है आज के शो में। हफ्ते में एक शो होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों की तरफ से भी होती हैं और मेरी तरफ से भी होती हैं। और अच्छा, एक चीज़ मैं सोच रही थी कि कभी कभी हम अपना बड़ा बेस्ट दे रहे होते हैं और अगले बंदे को समझ ही नहीं आ रही होती कभी कभी उससे, उसके हवाले से। एक तो मतलब फ़ोन हमारे जो है ना वो बहुत बड़े जासूस हैं। जैसा हमारा मूड चल रहा होता है ना, उसी तरह की चीज़ें जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि कुछ जो लोग हैं ना, उनकी ज़िंदगी में जितनी मर्ज़ी मोहब्बत दे दो, जितना मर्ज़ी आप उनका ख्याल कर लो, एहसास कर लो, कुछ भी कर लो, उनके ना दिल में सुराख होते हैं। अच्छा, आजकल कुछ अजीब अजीब मसाले दे रही हूँ। उनकी ना सच में जो दिल है ना, उनके सुराख होते हैं उसमें। वो जितनी भी आप मोहब्बत डालते जा रहे हो, वो निकलती चली जा रही है, निकलती चली जा रही है। एंड यू फील इट लाइक के ओ ओ यार, ये क्या हो रहा है। अच्छा जी, सो अच्छा, वैसे ये मजाक की बात नहीं है, ये बात सच है। व्हेन यू आर रियली गिविंग योर बेस्ट, यू फील इट लाइक के यार अगला बंदा जो है ना, उसको समझ ही नहीं आ रही है। एंड ग्रेजुअली क्या होता है, चीज़ें आउट ऑफ हैंड्स होना शुरू हो जाती हैं। एंड यू फील इट लाइक क्या यार, दफ़ा मारो, है ना। ये टॉपिक नहीं है, इसको टॉपिक नहीं समझना, क्योंकि जो भी मैं बात कर रही होती हूँ आप उसको टॉपिक ही बना लेते हैं। खैर, हियर वी गो विद दिस बीट।

हाय जी, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन कि आज के कौन से इंटरनेशनल डेज हैं और क्या कुछ हो रहा है. ओके, कभी कभी कहते हैं ना, नो प्लान इज अ गुड प्लान. आई ऑलवेज बिलीव दैट. कभी कभी सच में कोई प्लान जो है वो प्लान नहीं होता, ऐसे बस हो जाता है कुछ ना कुछ. सो मी आई थरोली बिलीव ऑन इट. व्हेन यू रियली मेक नो प्लान्स एंड थिंग्स आर कमिंग ग्रेजुअली टुवर्ड्स यू, इट इज़ ऑलवेज वर्किंग वेल. आपकी सोच से भी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो जाती हैं. और जब आपने हज़ार बार प्लानिंग की होती है किसी चीज़ की और फिर उसके बाद जाके पता चलता है वो काम नहीं हो रहा, फिर आपका दिल भी बड़ी बुरी तरह टूट जाता है. फिर आप कहते हो, यार इतने महीनों से प्लानिंग की हुई थी. खैर, इट इज़ शार्क अवेयरनेस डे है, प्लस चिंपैंजी डे भी है. ओके, एंड देन प्लस व्हाट एल्स अबाउट टुडे? नथिंग. किसी जगह नेशनल पास्ता जो है वो डे मनाया जा रहा है, किसी का नेशनल डे है. लाइक सीरियसली? ओके, इटली, इटालिया से आएगा तो मेरा हाल है मजा आएगा पास्ते का भी. खैर, अच्छा जी, सो जो मैं बात इससे पहले कर रही थी कि कुछ लोगों के दिल में सुराख होते हैं, कितनी भी मोहब्बत डालते चले जाओ उनके लिए कमी पड़ रही होती है. ऐसा लग रहा होता है कुछ मिला ही नहीं है उनको, और वो सच में यही इसी तरह पोज कर रहे होते हैं कि यार आई गॉट नथिंग. अच्छा, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको बाद में एहसास होता है कि यार somebody was giving me truly that feeling, love, care. I was like, मैं ही बदकिस्मत था. ये जो बाद में एहसास होते हैं ना, इनके कोई फायदे नहीं होते. अच्छा जी, सो हियर वी गोना गो विद दिस बीट. नाउ वेयर वी आर गोइंग टू गो? हाय, व्हाई आई एम लाइक स्टक विद दिस ट्रैक? व्हाई? ओके, सो अगर मैं स्टक हूं तो प्ले तो होगा.

0: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.
1: मौसमियाती तब्दीलियों के बाद दर्जा हरारत में हालिया इजाफे से हीट वेव का खदशा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पीडीएमए पंजाब अलर्ट। मुमकिना मुतासर अजला में हीट वेव कैंप्स का क्याम। दूर दराज इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील्स, जबकि अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स और अद्वियात की फराहमी। थल, चोलिस्तान और जुनूबी पंजाब में गर्मी और हब्स की शिद्दत में मुतवक्को इजाफे के पेश नजर साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर बाउजर्स के साथ साथ टोबाजात में मवेशियों के लिए 24 घंटे पानी की यकीनी फराहमी और हब्स वाले इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अवाम भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। गर्मी में बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। धूप में निकलना जरूरी हो तो सर को ढांप कर रखें। वक्फे वक्फे से पानी और मशरूबात पिएं। ढीला ढाला और हल्के रंग का सूती लिबास पहनें। सख्त धूप में मशक्कत वाला काम न करें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। हंगामी सूरत हाल में पीडीएमए की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। हीट वेव में एहतियात, महफूज हया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब।
2: This is FM 101.
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

जी सो लाहौर ऑन है विदाजी शिबा मलिक और आप लोगों के मैसेजेस आप लोग भी सोच रहे होंगे कि तीन गाने हो गए वरना नॉर्मली मैं दो गानों के बाद जो है मैसेजेस शामिल करना शुरू कर देती हूँ और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि लगता है कि आज ऐसे तो वैसे लगने देना चाहिए, कभी कभी चीज़ें सच में लगने देनी चाहिए, कभी भी एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहिए। अगला जो सोच रहा है उसे कहो हाँ भाई बस ठीक है ऐसा ही है वैसा ही है। वो मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि अगर कोई आपको बोले ना कि यार हमने देखा है कि हमारे घर के ऊपर से तो बकरियां और पता नहीं बिल्लियां और ऊंट तो पता नहीं क्या क्या उड़ता हुआ जा रहा है, उसको बोले हाँ हाँ मैंने भी देखा है आज सुबह ही हमारी छत से भी गुजर के उड़ के जा रहे थे। डोंट एक्सप्लेन, सम टाइम एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता है, लोगों को अज्यूम करने देना चाहिए। जब उनके अपने दिमाग का क्योस, उनके अपने दिमाग की ये जो सारी सेबोटाइजिंग है जब ख़त्म होगी ना तो फिर वो लाजम आपसे आके पूछेंगे कि यार ये मैं ऐसे फील कर रहा हूँ प्लीज़ एक्सप्लेन करो, फिर मज़ा आता है कि एक्सप्लेन किया जाए उनको बताया जाए। कभी कभी हम ऐसे ही बस नादर, मैंने और कोई मैसेज नहीं देखा लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ ये मैसेज देखा है कि ये जो तुमने चाय के साथ गोली दे रहे हो उसको जाज भाई ये ले स्पेशल आपके लिए, वाहे क्यों, और ये आइसक्रीम किधर जा रही है, आ जाओ दोस्तों मौसम एंजॉय करें, मैम आप तो नहीं खाएंगी वरना आपको शो ना करने का बहाना मिल जाएगा। जालिमो बिल्कुल सही है। अच्छा जी हामिदुल्ला मला खेल है, वालेकुम अस्सलाम, और कहते हैं जी बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो और मोहब्बत की ज़ुबान से बात करो। क्या बात है, कभी कभी हम इतनी मोहब्बत की ज़ुबान में बात करते हैं कि अगले बंदे को समझ ही नहीं आती, उसको लग रहा होता है कि फ़ायदा उठाओ भी ये मोहब्बत की ज़ुबान में ही बात कर रहा है, इसका तो भरपूर फ़ायदा उठा लो, और जब वो फ़ायदा उठा लेते हैं और हम दूसरी ज़ुबान यूज़ करने लगते हैं ना उनके साथ, वो कहते हैं आपको ये ज़ुबान भी आती है। अच्छा जी रिहान खान है भक्कर से, अस्सलाम वालेकुम, और क्या हाल है शिबा मलिक साहिबा, वेलकम टू द शो, आपको भी वेलकम टू द शो, थैंक यू सो वेरी मच कि आप शो में शामिल हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वालेकुम अस्सलाम शिबा, वेलकम टू स्टूडियो। प्यारे दोस्तों क्या हाल है, अल्लाह आपको सलामत रखे, थोड़ा सा खुश खुश रहा करो। क्या बात है, आज हम तो खुश खुश रह रहे हैं, तुम जो इतने महीनों के बाद शो में आए हो, तुम्हें किसने रास्ता बता दिया है तारिक, आज तुम कैसे इस शो में आ गए हो। उस बंदे का सर फाड़ो जिसने तारिक को ये बताया कि वो शो में आए। लबो नादर ढूंढो। एनीवेज इट्स गुड तारिक, आप भी खुश खुश रहें सलामत रहें। मोहम्मद अलीम हैं और कह रहे हैं कहाँ से हैं आप, शादरा से हैं, आई एम योर रेगुलर लिसनर एंड वेटिंग फॉर द शो, स्पेशली ट्रैक विच यू आर प्लेइंग फॉर ऑडियंस आर सुपर्ब, वेलकम टू द शो मिस, थैंक यू सो वेरी मच, एंड आई एम लाइक सीइंग योर मैसेज फर्स्ट टाइम, मैं तो आपका मैसेज फर्स्ट टाइम जो है वो पढ़ रही हूँ और शायद फर्स्ट टाइम आपने पार्टिसिपेट किया है, इट इज़ वेरी गुड, बट आज ऐसा क्या हो गया कि आपको लगा कि आपने शो में शामिल होना है।

0: All right, so how are we gonna go with the song?
1: वो तो यादों की सांसों से चलती रहती है।
0: ज़रियों ये शायरी सुन लो।
1: रात बारिश भी रो पड़ती हो।
0: ओहो हो।
1: उसी रात किसी का दिल चुपके से
0: अहा
1: टूटता रहता है।
0: क्या बात।

लाहौर है 5:40 ऑन अ डायल ऑलरेडी 14th of July 2026. ओके और व्हाट आर वी डूइंग. ज़िरियोन कह रहा है हाँ हाँ प्लीज कर दें, ये तुम में से मुझे छेड़ तो नहीं रहे शायरी शायरी करके, बस करो तो खुदा का खौफ करो. इतनी मैं शायरा नहीं हूं, तुम लोग ऐसे लगा लगा के स्टेटस पे पता नहीं किस किस को साड़ रहे हो और मुझे बद्दुआएं दिलवा रहे हो. वहां से पता चले वहां से मुझे बद्दुआएं आ रही हैं.

ओके तारे कह रहा है कि शिवा फ्री था, मैंने कहा चलो शो ही सुनता हूँ। अच्छा क्या बात है, क्या बात है आपकी। अच्छा नादर भाई क्या हाल है, ठीक है, आज फ्री था, सही है। ओके जरियोन भाई आप क्यों मैम का मूड खराब करने पे लगे हुए, हर शो में शायरी वैसे होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। अच्छा जी नादर मुझे नहीं गोली चाहिए, पता नहीं कौन सी गोलियां करा रहे हो तुम मैम। वो तो मैं सोच रहा हूँ कौन अजूबा है जो तारिक भाई को ले आया है। 4471 वालों रेडी हो जाओ, आज आपके मैसेजेस फेसबुक पर लाइव चलेंगे। मैंने उससे पहले वीडियो बना ली थी, आप इतने करीब से थोड़ी हम दिखाएंगे, उसमें नंबर्स भी होते हैं। ओके

अच्छा जी, किंग फजल जो हैं वो भी हैं हमारे साथ क्वेटा से ऑल द वे. ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू. थैंक्स अ लॉट गाइस, जो लोग हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं और मैसेजेस कर रहे हैं. ठीक है, हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है कि शो के एंड तक शायद मैं कोई एक आधा शेर कह ही दूँ. एहतिशाम ने मैसेज किया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ज़रियोन के मैसेजेस पढ़ने एक टाइम पे बंद हो जाने हैं क्योंकि वो हर शो में आके शायरी की बात करता है. मैंने पहले कहा था, अच्छा वो ये भी कह रहा है साथ कि प्लीज़ चलें शायरी नहीं करनी तो कोई शायरी वाला शो ही कर लें. तुम ऐसा करो, तुम रात के शोज जो है ना वो सुनना शुरू करो, ठीक है. वहाँ पे ना ज़्यादा आँच पे शायरी होती है, मेरे वाले शो में ना हल्की आँच पे होती है, तो तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ पे तुम लोगों को तुम्हें सुनने को मिलेगी. हाँ, एक चीज़ और हो सकती है, किसी दिन स्पेशल जो है मैं 5 to 7 वाला जो पोइट्री वाला शो करूँ और उसमें फिर थोड़ी थोड़ी शायरी जो है ना मैं थोड़ी तेज़ आँच पे शायरी कर दूँ, हल्की आँच पे नहीं, तो कुछ तुम लोगों का भला हो सकता है वरना नहीं हो सकता, ठीक है. अच्छा जी, हे आई एम गोना गो और अच्छा जी, आप लोगों को बताते चलें कि खालिद खान जो है उनका नया गाना आया है लाहौर, लाहौर होते हैं. खालिद खान का नया गाना आया है लाहौर होते हैं, अभी कितने घंटे पहले ही रिलीज हुआ है, 18 hours, और गाना बहुत मज़े का है, क्या बात है. अच्छा, ये तीसरा गाना आएगा सुनकर, लाहौर होते हैं, लाहौर के पीछे ही पड़ गए. एनीवेज, सो हियर वी गो टू गो एंड प्ले दैट ट्रैक, दिस इज वेरी न्यू एंड वेरी नाइस सॉन्ग, सो हियर वी गो विद दिस. And a very nice song, so here we go with this.

हाँ जी सब। अच्छा नए गाने, नई मूवीज और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। ओके मूवीज देखी थी, मतलब आई डोंट वांट टू। ज़ूम्बी मूवी आप लोगों ने देखी है? पता नहीं क्यों मैंने देखी थी ऐसे, बस ऐसे इसलिए क्योंकि हमारी अपनी मूवीज थी, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। ट्राई बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है, और अच्छी ट्राई थी। बस यही कह सकती हूँ मैं, और कुछ नहीं कह सकती। एनीवेज जी 4471 भी आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। जरियून कह रहा है कि अच्छा ठीक है, अगर शायरी नहीं करनी तो मेरी ना माने नादिर की मान ले। मैंने तुम दोनों की नहीं माननी, बिल्कुल मैंने कहा ना चिट्टा करारा जवाब है।

वो आप लोगों ने सुना है ना, या जो या दिल में उतर गए या दिल से उतर गए वाली बात है ना, सुनी है ना आप लोगों ने? पता नहीं, अब आप दोनों ही समझने की कोशिश करें क्या है इसका मतलब। इजाज़ भाई गोलियां रख लें, काम आएंगी। अच्छा, हाउ यू, वेलकम वेलकम टू द शो। ओके जाहिद खान है, चलो सुनाओ लाहौर सॉन्ग। ऑलरेडी प्ले हो गया है लाहौर सॉन्ग। ओके यार, बड़ा अच्छा है, बड़ा मजे का गाना है। गलती से कभी मैम फेसबुक के मैसेजेस पहले पढ़ लें 4471 पे, तो रो रो के सैलाब जैसी सूरत हाल बन जाती है। हाँ, मैंने भी नोट किया है वैसे, हालांकि मैं हमेशा वहाँ से स्टार्ट करती हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन जब मैं इधर से स्टार्ट करूँ ना, तो फिर इन लोगों को पता नहीं क्या होना शुरू हो जाता है। सड़ियल ही बहुत है ये।

जी, उनके अंदाज़ करम उस पे ये दिल का आना जो कि मैंने प्ले नहीं करना. ओके अच्छा, मैं ना वो क्या कर रही हूँ, पेज रिफ्रेश करने की कोशिश कर रही हूँ. पेज नेट कह रहा है कि अच्छा ठीक है, आई एम स्लो टुडे, आई एम इन मूड. ओके, लगता है इसने चाय कॉफ़ी नहीं पी है.

इस गाने आजकल आ ही नहीं रहे हैं, फास्ट सॉन्ग मेरे शो वाले सॉन्ग्स नहीं आ रहे हैं, क्यों? आने तो चाहिए, मेरे ही शो के नहीं आ रहे, स्लो गाने आ रहे हैं, मिलोडियस टाइप आ रहे हैं, क्लासिकल टाइप आ रहे हैं, यू नो कवालियाँ तो खैर ऑब्वियसली वो तो अब तो उनका बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं ना बुरा हाल हुआ है, ट्रेंड चल रहा है भरपूर तरीके से, वो आ रही हैं, बट मेरे टाइप के नहीं आ रहे, जो मेरे शो में चलते हैं वैसे वैसे नहीं आ रहे गाने, वाए कहाँ चले गए हैं सब। अच्छा आज खावर नहीं आया शो में, और पिछले शो में कह रहा था कि मैं रेगुलर होता जा रहा हूँ, देख ली तुम्हारी रेगुलरिटी हमने, दोबारा मत कहना कि रेगुलर हो रहे हो तुम शो में, ओके okay?

Alrighty. So, लाहौर ऑन है विद आजी शिपा मलिक एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर, और आप लोगों को बताते चलें कि आज का हमारा जो शो का टॉपिक है वो क्या है. क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान

जो है वो अनकॉन्शियसली किसी का नुकसान करता है, अनकॉन्शियसली यानी उसको पता नहीं होता और वो किसी का नुकसान कर रहा होता है. आपको लगता है इस चीज़ पे बिलीव है आपको, या आपको ये पता होता है कि जी मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ, तो हमें ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस को पता होता है कि हम किसी का नुकसान कर रहे हैं. क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? सो लाइव कॉल्स हम लेंगे 6:30 और अभी क्योंकि न्यूज़ ब्रेक के लिए जाना है. सो टॉपिक एक दफ़ा फिर से बताते चलें कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आपको लगता है कि जब कोई इंसान किसी का नुकसान कर रहा होता है और उसको नहीं पता होता, या हमें सच में पता होता है जब हम किसी का बुरा कर रहे होते हैं, किसी का नुकसान कर रहे होते हैं, किसी की बुराई कर रहे होते हैं, या मतलब कुछ भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं, कोई भी अमल कर रहे होते हैं, हमें पता होता है. तो आप इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं कि मतलब किसी के नॉलेज में ना हो और हम बस ऐसे किसी का नुकसान किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं और मतलब सवाब का काम समझ के किसी का नुकसान कर रहे हैं. सो डू यू बिलीव ऑन दैट कि ऐसा नहीं है, हमें नहीं पता होता कि हम किसी का नुकसान कर रहे हैं? सो लाइव कॉल्स में जो है शो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो लाइव कॉल्स के लिए ज़रूर जो है हम लोग लाइव सेशन आज करेंगे और वो भी आप लोगों को दिखाएंगे कि कितना मज़ा आता है लाइव कॉल्स में. ओके, सो हियर वी गोना गो विद दिस ट्रैक और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे न्यूज़ ब्रेक पे 6 बजे और 6 बजे के बाद वापस आएंगे. सो स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग. आरजे शिपा मलिक, FM R1 रेडियो पाकिस्तान लाहौर ऑन है.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: six p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Hassan Gilani. First, the headlines. Prime Minister has directed banks and financial institutions to play their role in promoting cashless economy. Shahbaz Sharif has strongly condemned blatant attacks carried out against Saudi Arabia last night. Deputy Prime Minister has underscored the need for a revitalized SOC to advance regional connectivity and sustainable development. Security forces have so far killed 83 Khawarij under ongoing Operation Shaban in Balochistan.
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
4: Government securities में invest करना है. आज apply करने का आखिरी दिन है और bank का time भी खत्म होने वाला है.
3: तुम्हें bank जाने की क्या ज़रूरत है? InvestSpark है ना?
4: InvestSpark?
5: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
4: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
6: दिस इज FM 101.
7: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
8: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: मौसमियाती तब्दीलियों के बाद दर्जा हरारत में हालिया इजाफे से हीट वेव का खदशा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर PDMA पंजाब अलर्ट। मुमकिन मुतासरा अजला में हीट वेव कैंप्स का क्याम। दूर दराज इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील्स, जबकि अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स और अद्वियात की फराहमी। थल, चोलिस्तान और जुनूबी पंजाब में गर्मी और हब्स की शिद्दत में मुतवक्को इजाफे के पेश नजर साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर बाउजर्स के साथ साथ टोबाजात में मवेशियों के लिए 24 घंटे पानी की यकीनी फराहमी और हब्स वाले इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अवाम भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। गर्मी में बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। धूप में निकलना जरूरी हो तो सर को ढांप कर रखें। वक्फे वक्फे से पानी और मशरूबात पिए। ढीला ढाला और हल्के रंग का सूती लिबास पहने। सख्त धूप में मशक्कत वाला काम न करें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। हीट वेव में एहतियात, महफूज हया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: Till the clock stop.
1: तो फिर ट्यून करना मत भूलना आपकी अपनी आरजे शिपा मलिक को एवरी ट्यूसडे ओनली ऑन FM 101 लाहौर।

YZ, once again, assalamu alaikum and good evening all of you. FM 180 Pakistan Lahore se main aapki RJ Shiba Malik aapke saath. Aur topic hamara ye hai ki jab hum kisi ke sath galat kar rahe hote hain, to ye jo hum natak kar rahe hote hain, ye jo hum drama kar rahe hote hain ki mujhe pata nahi mere se ho gaya. Do you believe on that? Kya aap mante hain is cheez ko ki aise hota hai? या हमें सच में पता होता है, हमारी सबकॉन्शियस में अंदर किसी एक कोने में पता होता है कि हम किसी के साथ गलत कर रहे होते हैं और हम सुन नहीं रहे होते, मान नहीं रहे होते. तो डू यू बिलीव सो कि ऐसा होता है? अच्छा जी, खैर वाह शिबा जी, सुपर शो एक घंटा हो गया, ख़त्म होने वाला है अब तो शो. बिल्कुल ऐसे ही है, एक घंटा हो गया हमें तो पता ही नहीं चलता. तारिक भाई फ्री थे तो नींद वगैरह करते किधर, आप शो में ही आ गए हैं. मैम का शो सिर्फ बिजी लोग सुनते हैं, यकीन नहीं है तो मुझे ही देख लें. ओके शिबा जी, आपका शो सुपर फास्ट होता है, टाइम तेजी से गुजर जाता है, मुझे भी नहीं पता चलता. सीरियसली इधर मैं टाइम बताती हूँ, शो शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, टॉपिक अनाउंस करती हूँ, यहां मुड़ के देखती हूँ एक घंटा हो चुका होता है. पता नहीं क्या चक्कर है. अच्छा जी, अच्छा तो इजाज़ कह रहे हैं कि तारिक भाई कैसे हैं आप, अच्छा लगा आपका शो में, आपको शो में देख के. वैसे आपने शो क्यों छोड़ा था? आज अगर वो आ ही गया है ना तो पूछ पूछ के सवाल ना, उसका बुरा हाल कर दो दोनों, ठीक है?

अच्छा जी, सो बतूल कह रही है कि ये जो इतना ज्यादा शोर मचाते रहते हैं ना फेसबुक वाले, नादर तुम्हें कह रही हूँ मैं, बिनिश जब से गई तुम्हारी जुबान भी बहुत लंबी हो गई है, मैं नोट कर रही हूँ। और बिनिश मैं तुमसे सच में अब नाराज हूँ, बिकॉज दिस इज रियली नॉट गुड दैट व्हाट यू आर रियली डूइंग। एंड इतना भी क्या इंसान हो के इवन यू आर नॉट टेलिंग मी, लाइक सीरियसली यू आर एस्केपिंग एंड एस्केपिंग फ्रॉम द वर्ल्ड एंड इंक्लूडिंग मी, come on। और जहां से भी सुन रही हो ना, सुन तो रही होगी क्योंकि मेरा शो सुने बगैर या आवाज सुने बगैर तो तुम्हारा गुजारा है नहीं, तो तुम्हें पता चल ही रहा होगा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ, ठीक है। आई आर रियली वांट टू सी योर एफर्ट्स दैट व्हाट यू आर रियली डूइंग टू यू नो शोइंग अप योरसेल्फ, ओके। अच्छा जी, तारिक कह रहे हैं कि जो है वो इस शो की मासी मुसीबतें जो है वो नजर नहीं आ रही, वो किधर है, अभी अभी मैंने उसका जिक्र किया है, ठीक है, वो पता नहीं किधर है, इसने बहुत मार खानी है इस बार मेरे से, वल्ला ही बहुत मार खानी है। अच्छा जी, बिनते सदीक हैं, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, वालेकुम अस्सलाम एंड गॉड ब्लेस यू मोर, ये नया नाम है, सो वेलकम इन माई शो। नादर सो के थक गया था, अच्छा ओके। और उसने इजाज़ ने भी पूछा है कि तुम वैसे कैसे आ गए शो में और शो छोड़ा क्यों था। जरियोन कह रहे हैं कि आज का शो बहुत ही कमाल है, लेकिन अगर इसमें शायरी का तड़का लग जाए तो और भी कमाल हो जाए। जरियोन लगता है कि शो को समझ गया है, ठीक है, क्योंकि ऐसे वही ट्वीट लिसनर करना शुरू हो जाते हैं जिनको शो की समझ आ जाती है, उनको पता होता है कि हमने शो में जो है ना ऐसे घुसे रहना है, कोई ना कोई चीज़ करते रहना है, और उनको जो है ना ये करने का बड़ा मजा आ रहा होता है। एहतिशाम कह रहे हैं चलें ठीक है, आपने कॉफी पे नहीं जाना तो खाने के लिए ही चले। अच्छा हाँ, जैसे तो मैं कॉफी के लिए मान गई थी तो अब मैं खाने के लिए भी चली जाऊँ, है ना, ओके सही है। अच्छा जी, वी गोना गो विद दिस ट्रैक, और ऑफ कोर्स कॉल्स जो है वो लेनी है 6:30, आप लोगों को पता है कि बड़ा मजा आ रहा होता है मैसेजेस के साथ भी, तो आप बीच बीच में कॉल करे जा रहे हैं, फिर मैं कहनी मैं भी नहीं लेनी कॉल।

0: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.
1: मौसमियाती तब्दीलियों के बाद दर्जा हरारत में हालिया इजाफे से हीट वेव का खदशा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पीडीएमए पंजाब अलर्ट। मुमकिन मुतासरा अजला में हीट वेव कैंप्स का क्याम। दूर दराज इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील्स जबकि अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स और अद्वियात की फराहमी। थल चोलिस्तान और जुनूबी पंजाब में गर्मी और हब्स की शिद्दत में मुतवक्को इजाफे के पेश नजर साफ पानी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर बाउजर्स के साथ साथ टोबाजात में मवेशियों के लिए 24 घंटे पानी की यकीनी फराहमी और हब्स वाले इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अवाम भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। गर्मी में बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। धूप में निकलना जरूरी हो तो सर को ढांप कर रखें। वक्फे वक्फे से पानी और मशरूबात पिएं। ढीला ढाला और हल्के रंग का सूती लिबास पहनें। सख्त धूप में मशक्कत वाला काम न करें। बच्चों बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। हंगामी सूरत हाल में पीडीएमए की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। हीट वेव में एहतियात महफूज हया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हुकूमत पंजाब।
2: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
3: Alright जी, so okay, फरहान तुम बड़े लेट आ रहे हो आजकल। मुझे लगता है कि ये जो लोग लेट आ रहे हैं ना वो चाह रहे हैं कि हम जो हैं वो सुस्ती अवार्ड देने शुरू करें, ठीक है, फिर इनको समझ आएगी। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कह रहा है कैसे मिजाज हैं आपके, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। आई एम फीलिंग ग्रेट, आई एम फीलिंग ओके। हाउ आर यू फीलिंग, हाउ इज एवरीथिंग विद यू, हाउ इज योर फैमिली, हाउ इज योर फियांसे। अजी अफजल वसीम है हमारे साथ, अमानत गार्ड फैसल टाउन लाहौर से। ओके जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप भी जिस लिसनर क्लब से आए हैं और आके नारे लगा रहे हैं, ओके ठीक है, वेरी नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी, वेलकम टू द शो। मुल्तान से है हमारे साथ। ओके जी, अनीसा अली है हमारे साथ, और ठीक है, वालेकुम अस्सलाम अनीसा। ओके अनीसा आ गई हैं हमारे साथ, चलें जी ठीक है। चाय की इस कदर तलब है, इस कदर तलब है ना कि मैं बता नहीं सकती। हाँ अच्छा जी, सो हियर वी गो, गो विद दिस सॉन्ग। रजा, ओके रजा भी ये वाला गाना लगाते हैं। अच्छा गाना मैं वो लगाने लगी है जिसके ऊपर हम हमेशा शायरी किया करते थे, लेकिन आप इस पे शायरी नहीं करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है मुझे। नादर का तो याद आ गया होगा कौन सा गाना है। अच्छा जरियोन है एहतशाम, एहतशाम तो शायरी का नहीं कहता। जरियोन तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये जो गाना मैं लगाने लगी हूँ ना अभी, इस गाने पे मोस्टली पोइट्री होती थी, आज हम इस पे पोइट्री नहीं कर रहे हैं, सो हम भी सादा गाना सुनेंगे कैसा लगता है।

ऑलराइट जी ओके सो सात से आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। दाहिर भाई नजर नहीं आ रहे, आज तुम आ गए तो आप आगे तुम सबको ही पूछोगे, बहुत अच्छी बात है। मैं तो सच्ची सच्ची बातें कर रहा हूँ, पता नहीं आपको क्यों लग रहा है कि मेरी जुबान बहुत चल रही है। जुबान सिर्फ लड़कियों की चलती है और हम लड़के तो बस बहुत कम बोलते, बहुत। ओ हो, कोई इस झूठ पे कैसे ना मर जाए। जैसे खुद के लिए सोच रहे होते हैं वैसे किसी दूसरे इंसान के लिए भी सोचना चाहिए। ओके, जरूर सोचना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। बिनते सदीक ये

0: लाहौर ऑन है विद आरजे शिबा मलिक. लाइव कॉल जो है वो अभी हम लेंगे. 04221100101 इज अ नंबर. यहाँ से हम जो है वो लाइव कॉल लेने वाले हैं. हमारा टॉपिक ये है कि जब हम किसी इंसान के साथ कुछ गलत कर रहे होते हैं तो क्या हमें पता होता है. हम करते चले जा रहे हैं, अगले को मतलब मुंह के बल गिरा दिया है, उसकी ऐसी तैसे फेर के रख दी है, और हम जो है फिर बड़े मासूम एक्ट कर रहे थे. यार मैंने पता नहीं लगा, यार मेरे से हो गया, मुझे समझ नहीं आई. सो डू यू रियली बिलीव, आपको सच में ऐसा लगता है कि हम जब किसी का बुरा कर रहे होते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस में वो जिसको कहते हैं ना ज़मीर वाली बात, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो हिट नहीं कर रही होती, या हमें ये नहीं कह रही होती कि यार ये तू क्या कर रहा है या क्या कर रही है. सो डू यू रियली बिलीव, इसी बात के ऊपर यही हमारा टॉपिक है और इस पे हमने लेनी है लाइव कॉल्स. और 04221100101 इज अ नंबर. सो नाउ यू कैन कॉल, लेट्स सी हु इज आवर फर्स्ट कॉलर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान से आपको वेलकम खुश आमदी जी. आयानु अहलन व सहलन मरहबा वली करी आयानु ते
0: पखैर रागले. ओके,
1: गुड इवनिंग. ओ सॉरी,
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग. हमारा क्या हाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक. करम,
1: जब से आपका डे चेंज हुआ है ना, संडे से आप ट्यूजडे पे आई हैं.
0: हाँ हाँ,
1: मैं भूल जाती हूँ.
0: ओह, बहुत सारे लोग, मैं खुद भूल जाती हूँ. वीक के बीच में ही मुझे खुद को भी याद रखना पड़ता है कि वो शो है. अच्छा यार.
1: बहुत अच्छा शो करती हूँ, बहुत मजा आता है.
0: थैंक यू.
1: और जो आपने टॉपिक रखा है ना, उस पर मैं ये कहूंगी कि वो आप कहती होते हैं ना पॉपकॉर्न लोग, इन पॉपकॉर्नों को ना
0: ओके,
1: मेरा दिल करता है लेफ्ट हैंड की ना स्लाइटें मारूं राज राज के.
0: ओ तेरी खैर. अच्छा ओके ठीक है, तो तुम ये कहना चाहती हो कि लोगों को पता होता है ना,
1: सब कुछ जानबूझ के करते हैं बिना वजह. अच्छे बलों को रस्ते में ना वो क्या कहते हैं कांटे बिछाते हैं अच्छे, और उनकी कामयाबियों पे भी चढ़. ऐसे मैं इनको सीधी कहूंगी कि ये ऐसे लोग खुद होते हैं ऐसे अंदर से, लेकिन ना दूसरों के साथ ये समझते हैं कि बस दूसरे वैसे हैं.
0: ओके, वेल थैंक यू सो वेरी मच हमारा फॉर बीइंग इन शो. थैंक्स अ लॉट, और अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए भी थैंक यू.
1: और ना मलकू का एक गाना नया आया है.
0: कौन सा?
1: सड़ो शरीको.
0: सड़ो शरीको. ओके, आई विल ट्राई टू प्ले दैट.
1: वो आपने प्ले करना ला.
0: ओके,
1: अपरारू हक का लगा दीजिएगा, शरीका नु आग लग दिया सारे पॉपकॉर्न लिसनर वास्ते.
0: अच्छा,
1: साडे ने साडे तो भी ते साडे तो भी. ओके ला.
0: अच्छा ओके, लाफिस. ऑलराइट जी, सो ये वेल ये हमारे साथ हमारा थी, और लेट्स सी हु इज नेक्स्ट. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए.
0: लो ओके जी, टॉपिक हमारा ये है कि जब हम किसी के साथ कुछ गलत कर रहे होते हैं, किसी का नुकसान कर रहे होते हैं, तो क्या हमें ये पता होता है कि हम किसी का नुकसान कर रहे हैं. या ये जो पेट किस्म का डायलॉग है जो हमने बना के रखा है, यार मैंने पता ही नहीं लगा. सो आप किस पे बिलीव करते हैं? लेट्स सी कॉलर क्या कहते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो
3: रेडियो.
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम.
0: कौन और कहाँ से?
3: मैं बिस्मा लाहौर से बात कर रही हूँ.
0: बिस्मा, क्या हाल है आपका?
3: मैं ठीक हूँ, आप सुनाए. यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, हवाएं
0: अच्छा?
3: चल है ठंडी ठंडी.
0: ओके गुड, थोड़ी सी हमें भी भेज दीजिए.
3: ये नहीं भेज दी है.
0: मैं स्टूडियो के अंदर हूँ ना, इसलिए अच्छा? मैंने अभी तक रिसीव नहीं की है.
3: अच्छा, जब आप बाहर आएंगे ना तो फिर मैंने भेजी हुई है तो रिसीव कर
0: मैं कर लूंगी. सो बिस्मा, टॉपिक के बारे में क्या कहोगी?
3: टॉपिक के बारे में यही है कि लोगों को पता होता है और वो जानबूझ के करते, बस ऊपर से भोले बन जाते हैं ड्रामे बाज कर. बस ड्रामे बाजियां चलती हैं आजकल के दौर में, जो जितने ड्रामे करता है लोग उसके पीछे उतना ही भागते हैं. और जो हम जैसे बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं जो सोचते हैं वो बता देते हैं, बस दुनिया समझती है कि यार ये तो बोरिंग से लोग हैं.
0: ओके ठीक है लो बिस्मा ने, उसने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं उसको खुदा हाफिज कहूँ. थैंक यू सो वेरी मच बिस्मा फॉर बीइंग शो और अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए. तो आप लोग जो हैं इसके बारे में बात कर सकते हैं कि हमें, वैसे हमें पता होता है कि जब हम किसी के लिए बुरा कर रहे होते हैं, किसी का नुकसान कर रहे होते हैं, हमें पता होता है. और जिन लोगों को नहीं पता होता, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आपका ज़मीर नहीं है, आपका ज़मीर मर चुका है, मुर्दा हो चुका है, और आप अपने जिस्म में चलती फिरती लाशें हैं. कोई अच्छा सा दिन देख के खुद को दफना लें, मैं तो ये मानती हूँ.

0: Alright, जी, so, live calls का सिलसिला जारी है और हम लोग बात कर रहे हैं कि जो किसी का बुरा कर रहा होता है क्या उसको पता होता है. हेलो
1: हेलो,
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन और कहां से?
1: मैं लाहौर से शीजा बात कर रही हूँ.
0: शीजा
1: जी,
0: क्या हाल है आपका?
1: मैं ठीक हूँ.
0: मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक. शीजा, टॉपिक के बारे में क्या कहोगी?
1: मैं तो कहूंगी कि इंसान खुद ही बुरा करता है और उसके साथ खुद ही बुरा हो जाता है.
0: लेकिन ये मानती हो कि अगले बंदे को पता होता है?
1: क्योंकि कोई भी ना इस तरीके से जाने में गलती नहीं करता. इंसान भूल के कोई ना, हाँ अच्छा किसी से हो ही जाती है गलती, लेकिन जो जब कोई कोई बुरा करता है तो उसे पता होता है.
0: ओके.
1: और मैम बात सुने, आप ना एक सॉन्ग डेडिकेट करेंगे?
0: किसको?
1: मतलब बस किसी करना, एक सॉन्ग आपने बताना है.
0: कौन सा?
1: चंद्र मुखड़ा नजर नहीं आता.
0: चंद या मुखड़ा नजर नहीं आता, तो फिर जब वो नजर ही नहीं आ रहा तो गाना क्या लगाना है उस पे?
1: बस आप डेडिकेट करना, मैंने किसी को. ठीक है, आप लगाएंगी?
0: मैं अभी लगा देती हूँ.
1: ओके
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.

0: ऑलराइट जी, शीजा हमारे साथ थी। शीजा, आपने गाना बताया था चांदनी जिया मुखड़ा नजर नहीं आंदा, राइट? लेकिन ये कौन से सिंगर का लगाना है ये भी बता देती, और मैं किस सिंगर का लगाऊं? तनवीर ने गाया हुआ है, फिर अमजद अली ने गाया हुआ है, फिर हमारे लेजेंड नुसरत साहब उन्होंने भी गाया हुआ है, फिर उसके बाद शफकत खान ने गाया हुआ है। ओके, तो मैं किसका प्ले करूं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, अगर तो आप लोग मिस कॉल मार रहे हैं ना, तो ये वाली गेम ना खेलें, बिकॉज टॉपिक इज रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई रियली वांट टू गेट ओपिनियन फ्रॉम पीपल के उनका टॉपिक के बारे में क्या कहना है, तो ये मत कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से?
1: मोइज फ्रॉम लाहौर।
0: कौन?
1: मोइज फ्रॉम लाहौर।
0: मोइज फ्रॉम लाहौर जी। मोइज, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक, आप सुनाएं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। मोइज, थोड़ा ऊंची बोलोगे?
1: जी बोल लेता हूँ।
0: बड़ी मेहरबानी। क्या हो रहा है?
1: कुछ नहीं, एंजॉय।
0: एंजॉय हो रहा है?
1: जी।
0: ओके, शो सुन रहे हैं?
1: जी।
0: ओके, कैसा लग रहा है?
1: ठीक, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, काफी मजे का शो है।
0: थैंक यू सो वेरी मच। तो टॉपिक का भी पता होगा
1: जी,
0: क्या कहोगे टॉपिक के बारे में? कि जब हम किसी के साथ कुछ गलत कर रहे होते हैं, क्या हमें पता होता है, अंदर से एक आवाज आ रही होती है ना मुसलसल?
1: हमें पता ही होता है। पता भी होता है, फिर भी हम गलत कर रहे होते हैं।
0: ओके, बस ओके। वेल मोइज, थैंक यू सो वेरी मच, और आई होप नेक्स्ट टाइम आप दोबारा भी आएंगे शो में। सो जस्ट काम डाउन। मुझे लगता है जब फर्स्ट टाइम कॉल मिलती है ना, तो इस तरह होता है, बात ही नहीं हो रही होती।
1: ठीक है, ठीक
0: है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। वो आप शिबा पे आप पूछ रही थी ना कि किसकी आवाज में लगाऊं मैं गाना है जो मैंने आपको बताया था, वो रिसेप अली खान के आवाज में लगा दें।
0: अच्छा, ये तो वो वाला गाना है ना, बिगड़ गई है सो थोड़े दिन आ तो, और उसमें है ना चन जय मुखड़ा नजर नहीं आंदा।
2: हाँ जी, वही है।
0: लड़की ने ये सुनना है, बिगड़ गई है तो थोड़े दिन आ तो। अच्छा,
2: नहीं शिबा भी, मैं नहीं बिगड़ी, मेरा भाई मेरे पास बैठा, उसने मुझे कहा कि सॉन्ग लिखवा।
0: अच्छा, ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो होता है, ऐसे भी होता है, तो रियली क्योंकि टाइम कम होता है लाइव कॉल्स में, तो हम लोग गानों के साथ साथ ही जो है कॉल्स ले रहे होते हैं। सो मोस्टली ओपिनियन यही आ रहा होता है कि हमें पता होता है हम क्या कर रहे होते हैं। तो कौन लेजेंड लोग हैं जो ये कहते हैं कि यार मैनू पता नहीं लगा, मेरे को हो गया, मेरे से नुकसान हो गया किसी का, मुझे पता ही नहीं चला, कौन है? आई रियली वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू गेट दैट लेजेंड इन माई शो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से?
3: मैं हमजा बात कर रहा हूँ लाहौर से।
0: जी हमजा, क्या हाल चाल है आपका?
3: ठीक ठाक, आप सुनाए?
0: जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ
3: जी। मैंने ये बताना था, मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ, तो अब जाके मिली है।
0: मुझे पता नहीं था ना कि आप कॉल कर रहे हैं।
3: अच्छा
0: अच्छा, बात ये होती है कि लिसनर जब कॉल कर रहे होते हैं तो उनकी कॉल नहीं पिक होती, तो मोस्टली वो कह रहे होते हैं मैं इतनी देर से कॉल कर रहा था, आपने मेरी कॉल नहीं ली। ऐसे जैसे पर्सनली हमें पता होता है कि किसकी कॉल आ रही होती है। ऐसे नहीं होता, हमें नहीं पता होता किसकी कॉल आ जाए, और बहुत सारी कॉल्स आ रही होती हैं, तो इसलिए सम टाइम लेट हो जाते हैं। तो खैर, टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे आप?
3: टॉपिक के बारे में यही कहेंगे कि पता होता है कि इंसान अगले के बारे में बुरा सोच रहा है, इंसान इग्नोर कर देता है।
0: बस ओके, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम, क्या है मैम, कैसी है?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए।
4: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। मैं लाहौर से साजिदा बात कर
0: रही हूं। साजिदा, मैं बोलने वाली थी। ओके जी साजिदा, तो क्या कहोगी टॉपिक के बारे में, क्या लगता है तुम्हें
4: टॉपिक के बारे में? ना टॉपिक के बारे में कहूंगी, जानबूझकर हम करते हैं, हमें पता होता है, हम ना एक अपने मजे में होते हैं, किसी को तंग करके, किसी की दिलाजारी करके, तो हमें ना खुशी मिलती है, लेकिन सारा पता होता है हम जानबूझकर उसे, यानी कि उसको तकलीफ में देखना चाहते हैं, तो पता हमें सारा होता है, तो बाद में हम कहते नहीं हमें नहीं पता ये वो, उसके सामने ना हम मासूम से या ऐसे बन जाते जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है, तो उसका ना और हमें उसको तकलीफ दे के ना हमें मजा आता है, जिसको दे रहे होते हैं, और बाद में हम कहते हैं गलत हुआ ये वो, ऐसा नहीं होना चाहिए था तुम्हारे साथ, ऐसे कहते हैं हम. लेकिन पता हमें सारा होता है.
0: राइट, ओके, ठीक है, थैंक यू साजिदा.
4: ये गाने आप शुरू से अच्छे नहीं लगा रही थी, कोई धमाके वाला गाना होना चाहिए जो मैडम के लगा दे प्लीज.
0: मैडम का मैंने झांझर के लगाया था, इससे ज्यादा क्या करूँ मैं.
4: मैंने उसके बाद सुना, मैंने नहीं
0: तो फिर जब आपने सुना ही नहीं तो आपने कैसे कहा कि ऐसे गाने नहीं लगे.
4: चले फिर एक और लगा दो ना.
0: कौन सा
4: मैडम कही.
0: अच्छा चलो ठीक है,
4: वाला लगा दो, तेरा इश्क भी है पागल मेरा हुस्न भी दीवाना.
0: खैर तेरा इश्क भी है पागल, चलो ठीक है, ओके ठीक है. अच्छा ओके चले ठीक है, थैंक यू साजिदा.
4: और सब सुनने वालों को सलाम, आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं. अपना ख्याल रखिएगा.
0: थैंक यू स्वीटी, अल्लाह हाफिज़. अच्छा ओके, वो गाना जो आप बोल रहे हैं बिगड़ गई है सोने देना, तो वो मैं थोड़े दिन तो वो वाला जो है वो मैं लास्ट में लगा के जाऊंगी, ठीक है, बिकॉज शो का टेम्पो कुछ वैसा है. ओके वेल, टॉपिक हमारा ये है कि जो लोग किसी के साथ गलत कर रहे होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं से पता चल रहा होता है कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं. क्या आप भी उनमें से हैं, या आप उन लोगों में से हैं जिनका ज़मीर जो है वो रज के मुर्दा हो चुका है और आपको नहीं पता चलता. हेलो, अस्सलाम वालेकुम
5: शिबा, क्या हाल है.
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, वालेकुम अस्सलाम. पीछे से भी आवाज़ें आ रही हैं.
5: अच्छा, मैं टॉपिक के बारे में बेटा ये कहना चाहती हूँ कि वाकई हमें बहुत से लोगों को पता था, लेकिन शर्मिंदा नहीं हो रहा. आजकल जमाना ही ऐसा है, करके तो बहुत मजा आता है, सुकून मिलता है, लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि अल्लाह भी तो देख रहा है ना, अल्लाह को भी तो पता है सारा. फिर जब मैं कहा तो अमर तक डर जाते हैं.
0: ओके
5: ऐसे ही है कि नहीं.
0: ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. हमें पता होता है सारा कुछ हो रहा होता है,
5: सब पता होता है. हर आज का तो वाकई बहुत सबको सब बता देता कुछ आया हुआ है तो, लेकिन कुछ अल्लाह से डरना चाहिए और क्या, वरना इतना मजा नहीं लेना चाहिए. जब अल्लाह ताला मजे लेंगे ना फिर पता चलेगा लोगों को.
0: हाँ बिल्कुल ऐसे ही है.
5: अच्छा बेटा, अल्लाह ताला आपको रहमतें करे, बहुत खुश रखे, अल्लाह ताला आपको तरक्कियां दे, आमीन ये रब्बिल आलमीन.
0: अल्लाह हाफिज़. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
6: वेलकम
0: जी, कौन और कहाँ से.
6: सलीम टेलर.
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो.

0: लगानी है जो पहले लगाते रहे, यसु पंजू हार्दिक पुत्र है अभी के?
1: हाँ वो ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी,
0: ढूंढनी पड़ेगी यार। हाँ। चलें
1: चले,
0: तो हम यही टॉपिक के ये पे यही कहेंगे कि जगह तोड़ देने दिल बर्बाद होंगे। जो किसी को तंग करते हैं वो खुद भी जो है ना तंग ही रहते हैं।
1: हाँ ये तो बात सच है।
0: ठीक है, तो जहाँ तक आपकी हमारी बात जा रही है, सलामती की दुआ। मास्टर इरफान आपको सलाम पेश कर रहे हैं।
1: बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम।
0: बहुत प्यारी आवाज है, बहुत शो अच्छा कर रहे हैं। शमसी क्लब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।

ना सही मत डाल ये फरेब मोहब्बत का जाल, ना सही मत डाल ये फरेब मोहब्बत का जाल, तू बस कप में चाय डाल और डाल और डाल।

भाई जी, सो नाउ साइनिंग ऑफ। और जो लोग अभी तक कॉल कर रहे हैं ना, सो प्लीज, बस मैंने पहले बोल दिया था कि दैट्स इट नाउ। एनीवेज, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि जब भी हम किसी के साथ कुछ गलत कर रहे होते हैं ना, तो सब कॉन्शियस में अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि हम किसी दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं और अगले का नुकसान कर रहे हैं। वही मुकदी गल जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको नहीं पता होता ना कि आप किसी के साथ जो हैं वो गलत कर रहे हैं और आपका ज़मीर अंदर से आपको कह नहीं रहा, तो फिर आपका ज़मीर मर चुका है, मुर्दा हो चुका है और आप चलती फिरती लाशें हैं। खुद को टाइम दे के कहीं दफना दें प्लीज़। नाउ आरजे शिवा मलिक इज साइनिंग ऑफ। गोना सी यू लाइक नेक्स्ट ट्यूसडे। आप लोगों को दोबारा आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। और वो जो सुनना चाह रहे थे, चन्न जया मुखड़ा नज़र नहीं आंदा, डेडिकेटिंग टू ऑल ऑफ यू एंड गोना सी यू नेक्स्ट वीक। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड of floods.

वाइब की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं और ये वाइब आपको हिल हिल के गिरने पे मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किसी भी वाइब नुकसान

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: मौसमियाती तब्दीलियों के बाद दर्जा हरारत में हालिया इजाफे से हीट वेव का खदशा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर PDMA पंजाब अलर्ट। मुमकिन मुतासर अजला में हीट वेव कैंप्स का क्याम। दूर दराज इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील्स, जबकि अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स और अद्वियात की फराहमी। थल, चोलिस्तान और जुनूबी पंजाब में गर्मी और हब्स की शिद्दत में मुतवक्को इजाफे के पेश नजर साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर बाउजर्स के साथ साथ टोबाजात में मवेशियों के लिए 24 घंटे पानी की यकीनी फराहमी और हब्स वाले इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अवाम भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। गर्मी में बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। धूप में निकलना जरूरी हो तो सर को ढांप कर रखें। वक्फे वक्फे से पानी और मशरूबात पिएं। ढीला ढाला और हल्के रंग का सूती लिबास पहने। सख्त धूप में मशक्कत वाला काम न करें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। हीट वेव में एहतियात, महफूज हया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब।
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: मौसमियाती तब्दीलियों के बाद दर्जा हरारत में हालिया इजाफे से हीट वेव का खदशा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर PDMA पंजाब अलर्ट। मुमकिन मुतासर अजला में हीट वेव कैंप्स का क्याम। दूर दराज इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील्स, जबकि अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स और अदवियात की फराहमी। थल चोलिस्तान और जुनूबी पंजाब में गर्मी और हब्स की शिद्दत में मुतवक्को इजाफे के पेश नजर साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर बाउजर्स के साथ साथ टोबाजात में मवेशियों के लिए 24 घंटे पानी की यकीनी फराहमी और हब्स वाले इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अवाम भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। गर्मी में बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। धूप में निकलना जरूरी हो तो सर को ढांप कर रखें। वक्फे वक्फे से पानी और मशरूबात पिएं। ढीला ढाला और हल्के रंग का सूती लिबास पहने। सख्त धूप में मशक्कत वाला काम न करें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। हीट वेव में एहतियात, महफूज हया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब।
0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: हमारी वहाँ पे रोशनी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो वाला मसला भी नहीं है कि आप कहें जी हॉस्पिटल में जाएंगे तो लाइट नहीं होगी। तो एक बैकअप के साथ बड़ी हाँ जी बहुत ज़बरदस्त पंजाब के अंदर एक इनिशिएटिव है और तमाम हॉस्पिटल को भी सोलराइज किया जा रहा है और 24/7 वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, साफ पानी, वहाँ पे हर किस्म की सहूलत दी जाती है।
1: कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर उस्मान अली खान साहब, प्रोग्राम डायरेक्टर पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, आज पैदा करो नई सोच में हमारे मेहमान थे। 1033-1033-1033 वो हेल्पलाइन है जिसमें किसी भी वक्त बच्चे की डिलीवरी के हवाले से कोई भी इमरजेंसी हो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से फ्री आपको घर से आपके गांव से पिक करके करीबी हेल्थ फैसिलिटी तक पहुँचाने का इंतज़ाम मौजूद है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगेवान।

0: सो वेलकम बैक टू द शो, एक दफा फिर खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे आज के मेहमान हमारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप MS फाउंटेन हाउस और साइकाइट्री के हवाले से जो साइकाइट्रिक इशूज़ हैं लोगों के, उसके ऊपर बड़ी होशुबा किस्म की डॉक्टर साहब गुफ्तगू कर रही हैं। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब, बाय द वे, मतलब इन इशूज़ के ऊपर मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बात होनी चाहिए। हमें नहीं पता कि हम लोग किस वक्त किस मर्ज में मुब्तला हैं। ज़हनी जो हमारी कैफियत है, हम सब नॉर्मल चल रहे होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में लगा होता है, हमें ये लगता है, हमें ये लग रहा होता है, लेकिन दुनिया में जैसे आपने फरमाया 8 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है इस वक्त साइकेट्री कोई ना कोई मर्ज में मुब्तला हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये जो शक करना होता है जो रिलेशनशिप में एक दूसरे पे, अगर नहीं भी कोई रिलेशन है तो फिर भी शक करना, ये भी एक साइकेट्रिक इशू है?
1: बिल्कुल, बीमारी है, पैरानॉइड किस्म की बीमारी है। और इसमें बड़ा मरीज को ऐसा लगता है कि जो मेरा पार्टनर है या मेरे साथ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपस में बातें करते हैं, तो उनको ये ख्याल आता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। या जिसे मैंने बहुत कॉमनली ये देखा है कि मियां बीवी के रिश्ते में ये बहुत ज़्यादा होता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि जब या तो कुछ उसने किया हुआ होता है बेचारे ने, तो चले ठीक है, मान लें वो किया भी नहीं होता। अच्छा, मैं बहुत कॉमनली इन चीज़ों को देखता हूँ और ये बहुत इतना काम है। आज सुबह ही मैं OPD कर रहा था तो मेरे पेशेंट मेरे पास आए, तो उसमें एक बड़ी ऐसी कंपनी के बड़े CEO थे जो अपनी वाइफ को लेके आए, और बड़ी सोफेस्टिकेटेड कपल था, बज़ाहिर बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी जो है ना मुझ पर शक करती है। तो मैंने अपनी पोस्टिंग वापस जो है ना वो लाहौर करा लिया, इतनी बड़ी पोस्ट पे थे कि मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ के आ गया, उनके फिर भी शक कर रही है। तो फिर मैंने जब उनसे बात करनी शुरू कर दी, तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही अपने शौहर के बारे में जो पब्लिकली कभी भी कोई
0: अच्छा
1: नॉर्मल औरत कर नहीं सकती। लेकिन क्योंकि हमारे माशरे में एक बात बहुत आम है, भाई कुछ ना कुछ तो होगा, जब ही तो ये बात निकली भाई कुछ ना कुछ क्या होगा, जबकि इतनी अबनॉर्मल बातें वो कर रही थी। तो फिर अल्टीमेटली हमने उनको दवा लिखी और उनकी फैमिली काउंसलिंग भी की, उनको समझाया भी कि ये साइकेट्री का मर्ज़ है। और इसमें जबकि उनके बच्चों की शादियां हो गई थी और वो इतने सीनियर दोनों लोग थे, तो उस पर वो शक करना, और ये बीमारी
0: भी,
1: जी हाँ, ये बीमारी जो है ना वो हर उम्र में किसी वक्त भी हो सकती है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये कब पता चलेगा पेशेंट की जो कंडीशन है ये साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है?
1: अच्छा देखिए, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और बड़ा ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया। इसके लिए 3 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं कि जो नॉर्मली तौर पे तकरीबन हर शख्स को हो चुकी है।
0: ठीक,
1: जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे भी हो चुकी है, हो सकता है कि आपको भी हो। जैसे एन्जाइटी है, जैसे डिप्रेशन है, भाई आपको कोई आपने काम सोचा हुआ था और वो नहीं हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट नहीं आया अच्छा, पर डिप्रेशन तो होगा ना, नॉर्मल है ये। और अगर एन्जाइटी ऐसी कि कल जो है ना मैंने जाना है और फर्ज करें मैंने इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू खुदा ना खास्ता वो इंटरव्यू ख़राब हो जाए, तो एन्जाइटी तो होनी है। एक बात को अच्छी तरह से याद रख लें कि जो गुजरा हुआ कल है वो डिप्रेशन करता है,
0: अच्छा,
1: और आने वाला कल जो है वो एन्जाइटी करता है।
0: ओके,
1: तो ये बड़ा आसान सा क्राइटेरिया
0: है,
1: इसको जो है ना वो
0: जो गुजरा हुआ कल है वो डिप्रेशन
1: करता है। काश ये कर लेते, आपने देखा

0: काश मैं वहां चला जाता, काश वो नौकरी कर लेता, काश मैं ये शादी कर लेता, काश ये काश काश काश जो है ना वो आपको
1: हाँ।
0: अच्छा ये दोनों काश, ये जो एक काश है और जो आने वाले कल का काश है कि वो जो कर लें, तो ये दोनों आज को खराब कर देते हैं।
1: वाह,
0: जो आपके पास है
1: बिल्कुल ऐसे ही,
0: तो जो आपके पास है भाई उसी को एंजॉय कर लें। तो जो मैं आपका क्वेश्चन था कि किस तरह से कौन साइकोलॉजिस्ट के पास जाए और कौन साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो बातचीत से ठीक हो जाती हैं। आप काउंसलिंग करते हैं, आप बातचीत करते हैं, तो कुछ बीमारियां उस तरह ठीक हो जाती हैं। अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसमें ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है लेकिन थोड़ी दवा की भी ज़रूरत है।
1: अच्छा,
0: यानी आपको डिप्रेशन हो गया है, खुदा ना खास्ता मुझे डिप्रेशन हो गया है, तो उसकी वजह से मेरी नींद ख़राब है, उसकी वजह से जो है ना वो मुझे लो मूड है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, तो मुझे थोड़ी सी दवा की ज़रूरत है। और जब नींद और मेरी लो मूड बेहतर हो जाएगा तो फिर मैं काउंसलिंग के ज़रिए अपनी ट्रीटमेंट को लेके आगे चलूँगा। और तीसरा, इसमें 90% जो है वो दवा की ज़रूरत है।
1: अच्छा,
0: और
1: अच्छा।
0: ये वो बीमारियाँ हैं कि जिसमें पेशेंट या तो अपने आप को नुकसान पहुंचा देता है, या आप उसके अपनी फैमिलीज को या किसी और के साथ जिसके बारे में उसको ये ख्याल आता है कि ये मेरा कोई दुश्मन है, मेरे बारे में करता है। जैसे वो जो एक कॉमन सी बात है, आप भी और मैं दुनिया जिंदगी भर हम सुनते रहे कि जादू हो गया है, नज़र लग गई है, जिन आ गया है, साया आ गया है, कसर हो गई है, तो ये इस तरह की चीज़ें। तो वो इन बीमारियों में जो ख़ास तौर पर स्किज़ोफ्रेनिया है,
1: शिज़ोफ्रेनिया
0: और मालखोलिया इसको कहते हैं, इस बीमारी के अंदर कुछ चीज़ें नज़र भी आती हैं।
1: तो अच्छा,
0: वो केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से। और इन बीमारियों में कुछ आवाज़ें भी कान में आती हैं, जैसे कान में ये अमूमन आवाज़ आती है कि इसको मार दो, ये तुम्हारा दुश्मन है, मार देते हैं। तो इसमें जो है वो दवा की ज़रूरत पड़ती है। ये वो बीमारी है कि दुनिया में ये 1-2% ऑफ द पॉपुलेशन है। यानी फॉर एग्जाम्पल इस पाकिस्तान की मिसाल ले लें कि पाकिस्तान में अगर 25 करोड़ की आबादी है तो 25 से 50 लाख स्किज़ोफ्रेनिक्स यहाँ पे रहते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: 25 से 50 लाख।
1: तो ये एज लिमिट, इसमें एज लिमिट क्या है?
0: किसी एज लिमिट इसमें 18 से 25 साल के दरमियान पहला एपिसोड आ जाता है,
1: 18 से 25 के
0: जी। और इसमें इसमें खास बात ये होती है कि ज़हीन लोगों की बीमारी भी।
1: अच्छा,
0: तो खास बात ये है कि अचानक उसमें ये बीमारी आती है, और ये एक बड़ी तकलीफ़ देह बीमारी है। अगर इसको शुरू में ही पहली एपिसोड पे ही अगर आपने इसको ट्रीट करना शुरू कर दिया तो कामयाबी जो है ना वो बहुत बेहतर होती है, अदरवाइज़ नहीं तो फिर ये बड़ी तकलीफ़ देह रहती है और फिर ज़िंदगी के साथ चलती है। वही बदकिस्मती हमारे घरों की, नहीं नहीं अब्बा भी ऐसे ही थे, अब्बा को भी बहुत गुस्सा आता था, अब्बा की भी नींद ख़राब होती थी। भाई अगर अब्बा की भी होती थी तो उसको भी दवा खिलानी चाहिए थी। तो इसी तरह से ये बच्चे फिर ये पढ़ते भी रहते हैं, अच्छी फैमिलीज में जैसे होता है, साथ में बीमारी भी चलती रहती है, पता नहीं चलता।
1: लेकिन इस बीमारी के साथ वो अपने रिलेशनशिप को भी तो ख़राब करते होंगे ना?
0: बिल्कुल हो रहा होता है, लेकिन आपको मैं बताएं, माशरा वही ये छुपाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात की थी कि मैंने ऐसी फैमिलीज देखी ही नहीं कि जो आराम से जाके शादी ब्याह में रिश्तेदारियों में जाके बताएं कि भाई हम थोड़ी देर हमें इसलिए हो गई है कि हमारा बच्चा बीमार है, वो बताते भी नहीं है। पहली बात तो वो जाते ही नहीं है, मस्जिदों में जाना छोड़ देते हैं सर। क्योंकि हमारा ये जो पैथोलॉजिकल माशरा जो है, ये बड़ा पैथोलॉजिकल माशरा है, सो कॉल्ड मुसलमान माशरा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग टीवी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारा रेडियो का सुन रहे हैं, कि खुदा के वास्ते लोगों के ज़ातियात ऐसे मालूमात ना लिया करें कि जिसका बच्चा ज़हनी बीमार है उसी के बारे में आप पूछते हैं। यार उस बच्चे के बारे में क्यों नहीं पूछते कि जो नंबर आता है जिसका नंबर 1, उसी बच्चे के बारे में क्यों पूछते हैं कि जिसकी मंगनी टूट गई है या निकाह टूट गया है, तलाक हो गई, उसी के बारे में क्यों
1: पर्सनलाइज हो जाते
0: ये हैं। क्यों करते हैं ये, क्यों करते हैं? क्या करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने का ये हम सिला दे रहे हैं कि मुझे तो एक बात का पता है सर, ये कुरान में ये जिक्र आया हुआ है कि करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती है जब तुम्हें तकलीफ होती है। एक कैसी बात है कि हम वो काम कर रहे हैं कि जिसके वजह से उनको तकलीफ होती है।
1: और रही सही कसर हमारे डिजिटल मीडिया ने पूरी कर दी है कि हम अपनी फैमिलीज को भी एक्सपोज कर रहे हैं और लोगों की फैमिलीज को भी एक्सपोज कर रहे हैं।
0: आप देख लीजिए
1: किसी का अगर कोई बात पता चल गया तो फिर उसको हम ऐसे पब्लिश करते हैं कि हम फर्ज समझते हैं कि इसको पब्लिश किया जाए, इसको तशहीर की जाए, और हमें हुक्म यह है कि आपने पर्दा डालना है।
0: اچھا آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے, آپ نے ایسی بات کر دی ہے, پھر مجھے نہیں پاس اللہ سر کیونکہ میرے لیے وہ رول ماڈل ہیں, غیبت, اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. آپ ذرا سوچیں, ایک تو آپ کا بھائی وہ مر گیا
1: اور اس کا گوشت,
0: آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں, مطلب یہ ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیا پاسبل بات ہے. لیکن یہ اتنی تکلیف دہ بات مثال دے کے سمجھائی جا رہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک بات پتا ہے کہ ہمیں اس نے پیدا کیا ہے اور ہماری نیچر کو وہ جانتا ہے, اس کو پتا ہے کہ تم یہ کرو گے. تو کریم آقا کے ذریعے انہوں نے ہمیں میسج بہت کلیئر دیا, اور اتنا تکلیف دہ میسج ہے, مزہ آتا ہے, مزہ آتا ہے کہ بتایا جائے کہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ ہو رہا ہے, غیبتیں کرتی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر میں کہوں کہ مجھے خیال آ جاتا ہے کہ مسجد نبوی سے تشریف باہر نکلیں تو جنت بقیع کے پاس, آپ کو پتہ ہے نا, آپ تو سب
1: جی الحمدللہ,
0: تو وہاں کے پاس جناب علی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی, آپ چلتے ہوئے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کہ مجھے تمہیں دیکھ کے ایک بات کی تکلیف ہو رہی ہے کہ تم سب لوگ, تم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عورتیں جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گی. تو وہ ایک دو رونے لگی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ, تو انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ تم لوگ غیبت کرتے ہو, عورتیں زیادہ غیبت کرتی ہیں. لیکن سوری ٹو سے اب یہ وقت آ گیا کہ مرد بھی نہیں وہ بھی کم نہیں ہے اور ان کو بڑا مزہ آتا ہے, اور کا نتیجہ آپ دیکھیں ذرا, خالی اس بات ہی کو سوچ لیں اور ایک دن ذرا جبر کر کے دیکھیں, کریں تو جبر, بڑا مشکل ہے کہ نہیں جی مجھے پتا چل جائے کہ آج اس کا نوکری ختم ہو رہی ہے یا اس کا گھر میں کوئی ایشو ہے یا اس نے چوری میں پکڑا گیا ہے, فوری بتائیں گے.
1: ہماری جو گفتگو کا محور ہوتا ہے وہ دوسرے ہوتے ہیں,
0: آپ دیکھیں
1: اس کے گھر میں یا اس کے کیا ہو رہا ہے, معاملات میں کیا ہو رہا ہے, لوگوں کو ڈسکس کرنا. اب تو خیر ایک طریقہ کار جیسے میں نے عرض کی کہ ڈیجیٹل میڈیا آ گئے,
0: جی ہاں بالکل,
1: ہم اس پہ ایکسپوز کر دیتے ہیں, اس پہ تو لاکھیں ہونا شروع ہو گئی اب تو,
0: اور ایسی ایسی باتیں ڈسکس کر رہے ہیں, مزے آ رہے ہیں, نیچے کمنٹس پاس کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھتے جائیں کیا کیا ہو رہا ہے, اور وہ اس کو بڑا پراؤڈلی بھی فیل کرتے ہیں. اچھا میں حیران ہوتا ہوں, میرے پاس بڑے کیسز آتے ہیں سر, اور کیس کون سے آتے ہیں, کیس یہ آتے ہیں کہ میاں بیوی کی لڑائی ہے, اور جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو پتہ چلا کہ میاں بیوی کے آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے,
1: کوئی ہو
0: اور وہ دوسروں کی لڑائیوں کو اپنے گھروں میں لے آتے ہیں, دوسروں کی معنی سسرال اور میکا, ان کے پڑوسی, ان کے پھڈوں کو اپنے گھر میں لے آتے ہیں اور اپنا گھر خراب کر لیتے ہیں,
1: اپنا معاملہ ہی کوئی نہیں,
0: اپنا معاملہ ہے ہی کوئی نہیں ان کا آپس میں, کہ کسی نے کیا کہا ہے, کسی نے کیا کہا ہے. پھر وہی درخواست کہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں, یقین کریں مینٹل ہیلتھ شاندار رہے گی, اور جس کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے, ذہنی صحت ٹھیک ہے, وہی کامیاب انسان ہے.
1: بالکل ایسے, جس کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے وہی کامیاب ہے. ابھی ہم نے نیوز بریک کے جانب بڑھنا ہے اسلام آباد, تو جب ہم واپس آئیں گے تو آپ سے ہم بات کریں گے نیند کے حوالے سے, یہ کتنی امپورٹنٹ ہے بچوں کے اندر, انزائٹی کا جو معاملہ ہے آج کل, کہتے ہیں بچوں میں ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ جو آپ کے پاس جو میڈیسن کے حوالے سے کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جی آپ مینٹل ہیلتھ کے لیے جو میڈیسن استعمال کرتے ہیں وہ, سو نیوز بریک کی جانی بڑھیں گے, اس کے بعد لوٹ کے آئیں گے, ہمارے ساتھ ہیں سنتری ایف ایم 101, مجھے کہتے ہیں فرحان خان.

0: बिल्कुल,
1: उसका बाप टीचर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, वो बता नहीं सकता कि मेरे बेटे का मसला। तो सर एवरेज 7 लोग अफेक्टेड हैं, 1 करोड़ रजिस्टर्ड है, मल्टीप्लाई करें 7, एक बीमारी में 7 करोड़ लोग अफेक्ट,
0: जिस ये रजिस्टर्ड है भैया
1: जी, जो 7 करोड़ लोग वो हैं
0: जो रजिस्टर्ड
1: कि जो जो अफेक्टेड हैं इस डिजीज से। और डिजीज भी अब इतनी महंगी ट्रीटमेंट भी है, अगर कोई ट्रीटमेंट की दावत तो ये महंगी ट्रीटमेंट है इसकी, तो बर्बादी आप सोचें कि कितना बड़ा अफेक्ट है ये मुल्क के ऊपर। ये मैं एक बीमारी की, एक डिजीज की बात कर रहा हूँ, एक बीमारी की बात कर रहा हूँ, तो बाकी बीमारियाँ तो फिर पाकिस्तान
0: कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पर है ओवरऑल पाकिस्तान की ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। देखें ना ये सारे वो
1: फाइनेंशियल रिसोर्स, आप सिर्फ 2000 रुपये मल्टीप्लाई करें, 1 करोड़ लोग, 365 दिन, 2000 मल्टीप्लाई करें,
0: बिल्कुल ऐसे
1: लाइन ख़त्म हो जाएगी सर कैलकुलेटर की,
0: आप देखें ना
1: इतना बड़ा इसमें प्रॉफिट है,
0: ना वो अपने लिए फ़ायदेमंद, ना माशरे के लिए, ना अपने घर वालों के लिए, किसी के लिए नहीं है। सर करें क्या, आप मुझे बताएं आवाम को क्या करना है, लोगों को क्या करना है, अगर कोई अडिक क्या बात है,
1: बात करें, बात करें, हर लेवल पे बात करें। एडिक्ट अगर हो गया तो फिर तो ट्रीटमेंट है, दूसरे कोई तरीका नहीं।
0: ट्रीटमेंट बड़ा महंगा है डॉक्टर साहब,
1: सर कुछ भी है ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी।
0: अच्छा, बल्कि मैंने देखे हैं कुछ ट्रीटमेंट होकर लोग ठीक हुए हैं,
1: बहुत सारे मैंने बहुत सारे लोग देखे हुए, अच्छी जिंदगियां गुजारते हुए भी देखे। और उसकी बड़ी फिर वही वजह है,
0: इनिशियल स्टेज पे डॉक्टर साहब इसको पकड़ लेना चाहिए।
1: देखिए एक दफा वंस एडिक्ट ऑलवेज एडिक्ट, लेकिन ट्रीटमेंट होती है ना। अब शुगर की बीमारी हो गई है, बंदा जिंदगी तो गुजारता है ना दवा खा के, तो नशे को छोड़ना सीखना पड़ेगा। किसको?
0: घर वालों को,
1: घर वालों को, मरीज को नहीं, घर वालों को।
0: बड़ा दिल गुर्दा करना पड़ेगा,
1: घर वालों को नशे की बीमारी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो मरीज के हाथ में है, घर वालों का। जब दिल चाहता है ऑन कर देता है, जब दिल चाहता है ऑफ कर देता है। सीख ले, सीख लेंगे, बहुत शानदार इदारे मौजूद हैं पाकिस्तान में, ट्रीटमेंट मौजूद है, आप सीख लें, आप एक नस्ल को बचा लेंगे। लेकिन लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर ठीक करेगा। भाई डॉक्टर आपके बच्चे से मोहब्बत नहीं करता जितनी आप करते हैं, जरा हिम्मत करें ना,
0: और आप तो तक पढ़ लें। डॉक्टर तक तो तब पहुंचना जब बहुत ज्यादा
1: हालात काम खराब हो चुके हैं, फिर तो ट्रीटमेंट ही ट्रीटमेंट है। तो इसलिए प्रिवेंशन पे बात की जाए, फिर मैं वही कहता हूँ घर में बात की जाए। पहले अब्बा तो छोड़े ना सिगरेट, अब्बा
0: टॉक्सिक माहौल खत्म करें घर का, लड़ाई झगड़े खत्म करें घर के, घर में
1: नशा और साइकेट्री का मर्ज घर के माहौल से होता है और दोस्तों की वजह से होता है। ऐसे दोस्तों में ना बैठने दें बच्चों को, बिल्कुल ना बैठने दें।
0: और पेरेंट्स, पेरेंट्स का बहुत बड़ा इसमें रोल है,
1: जो सिगरेट पी रहा है
0: उसके अच्छा, दोस्त अच्छा, सिगरेट वालों से। एक तो क्लास है जो कि लोअर क्लास है, जो हमारे वो लोग जो बिल्कुल ही उनका तो कुछ हद तक हम कहते हैं एजुकेशन नहीं है या उनका वो माहौल नहीं है, लेकिन एक क्लास वो है जो अब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की हैं, उस सो कॉल्ड पढ़े लिखे भी हैं, उनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके बच्चे भी एडिक्शन में।
1: सर उसकी वजह ये है कि इस नशे के अंदर मज़ा इतना है कि कोई कंपेरिजन ही नहीं, इसमें मज़ा बहुत है, और ये मज़ा फिर आपको दूर ले जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी लोग हैं ना, वो ख़ानदान वाले, वो सीख लें इसको कैसे छुड़वाना है। अभी तो बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज मौजूद है इस वक्त, नेट पे चले जाएं, यूट्यूब पे देख लें, बहुत ट्रीटमेंट मौजूद है। और ये दुनिया में सबसे महंगा इलाज है, दुनिया की बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं जो ख़ास तौर पर अमेरिका में बहुत है, उनके मसले अल्कोहलिज्म है, यूरोप में बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगा इलाज।
0: तो हर स्टेज का नशा जो है उसका इलाज है पाकिस्तान में भी?
1: बिल्कुल है, हर
0: किसी भी स्टेज पे,
1: हर स्टेज, किसी स्टेज का।
0: और इसका दुरानिया कितना है, कितनी देर में बंदा?
1: डिपेंड करता है, देखिए डिपेंड करता है, एक तो बात, एक बात समझ लें कि जितनी देर नशा किया है उतनी देर नशा छोड़ने पे लगेगा,
0: वो तो सालों लग जाते हैं सर।
1: जहर खाने पे इतनी देर लगाई है तो जहर छोड़ने पे भी इतनी देर लगा दें, जहर खरीदने पे इतने पैसे लगा दिए हैं तो जहर से बचने के लिए भी इतने पैसे लगाते हैं। लेकिन जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका हम करते हैं अपने फाउंटेन हाउस में, वो कहते ये हैं कि 27 मंथ की ट्रीटमेंट है। अब 27 मंथ में जो है वो 3 महीने जो है वो इंडोर ट्रीटमेंट है,
0: ठीक है,
1: और 24 मंथ जो है वो

0: तीन महीने अंदर अस्पताल के एडमिट करके और फिर 2 साल जो है बाहर, और वह अंदर जो एडमिट होता है उसमें जिस्मानी जो तकलीफ़ें हैं उसको कंट्रोल किया जाता है, और इस दौरान उनको ये ट्रेन किया जाता है कि बाहर जाके कैसे फेस करना है अगले 2 साल तक। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि जिसने 27 महीने तक नशा नहीं किया, अच्छा नशे से मुराद ये नहीं है कि किसी ने चर्स पिए तो वो सिगरेट पी सकता है,
1: कुछ भी नहीं करना,
0: ये नशा छोड़ना पड़ेगा हर किस्म का नशा।
1: सिगरेट भी नशा,
0: सिगरेट सर सिगरेट तो गेट वे है, माँ है,
1: हर बुराई की जड़,
0: हर बुराई की जड़ है। शुरू
1: से जो पीते हैं ना बच्चे, वो हंस रहे हैं बच्चे इधर बैठे, ये छुप छुप के जो पीते हैं घर वालों से वो इब्तिदा है। मैं भी हमेशा कहता हूँ कि जी जो बच्चा आपका सिगरेट शुरू कर दे ना,
0: टेस्ट ही नहीं पता ना होता जिसको, अगर सिगरेट जिसने नहीं पी उसको टेस्ट नहीं पता ये नशे की दुनिया क्या है,
1: और वो इब्तिदा है।
0: जी हाँ, तो नशे की दुनिया से जितना दूर रहे उतना बेहतर है, ऐसे लोगों की कंपनी भी ना बैठा करें। वो जो कंपनी है ना आपको वो खराब कर देती है, वो जो तो पीयर प्रेशर है, दोस्ती है,
1: असल बुराई की जड़,
0: असल जुड़ाई है। तो वो कहते कुछ होता नहीं है,
1: हो जाता है। जो हमारी जेन ज़ी है, यंगस्टर है, देखिए उनके उनका काफी इंटरेक्शन अपने दोस्तों के लिए, जैसे कहते हैं ना कि अभी जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
0: हर दौर में ही होता है, उसकी वजह ये कि एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं।
1: अच्छा,
0: कभी भी बगैर सिगरेट पी, जैसे मेरा कोई दोस्त ही नहीं है जो सिगरेट पीता है।
1: अच्छा,
0: दोस्ती नहीं है, वो मेरे साथ कंफर्टेबल ही नहीं है।
1: अच्छा,
0: ना मैं उसके साथ,
1: मेरा भी नहीं है कोई।
0: हाँ, ना मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ।
1: मेरी तो गाड़ी में कोई बैठा हो तो मैं कहता हूँ यार तेरी मेहरबानी उतर जा,
0: बिल्कुल
1: क्या वो बड़ा भी हो ना, मैं कहता हूँ यार नहीं वो मैं पकड़ा जाऊंगा,
0: अनकंफर्टेबल फील करते हैं,
1: मेरी बेगम मारेगी मुझे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि वक्त अभी बिल्कुल इख्तिताम के ऊपर है, बुजुर्ग बड़े बूढ़े जो घरों में होते हैं, अब एज एज फैक्टर भी होता है, कम्युनिकेशन गैप भी होता है, उनके अपने दुख होते हैं, उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चे या पोते या नवासे या नवासियाँ वो उनको समझ नहीं पाते, और वो उनको नहीं समझते, ये उनको नहीं समझते, ये जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है बुज़ुर्गों के दिमाग, जिसमें बुज़ुर्ग हार्ट भी होते हैं, उनका दिल भी टूटता है, दुखी भी होते हैं, और वो ये कहते हैं कि जी हम इस दौर के लोग नहीं हैं, और जो कुछ इस दुनिया में अब हो रहा है, तो उस दुख में उस तकलीफ़ में वो एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ हमारे बुज़ुर्ग जो हैं बड़े हैं वो बहुत जा रहे हैं। सो वो कम्युनिकेशन गैप को किस तरह कवर किया जा सकता है?
0: अच्छा, एक तो अच्छी तरह से समझ लें कि दुनिया में अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और आप एक ऐसी एज में आ जाते हैं कि जिसे हम बुज़ुर्ग कहने लगते हैं, तो आप समझ लें कि दुनिया की सबसे तकलीफदेह बीमारी आपको हो गई और वो है बुढ़ापा। ये होना है अल्टीमेटली। इसमें आपको मेमोरी के भी प्रॉब्लम होंगे, आपको फिजिकल इश्यूज भी होंगे, इसमें आपको जो है ना दुनिया की और बीमारियां भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि साथ साथ आपको चिड़चिड़ापन और वो भी होगा। अच्छा, मेरी इन सारी बुज़ुर्गों से एक रिक्वेस्ट भी है कि जो सबसे ख़राब बात इसमें है इस एज के अंदर, वो है अकेलापन। अब इस अकेलेपन को तोड़ने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं ना मेरे भाई, तो यार देना शुरू करें।
1: अरे वाह, अरे वाह।
0: और ख़ास तौर पे बच्चों को ज़रूर दे दिया करें। ये एक ही चीज़ है जो अट्रैक्ट करेगी आपके पास आने के लिए।
1: बहुत अच्छी बात।
0: अदरवाइज वो नहीं आएंगे आपके पास। आप अपने दौर के अबाओं को ना सोचें, आपके अपने अब दौर के लोगों को ना सोचें कि उस ज़माने में डंडा परेड से जो ना काम चले, एक थप्पड़ लगा साल ठीक रहते थे, तो ये चक्कर नहीं चलता। आप दूसरा ये है कि जब आपका बच्चा या आपका कोई रिश्तेदार आपके बराबर हो जाए ना, तो फिर उसको मारने डांटने के बजाय उसको एज ए दोस्त के तौर पे लेके चलना चाहिए और बात करते रहना चाहिए। कोई बात आपको बुरी लगे, तकलीफ दे, तो डिस्कस कर लें, उसमें कोई आप नीचे नहीं हो जाएंगे, और उनकी बात को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दें।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: उनकी बात को भी इम्पोर्टेंस, उनको अपने फैसलों में शामिल करें ना भाई। क्यों नहीं करते फैसलों में शामिल? क्यों अपने आप को अखले कुल समझते हैं? वो भी एक ज़हीन लोग हैं। अच्छा, बच्चों से भी मैं दरख्वास्त करूंगा जो ये सुन रहे हैं
1: सर,
0: कि अपने आप को भी आप अखले कुल ना समझें। उनका जो एक्सपीरियंस है वालदैन का, उसका कोई मुकाबला ही नहीं। आप उस जब वालदैन बनेंगे जब पता चलेगा आपको। अच्छा, मैं अपने बुज़ुर्गों से भी ये कहना चाहता हूँ, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, नौकरी से घर से निकाल दूंगा, मार दूंगा, या बीवी को कह देते हैं तलाक दे दूंगा, ये ना कहा करें। ये करना कराना कुछ नहीं है आपने, लेकिन वो उसके दिल में रहता है कि अब्बा ने मुझे 5 दफ़ा कहा था घर से निकाल दूंगा, तो भाई ना कहा करें। तो ये वो वक्त गुजर गया है, अब आपको जो है ना सुनना है। और मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि सुने और बात करें, बात ज़रूर करें, ताकि मसलों का जो है ना वो कहीं ना कहीं हल ज़रूर निकलता है। और अगर पैसे हैं ना, चाहे वो थोड़े थोड़े पैसे ही हैं, तो ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को देना शुरू करें, वो अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, बड़ों को भी थोड़ा बहुत दे दिया करें। ये कहाँ लेके जाना है साथ अपने?
1: और सर बहुत सी बातें जो हैं, बात का अंदाज़ भी तो होना चाहिए ना।
0: हाँ, बात करने का सलीका भी आना चाहिए। वो जो हमेशा एक आपने फौजियों वाला रूल रखा हुआ है कि जी डंडे के नोक से काम करेंगे, तो नहीं चलेगा सर ये काम। घर में जो है ना, वो आपको घर वालों की तरह,
1: घर वालों का एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। असर लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फाउंटेन हाउस का कोई हिस्सा बनना चाहे, और जैसे पूरे पाकिस्तान को आप कवर कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली इसको कवर करने के लिए बहुत से मसाइल होते हैं, बहुत से अखराजात होते हैं, बहुत से चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सो अगर कोई डोनेट करना चाहे, कोई अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपनी चीज़ें, सो उसका क्या तरीका कार है?
0: सर तीनों चीज़ें हमें चाहिए
1: सर,
0: बल्कि मैं यहाँ तक कहता हूँ कि हमें आसमान के नीचे जो इंसान की ज़रूरत है, हमें सारी चीज़ें चाहिए।
1: ठीक,
0: सारी चीज़ें। हमें 70 करोड़ का हमारा बजट है, 70 करोड़ सालाना का हमारा बजट है,
1: 70 करोड़।
0: 70 करोड़, उसमें से 60 करोड़ हमें जमा करना होता है। 10 करोड़ वो है जो मैं थोड़ी बहुत फीसों की मद में या कोई और चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो वो हमें मिलता है, बाकी हमें 60 करोड़ लोगों से मांगना पड़ता है, ज़कात की सूरत में, सदक़े की सूरत में, चंदे की सूरत में। अच्छा, मुसलमानों में तो एक सबसे खूबसूरत बात है और पाकिस्तानियों में सबसे खूबसूरत बात है कि ये ज़कात दिल खोल के देते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि इनकी जो ज़कात है वो सही जगह पर उसका इस्तेमाल हो। तो मैं अपनी टीम की तरफ से ये गारंटी देता हूँ कि खुद आए, पहले आए देखें कि क्या हम सही पैसे खर्च कर रहे हैं, तो फिर हमें ज़कात और हमें सपोर्ट और सदका और चंदा और डोनेशन ये हमें ज़रूर दें,
1: बिल्कुल,
0: ताकि इस कॉज को हम लेके चलें।
1: बिल्कुल,
0: हमारे तो अभी स्कूल्स के बारे में हमने बात की, हम ख्वाजा सरा की जो हम ख्वाजा सरा जो 50 साल से ज़्यादा हैं, वो 2000 से ज़्यादा, उनका कैसे ख्याल करते हैं, हमने इस पर बात नहीं की। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम आपको और इस मुख्तलिफ टॉपिक्स पे ज़रूर करना चाहिए।
1: बिल्कुल, इंशाल्लाह इस पे हम आपको आपको दावत भी देंगे और इस मौजू पे बात करेंगे। ये भी एक अलग मौजू है और यकीनी तौर पे आप लोग इस कार्य खैर का हिस्सा बन सकते हैं, आप लोग फाउंटेन हाउस लाहौर का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब विज़िट कीजिए, आप सब जाइए और देखिए, आपको फिर अंदाज़ा होगा कि जो आज जो हम प्रोग्राम करें, जो बात करें, ये कितनी हकीकत में मबनी है।
0: सर सरगोधा में जो लोग रहते हैं वो सरगोधा और उसके साथ वहाँ जाएँ, जो शेखुपुरा में रहते हैं वो वहाँ जाएँ, और लाहौर में जो रहते हैं वो यहाँ आए।
1: बिल्कुल ठीक है सर, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया
0: सर, थैंक यू।
1: इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको फिर हम अधू करेंगे, आपने टाइम देना, अभी बहुत से सवाल हमारे अभी अधूरे रह गए सर। थैंक यू सो मच जी,
0: बहुत शुक्रिया
1: सर। सर मैं भी चाहूँगा इजाज़त इसी अपने पन के साथ कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने बैंकों और मालियाती इदारों पर जोर दिया है कि वो कैशलेस मईशत को फ़रोग देने में अपना किरदार अदा करें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने तुर्की के सरकारी दौरे के दौरान सियासी और अस्करी क्यादत के साथ आला सतह की मुलाकातें की हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन शबान में अब तक 85 ख्वारिज हलाक कर दिए हैं। फीफा फुटबॉल आलमी कप का पहला सेमीफाइनल आज रात डालस में स्पेन और फ्रांस के दरमियान खेला जाएगा।
1: दिस इज एफएम 101।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101।
3: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: मौसमियाती तब्दीलियों के बाद दर्जा हरारत में हालिया इजाफे से हीट वेव का खदशा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर PDMA पंजाब अलर्ट। मुमकिन मुतासरा अज़ला में हीट वेव कैंप्स का क़याम। दूर दराज इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील्स जबकि अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स और अद्वियात की फराहमी। थल चोलिस्तान और जुनूबी पंजाब में गर्मी और हब्स की शिद्दत में मुतवक्को इजाफे के पेश नजर साफ पानी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर बाउजर्स के साथ साथ टोबाजात में मवेशियों के लिए 24 घंटे पानी की यकीनी फराहमी और हब्स वाले इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अवाम भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। गर्मी में बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। धूप में निकलना जरूरी हो तो सर को ढांप कर रखें। वक्फे वक्फे से पानी और मशरूबात पिएं। ढीला ढाला और हल्के रंग का सूती लिबास पहनें। सख्त धूप में मशक्कत वाला काम न करें। बच्चों बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। हीट वेव में एहतियात महफूज हया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हुकूमत पंजाब।
0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: मौसमियाती तब्दीलियों के बाद दर्जा हरारत में हालिया इजाफे से हीट वेव का खदशा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर PDMA पंजाब अलर्ट। मुमकिन मुतासर अजला में हीट वेव कैंप्स का क्याम। दूर दराज इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील्स जबकि अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स और अद्वियात की फराहमी। थल चोलिस्तान और जुनूबी पंजाब में गर्मी और हब्स की शिद्दत में मुतवक्को इजाफे के पेश नजर साफ पानी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर बाउजर्स के साथ साथ टोबाजात में मवेशियों के लिए 24 घंटे पानी की यकीनी फराहमी और हब्स वाले इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अवाम भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। गर्मी में बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। धूप में निकलना जरूरी हो तो सर को ढांप कर रखें। वक्फे वक्फे से पानी और मशरूबात पिएं। ढीला ढाला और हल्के रंग का सूती लिबास पहनें। सख्त धूप में मशक्कत वाला काम न करें। बच्चों बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। हीट वेव में एहतियात महफूज हया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हुकूमत पंजाब।
0: सुरर संगीत
1: बच्चों बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। हीट वेव में एहतियात महफूज हया। प्रोविंशियल डिजास्टर

0: की लिसनर्स थे वो कहाँ चले गए?
1: नहीं,
0: रात में नहीं है।
1: मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा था कि मैं ही शायद रेडियो पे नहीं आ रही हूँ और बाकी सब आ रहे हैं।
0: नहीं, वो तो रात वाले रात में ही है मेरे ख्याल से।
1: रात वाले रात के ही ऐसा ही है, ऐसा हो सकता है।
0: ठीक है,
1: लेकिन बस जहाँ भी हो
0: आप आ रहे हैं
1: और रेडियो के साथ साथ ही क्योंकि अच्छा लगता है रेडियो सुनने भी और रेडियो के साथ भी बच्चे गाना बड़ा खूबसूरत बड़ा अच्छा लगता है मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, थैंक यू सो मच विशाल, आप लेट आए हैं और वाइड अब आबाद रहें, खुश रहें। 10 मिनट बाकी जी आपका और मेरे साथ, उसके बाद मैं चलूंगा अपनी मंजिल की जानिब और आप चलेंगे अपनी मंजिल की जानिब, और यही जिंदगी है, इसी तरह गुजर जाएगी, सबने अपनी अपनी मंजिल पकड़ के सीधे निकल जाना है। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान FM 101।
2: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शानदी?
0: मैं ठीक ठाक, कौन कहाँ से?
2: मैं एना खान बात कर रही हूँ,
0: इस्लामाबाद से। एना खान,
2: भाई।
0: अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है, और बताइए कैसी गुजरी जिंदगी?
2: आए भाई, बस मेरी शादी को भी दो मतलब कुछ टाइम हुआ है, तो मेरी जिंदगी में ना बहुत दुख आ गया, मेरे हस्बैंड आज में चले गए, और मैं आज मैंने आपको सुना और मैंने कहा आज मैं अपने भाई से ना अपनी
0: बातें
2: करूंगी और इन्हें बताऊंगी कि मेरे दुआ करे कि उन्होंने ना पुलिस में टेस्ट दिया, अल्लाह करे कि उनका काम पुलिस में हो जाए और आर्मी छोड़ के ना आ जाए, कि फिर वो इधर हमारे साथ रहे हमारे पास,
0: अभी
2: वो हैदराबाद में और हम लोग इधर हैं।
0: चलें
2: ना, यकीन करें शान भाई,

0: एक दो भाई से कहें कि प्लीज अब जो जितने भी सुनने वाले ना बस ये कहें और मेरे हस्बैंड का काम पुलिस में हो जाए, आर्मी छोड़ दे और बस फिर जो है ना शान भाई मैं कहती हूँ इतना खूबसूरत रिश्ता होता है ये ना, बस मैं अल्लाह जी से कहती हूँ अल्लाह जी आप मेरे दोस्त हैं लेकिन आपने ऐसी सजा क्यों मुझे दे रहे हैं, मैं इतना रोती हूँ मैं याद करती हूँ
1: माशाल्लाह ये कौन किस
0: रोना शुरू कर देती।
1: सही बात है, किस तरह के कपल आ रहे हैं इतने मोहब्बत करने वाले, ये तो चले माशाल्लाह बहुत जबरदस्त।
0: शान भाई बस मैं कहती हूँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं उन्हें कहती हूँ आप मुझे कोई मुझे ना किसी चीज दिखा जाए, पैसा गाड़ियाँ कपड़े या मतलब होता है लड़कियों का जेवर हर चीज, मुझे अपनी शादी मुझे किसी भी चीज की फिक्र नहीं,
1: मुझे सिर्फ आप चाहिए
0: मेरे साथ रहेंगे मुझे दुनिया की हर चीज
1: माशाल्लाह
0: मैं वो कभी तंग नहीं करूँगा।
1: बेहतरीन हो गया जी, अल्लाह आपकी मुरादें पूरी करे, अल्लाह आपके लिए आसानी करे, आप लोग को मिलाए, आप लोग साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, इंजॉय करें जिंदगी। आमीन
0: आमीन आमीन आमीन। आप तो
1: बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है जी, जरूर जरूर जरूर, आबाद रहें खुश रहें कह देते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, इस तरह के भी कपल हैं, सिर्फ वो वाले नहीं है, तुम मेरे लिए ही नहीं लाए क्यों नहीं लाए, ये माशाल्लाह देखें आप एक एग्जांपल है, बड़ा अच्छा लगा जी, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, खुश रहें आबाद रहें जी, अगर इसमें जरा सी भी हकीकत है तो अल्लाह आपको खुश रखे आबाद रखे और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और अगर वो चाहती हैं कि जी आर्मी छोड़ के पुलिस में हो जाए तो बस उन्होंने अगर ट्राई की हुई है तो हो ही जाएगा और अच्छी चीज़ है। एनीवे जी साथ साथ म्यूज़िक चलेगा और इसी कपल के लिए ये खूबसूरत सा सॉन्ग। मैं तेरा वक्त हूँ गुजार मुझे,

0: फलक की आवाज जी। चाहत, चाहत मेरी सॉन्ग का जो टाइटल है चाहत मेरी। अबरार अहमद कहते हैं, तुमसे मिलते हैं तो दुनिया से भी मिल लेते हैं, तुम जाते हो तो तरतीब उलट जाती है, धुंध जैसे कहीं छट जाती है,
1: तेरे बिना भी क्या है?
0: नर्म पवरों से कोई हौले से दिल की दीवार गिरा देता है,
1: तेरी बंदगी है।
0: एक खिड़की कहीं खुल जाती है, आंख एक जलवाए सद रंग से भर जाती है, कोई आवाज बुलाती है हमें, तुम जो आते हो तो इस हब्स दखन के घर से, रंज आइंदा और रफ्ता की थकावट से निकल लेते हैं, तुमसे मिलते हैं तो दुनिया से भी मिल लेते हैं।

आज जनाब अब्रश की बर्थडे है। मेरी भांजी हैं, अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह इनकी नसीब अच्छे करे, अल्लाह इनको सेहतियाब व तंदरुस्त तवाना रखे, सलामती वाली ज़िंदगी गुजारें, आमीन, कामयाब ज़िंदगी गुजारें, आमीन। हैप्पी बर्थडे अब्रश, खुश रहिए, आबाद रहिए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए।

0: You are listening FM 101. Tune into the one above.
1: आप सुन रहे हैं FM 101. सुनते रहिए FM 101.
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.
0: You are listening FM 101. Tune into the one above.
1: आप सुन रहे हैं FM 101. सुनते रहिए FM 101. 101. 101.

0: 100 सलीबें थी हर एक हरफे जुनू से पहले, क्या कहूं अब मैं, कहूं या ना कहूं से पहले। वलजना मुझे कहते हैं ज़ियान जुमर, आप सुन रहे हैं FM 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज। प्रोग्राम है हरफे जुनू। दो बजे तक आपका और हमारा साथ रहता है, इस साथ में हम करते हैं आपके साथ बहुत सारी बातें, लेकिन आज का दिन ज़रा स्पेशल है, आज कुछ ख़ास बात है। ख़ास बात कुछ यूं है कि मैं वो इंसान हूँ जो कहीं ना कहीं अपने पास्ट से, अपने माजी से और अपने माजी के उन अय्यार सज्जनों से बड़ा जुड़ा हुआ हूँ, जो कहीं ना कहीं हमेशा बड़े दिल के करीब रहे हैं, जिनके साथ वक्त गुजारा है, जिनके साथ एक बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। आज मेरे साथ एक बड़ी स्पेशल पर्सनैलिटी है। ये वो पर्सनैलिटी हैं कि जब मैंने अपने अवाइल में रेडियो स्टार्ट किया, जब बिल्कुल शुरुआती दौर था, जब मैं कुछ भी नहीं था, मुझे सही से बोलना भी नहीं आता था, लेकिन एक पैशन था, एक जुनून था कि रेडियो करना है, रेडियो पे बात करनी है। और अभी मैं 101 का हिस्सा भी नहीं था, एक प्राइवेट वेब रेडियो हुआ करता था, वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। तो उस दौर में उस वेब रेडियो पे कुछ और दोस्त भी हुआ करते थे, उन्होंने भी तभी स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैं 101 पे आया, मैं 101 लाहौर पे आया और उन्होंने 101 कराची ज्वाइन की। तकरीबन 15 साल का ये सफ़र है। मैं बात कर रहा हूँ RJ अब्दुल हसीब मंसूरी साहब की, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हसीब भाई, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम। ज़िया भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
0: अल्लाह का शुक्र है।
1: और आपके तमाम सुनने वालों को भी, ख़ास तौर पे लाहौर के सुनने वालों को बहुत ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: उम्मीद है कि आप भी खैरियत से हैं और सारे सुनने वाले भी खैरियत से हैं। और इस वक्त इंटरनेशनल जा रहा होगा, तो जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है उन तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। और जो कि कराची के लिसनर्स हैं, कराची के तकरीबन तमाम लिसनर्स आपको यकीनन जानते होंगे पहले से।
1: बिल्कुल जानते हैं, और इत्तफाक ये कि तलाश कर रहे हैं, मैं उनको कराची में नहीं मिला, लाहौर में मिल गया।
0: अजीब भाई, आज आपसे मुलाकात हुई। और लिसनर्स, मैं आपको बताते चलूँ, हमारा ये साथ बड़ा पुराना है, तकरीबन 15 साल का है, लेकिन आज हमारी पहली मुलाकात,
1: पहली हम मुशाफा मुलाकात,
0: रूबरू 1-to-1 हम पहली बार मिल रहे हैं।
1: और बड़ा अच्छा टाइम था। ज़िया भाई ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन ज़िया भाई जो है ना, वो वाली शख्सियत थे जो लोगों की इसलाह भी करते थे उस ज़माने से।
0: अच्छा।
1: हाँ हाँ, मुझे याद है, कभी कोई अशार अगर गलत पढ़ दे तो कहते थे आपके चचा ने थोड़ी लिखा है ये शेर, जो आप इसको अपनी मर्जी से तब्दील कर देंगे। तो बड़ा अच्छा टाइम था ज़िया भाई, आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: बहुत अच्छी यादें गुजरी हैं, बहुत अच्छे मामलात गुजरे हैं और मेमोरीज बहुत सारी हैं। अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि लोग जुड़ते हैं साथ वक्त पे। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ जो है ना लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उसमें से एक आप हैं और चंद लोग और हैं, वरना तो बहुत सारे माजी का हिस्सा हो गए।
0: बिल्कुल ठीक
1: जो
0: है।
1: रहे ही नहीं साथ, जो ना रबते में भी रहे।
0: बिल्कुल सही है।
1: तो आप बताइए, जिंदगानी में क्या हाल हवाल, खैरियत, तबीयत वगैरह सब ठीक है?
0: सब कुछ ठीक है। ज़िंदगी में एक चीज़ कहीं ना कहीं कांस्टेंट रही और वो थी रेडियो।
1: रेडियो।
0: और उसी रेडियो के हवाले से आपके साथ भी फिर राबता रहा।
1: बिल्कुल ऐसा ही है।
0: और आज भी कहीं ना कहीं, और अभी आपकी और हमारी मुलाकात दोबारा से, वो भी शायद वो जो आजकल हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं उसके। हाँ, आपने क्लिप देखा।
1: बिल्कुल।
0: फिर आपने रापता किया।
1: बिल्कुल। उसमें मैंने एक अपना इजहार ख्याल किया,
0: शोशा छोड़ा।
1: शोशा छोड़ा। तो हालात जो है ना, वो सारे एक जगह एक जैसे ही हैं। तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा सिलसिला है। और रेडियो की दुनिया वो दुनिया है जो आपने सुना भी है कि वंस अ रेडियो पर्सन ऑलवेज अ रेडियो पर्सन।
0: एग्जैक्टली।
1: तो वो छोड़ता नहीं है इंसान ना। تو چل رہی ہیں. لیکن آپ اتفاق دیکھیں, کراچی والے مجھے نہیں سن پا رہے, لیکن میں آج اٹھ کے کراچی سے ایف ایم 101 لاہور پر موجود ہوں.
0: لیکن آپ کو کراچی میں بھی سنا جا رہا ہے؟
1: کراچی میں بھی بالکل سنا جا رہا ہے, اسلام آباد میں بھی سنا جا رہا ہے. اسلام آباد میں بھی ایک دفعہ اسی طرح اتفاق ہوا.
0: اچھا.
1: ایک ہماری دوست ہیں, ان کے ساتھ شو کرنے کا, تو اچھی یادیں ہیں 101 کے ساتھ اور جڑی رہیں گی انشاءاللہ, ایک فیملی ہے.
0: اچھا سی بھائی, ایک بات بتائیے, میں نے دیکھا کیونکہ ہمارا یہ جرنی ہے ریڈیو کے ساتھ, اور میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ لوگ آتے ہیں ریڈیو پہ, شوقیہ آتے ہیں. ہم لوگ بھی جب ہم نے سٹارٹ کیا, ہمیں بھی ایک شوق تھا,
1: بولنے کا شوق تھا,
0: میڈیا پہ آنے کا شوق تھا, کسی طریقے سے سراہے جانے کا شوق تھا, اور ریڈیو ایک ایسا میڈیم نظر آیا کہ یہاں پہ ہم اپنے اس شوق کو پورا کر سکیں. اسٹوڈنٹ لائف تھی اور اتنی زیادہ ذمہ داریاں نہیں تھیں, اتنے زیادہ کام نہیں تھے, بے فکری تھوڑی زیادہ تھی, اس وجہ سے ہم اس پروفیشن کو یا پیشن کو وقت بھی دے سکے. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ ہماری طرح اور بہت سارے لوگ جو اسٹوڈنٹ لائف میں شوقیہ آئے, جوں جوں ذمہ داریاں بڑھیں, جابس کیں یا انہوں نے کاروبار کیے یا زندگی میں مصروف ہوئے, تو ان کا ریڈیو چھوٹ گیا. آپ کیسے ابھی تک قائم ہیں؟
1: اچھا, وہ ایک میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں ہمیشہ بات, یہ جو مجھے کہتا ہے نا, یار کیا کر رہا ہے بھائی, تو میں کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے اندر بلٹ ان ہوتی ہیں.
0: صحیح ہے.
1: یعنی بولنے کی بیماری, بولنے کا شوق, وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو وہ آپ کو کہیں پہ بھی پلیٹ فارم ملے گا تو آپ وہاں پہ مائک بھی لے لیں گے بات کرنے کے لیے. اسٹوڈیو ہے, ریڈیو ہے, یا آپ کہیں کسی تقریب میں بیٹھے اور کہیں موقع ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے. اب میں کل کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں, کل رات کی میں ایک جگہ ایک لیکچر اٹینڈ کر رہا تھا, تو ان کا کالڈیس مائک جو ہے نا, اس میں سے وائس صحیح نہیں آ رہی تھی. وہ پہلے اپنی کوشش کرتے رہے, اس کوشش کے بعد اس, اب صحیح آ رہی ہے آواز, کیا بات ہے. تو اس کوشش کے بعد جب ان سے نہیں ہو سکی تو میں نے کہا میں آپ کا جو ہے نا یہ ساؤنڈ سسٹم میں صحیح کر کے دیتا ہوں.
0: ٹھیک ہے, جیسے ابھی میں نے آپ کا,
1: جیسے آپ نے ابھی کرا. تو میں اٹھا, میں نے تھوڑا سا بیس کم کیا, تھوڑا ٹیریبل بڑھایا. تو میں نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ جانتے ہیں کیا, میں نے کہا یار بس کرتے ہیں, یہ
0: اپنا تو دھندا
1: ہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں ضیا بھائی, اور اب آواز اتنی مزے کی آ رہی ہے کہ اب محسوسمنٹ جو ہے نا اچھی ہو رہی ہے. تو یہ اچھا اس لیے نہیں چھوڑا کیونکہ میں نے ایک چیز اپنی زندگی میں سیکھی کہ ریڈیو نے بہت کچھ دیا. بولنا سکھایا, کانفیڈنس دیا, بات کرنے کا سلیقہ سکھایا, الفاظ کی ادائیگی سکھائی. لوگ جو کال کرتے ہیں وہ بات کرتے کرتے اپنے ٹریک سے جو آؤٹ ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کر کے واپس پکڑ کے ٹانگ کھینچ کے لانا اپنی جگہ پر, یہ سکھایا.
0: آرٹ ہے
1: یہ, آرٹ ہے نا. اچھا وہ پھر ہمیں ساری زندگی دوسری جگہوں پہ بھی فائدہ ہوا اس چیز کا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میں نے ایک دن اپنے شو میں ٹاپک رکھا کہ اگر آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ایک پاکستان ٹور پر جا رہے ہیں, یہ آج ہمارا شو ہے, ہم سارے مل کے پاکستان ٹور پر جا رہے ہیں, تو آپ بتائیے کہ آپ میرے ساتھ جو ہے نا کس ٹور پہ جانا شروع چاہتے ہیں. تو وہ ایک صاحب نے کال کی اور کہہ رہے ہیں کہ میں کشمیر جانا چاہتا ہوں, کشمیر اتنا زبردست ہے, یوں ہے اور یوں ہے. ایک دم سے ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ پولیٹکس میں آئے.
0: اچھا,
1: اور پولیٹکس میں بھی اس جگہ پہ آئے جہاں جانا مناسب نہیں تھا,
0: جو شجر ممنوعہ تھا.
1: تو میں اب کیا کرتا, میں نے کہا کہ یہ آپ نے جو بات کہی ہے نا بہت زبردست کہی ہے, لیکن ہم اس کی بات جو ہے آج نہیں کر رہے, ہم کریں گے کسی اور دن. کہہ رہے نہیں یہ بھی آپ کو, میں نے کہا نہیں سننا ہی نہیں ہے, میں نے, میں اپنے سنانے کے لیے آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, میں سننے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں ادھر آپ لوگ. اچھا اسی طرح کوئی مجھے کہتا نا یہ والا ٹریک پلے کر دیں, میں کہتا ہوں یوٹیوب کھولنے سن لے خود یار,
0: بالکل
1: میں تو اپنی سناؤں گا.
0: اچھا,
1: تو یہ بہت ساری چیزیں جو بے باقی جو آئی نا وہ ریڈیو کی وجہ سے آئی ہے. صرف یہاں پہ نہیں, کلاس میں بیٹھے ہیں یونیورسٹی کے ٹائم پہ کوئی لکما دے دیا تو ریڈیو کا کمال ہے صرف.
0: صحیح ہے. اچھا یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویسے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یار ریڈیو اب کون سنتا ہوگا, ریڈیو کا دور نہیں ہے, یا ریڈیو پہ جا کے آپ کیا ہی کر لیتے ہوگے. پرسنلی ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سن کے ہم نے بڑا کچھ سیکھا. آپ کو بھی کہتے ہیں, تقریباً تمام جتنے بھی ڈی جیز آر جیز یہاں پہ آتے ہیں, بولتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو آبویسلی ان کی ایک آڈینس ہوتی ہے, ان کو لوگ سنتے ہیں, اور جہاں بھی کوئی سنتا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوگ انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. और लोगों को शायद यही लगता है कि हम यहाँ पे आके बोलते हैं और हम यहाँ पे आके लोगों को बताने की, सिखाने की, समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, हम खुद भी बहुत कुछ सीख रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और शायद हम किसी और को सिखाने में या बताने में कुछ कामयाब हो ना हो, हमारे अपने बहुत सारे स्किल्स होते हैं जो कि पॉलिश हो रहे होते हैं, और उनकी वजह से, जैसे भी आपने भी अर्ज किया कि वो हम यहाँ के फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ना स्किल्स सीख के हम दूसरी जगहों पर अप्लाई करते हैं। तो आजकल के दौर में मैं ये समझता हूँ कि कम्युनिकेशन एक ऐसा स्किल है जो कि मदर ऑफ ऑल स्किल्स है, कि आपको अगर अच्छी कम्युनिकेशन आती है तो आप अपने बाकी सारे स्किल्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। रेडियो आपको वो सिखाता है।
1: अच्छा, आपने बात कैसे करनी है, आपकी एग्जांपल भी है ना। आप अगर आज कोई सा भी प्राइवेट चैनल देख लें, कोई सा भी न्यूज चैनल देख लें, आपको जो भी इंसान आपको टीवी पे या किसी मीडियम पे नजर आएगा, उसकी इब्तिदा रेडियो पाकिस्तान से ही हुई है।
0: जी हाँ।
1: अच्छा, वो अगर बच्चा था तो बच्चों का एक कोई प्रोग्राम आता है, क्या नाम है उसका?
0: हाँ, बच्चों के प्रोग्राम हुआ,
1: बच्चों का एक एग्जैक्टली कोई नाम है उसका, मुझे याद नहीं है। तो वो इतवार या सैटरडे को कोई होता है प्रोग्राम, तो वो या तो उससे उसकी इब्तिदा है या उसने अपनी खबरों से इब्तिदा की है उसकी। तो ये मुनव्वर जहीर जफीर, क्या नाम है, मुनव्वर जरीफ साहब एक दिन आए थे, वो FM 101 की सालगिरह थी शायद कराची की।
0: अच्छा।
1: तो उस पे वो अपने पुराने किस्से बताने लगे कि जब मैं खबरें पढ़ता था तो मैं क्या क्या गलतियां कर जाता था, और जो हमारे प्रोड्यूसर या जो लोग होते थे वो हमें बाकायदा जलील किया करते थे। तो वो मतलब जो एक दर्स मिला है ना, वो रेडियो से बहुत सारे लोगों को मिला है।
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
1: अच्छा जिया भाई, मुझे आज एक चीज महसूस हो रही है, और हमने आपका जो है वो पूरा जो एक थीम होगा ना उसको तब्दील कर दिया। आप करते होंगे शायरी वाला प्रोग्राम, टूटे हुए दिलों को और तारों से जोड़ने की कोशिश करते होंगे, कोई तकिए के अगर मुंह दे के रोना चाह रहा होगा तो उसको आप और रुलाते होंगे।
0: रुलाते हैं ऐसा वैसा रुलाते,
1: तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज हमने कहा कि पता नहीं आपने भी सोचा कि यार आज क्या क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो बहुत शुक्रिया भाई।
0: नहीं, हमारे इस किस्म के प्रोग्राम्स होते रहते हैं जिसके अंदर हम चिट चैट करते हैं, हम गुफ्तगू करते हैं, और शायरी होती है मेरे प्रोग्राम्स में। अब थोड़ी शायरी कम होती है,
1: ठीक है,
0: गुफ्तगू मौजूआत और उनके ऊपर बात थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो हम अभी भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल कर
0: अभी रहे। तो हम एक दूसरे से कुछ हाल अहवाल कर रहे हैं ना, वो बड़े पुराने से एक दूसरे के साथ। तो अभी हम कुछ देर में, अगर आपके पास वक्त है तो
1: सर, कोशिश करेंगे थोड़ी देर और जाग लेंगे आपके लिए मसले
0: क्योंकि मुझे पता है अभी आपने मुझे बताया था कि आप 36 घंटे से जाग रहे हैं।
1: तो सर 36 से 3 घंटे और ऊपर कर ले,
0: 40 होने वाले। कैसे कर लेते यार, इतनी मेहनत कैसे कर
1: ये भी रेडियो का कमाल है।
0: वाह वाह,
1: पहले सुनते हुए जागते थे, अब बोलते हुए जाग रहे।
0: ओए क्या बात है। एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, और फिर हम अपनी बातों के सिलसिलों को यहीं से स्टार्ट करते हैं, आपके कुछ मैसेजेस को और कॉल्स को भी शामिल करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आजे अब्दुल हसीब मंसूरी साहब, जो कि कराची के बड़े मशहूर, मारूफ और ज़बरदस्त मंझे हुए आरजे हैं, 101 के ही आरजे हैं, मेरे बड़े पुराने दोस्त, और वो वाले दोस्त, वो वाले यार, वो वाले सज्जन जिन्होंने इकट्ठे रेडियो
1: वो भी, और जिनका कभी किसी से मफाद नहीं रहा किसी किस्म।
0: एग्जैक्टली,
1: बिल्कुल। तो आज की दुनिया में जो दोस्ती आ रही है वो तो मफाद की दोस्ती है ना।
0: बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। एक गाने की तरफ बढ़ेंगे, वापस आके आपसे मजीद बातचीत करते हैं। सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे ज़ियान जुम कहते हैं और मेरे साथ हैं अब्दुल हसीब मंसूरी साहब।

आप सुन रहे हैं FM 101। सुनते रहिए FM 101। 101। 101।

0: जी वेलकम बैक, 12:26 हुए हैं और आपका हमारा साथ 12-2 बजे तक रहने वाला है। प्रोग्राम है हरफे जुनू, मेरा नाम जिया अंजुम है और मेरे साथ हैं जी
1: अब्दुल हसीब मंसूरी।
0: क्या बात है। अच्छा, मुझे ना आपका नाम, मुझे अमूमी तौर पे ना नाम याद नहीं रहते,
1: क्या
0: लेकिन आपका नाम जो है ना वो बड़ा मजेदार किस्म का नाम है। हाँ। यूनिक सा नाम है,
1: यूनिक सा नाम
0: और थोड़ा मेरे हम पंजाब के अच्छा, लोगों अच्छा, के लिए ना थोड़ा सा मंसूरी जो खासतौर पे ये है ना, यहाँ पे मंसूरी नहीं चलता ये नाम ना, शायद वहाँ पे हो ये मंसूरी। क्या है, कास्ट है?
1: कास्ट ही है, इट्स फ्रॉम इंडिया।
0: ओके,
1: तो जो पीछे से चला हुआ आ रहा है बेसिकली आई एम गुजराती।
0: ओके, इंडियन गुजरात।
1: इंडियन गुजरात।
0: ओके,
1: तो वहाँ से जो हमारा एक जनरेशन है तो वहाँ से ही मंसूरी चला है, तो बस चले ही जा रहा है वो।
0: अच्छा
1: अच्छा, अभी जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारी चीजें कराची की यहाँ पर नहीं पाई जाती।
0: हाँ।
1: तो अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में जो चेकिंग के लिए होता है उन्होंने रोका, मैंने शीशा उतारा तो वो कहते हैं आप कहाँ से आए, तो आप यहाँ के तो नहीं है।
0: अच्छा।
1: मैंने कहा मैं यहाँ का नहीं हूँ। अच्छा। आए क्यों है, मैंने कहा काम से आया। तो रिहाइश है आपकी? मैंने कहा नहीं, मैं आया हुआ, चले जी कोई चाय शाय पियेंगे, खाना शाना खाएंगे। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं करें। तो वो जो लहजा तलफ्फुज़ है ना,
0: हाँ।
1: वो पहचान लिया जाता है।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: अभी मैं आज शाम में एक दोस्त से बात कर रहा था तो उसको मैंने किसी बात में कहा कि यार वो जो है ना बहुत फंटर है, ये कराची का फंटर यानी बहुत शोख,
0: ठीक है,
1: मजाहिया।
0: हाँ।
1: तो कहने यार ये फंटर क्या होता है?
0: अच्छा,
1: ये कराची में यूज होता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं तो आम लाहौर में या इस्लामाबाद में नहीं बोली जाती।
0: हाँ, जैसे कराची की ना एक टर्म यूज होती है, तफरी।
1: तफरी,
0: ठीक है। हमारे यहाँ पे कहते हैं शुगल।
1: शुगल
0: हमारे यहाँ पे कहते हैं। हाँ। हमने बड़ा शुगल लगा,
1: शुगल लगा,
0: वो आप लोग कहते हैं
1: तफरी।
0: तो वो ये कुछ इस किस्म के भी छोटे छोटे वो स्लैंग्स होते हैं, उससे अक्सर अंदाजा हो जाता है। तो ऐसे ही है, ठीक है। कॉल्स लें हम कुछ,
1: बिल्कुल,
0: और देखते हैं कि आज कराची से कितनी कॉल्स आती हैं। मुझे वैसे मुमी तौर पर कराची से आती हैं, लेकिन
1: किस की आती है कॉल्स?
0: मुझे अभी लिस्टनर्स के नाम तो उस तरह से याद नहीं, लेकिन आती हैं।
1: चलो अच्छा,
0: आज देखते हैं
1: कौन कराची वाले जा रहे हैं,
0: कराची वाले कौन कौन है
1: और कौन जा रहे हैं।
0: आप 042-111-0101 पे हमें कॉल्स कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त हसीब साहब हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
1: अस्सलाम साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं?
0: आगे कॉल कराची से, पहली कॉल ही कराची से आगे।
2: कराची वाले कितने बेचैन थे।
1: कैसी हैं आप?
2: मैं हसीब बहुत खराब हूँ।
1: क्यों, क्या हो गया?
2: इतना इंतजार।
1: कहाँ इंतजार, देखें जो इंतजार में मजा है ना वो किसी और चीज में मजा है ही नहीं।
2: नहीं जी, बहुत अजियतनाक मरला है इंतजार।
1: देखें मसला ये है कि मतलब हम मौजूद तो है ना, चीजें नजर तो आती रहती हैं आपको हमारी।
2: हाँ हाँ, पता तो चलता रहता है। जिया भाई नाराज नौजिया, कैसे हैं आप?
0: नहीं नहीं, ये हमारा शो है और हमारे शो में हम नाराज नहीं होते।
2: जिया मेरी तो हैरान हो रही हूँ मैं, मेरी तो कॉल मिल गई नहीं थी, पहली कॉल मेरी मिल गई।
1: तो ये मैं अक्सर हाँ? कराची के शो में नहीं कहा जाता कि अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही तो आप 3 दफा ईदू कबूल बोले।
0: ये क्या है?
1: एक हमारे कॉलर है।
0: अच्छा,
1: वो अलग डिजाइन का है।
0: अच्छा, ऐसे ऐसे डिजाइन हर जगह पाए जाते हैं।
1: बिल्कुल अलग डिजाइन का हमारा एक कॉलर है और बस।
2: अब मैं इसके 12 का जो शो सुनती थी ना, अब मैं वहाँ नहीं सुनती, अब मैं यहाँ सुनती हूँ। यहाँ भी बहुत प्यारे प्यारे आरजे हैं तुम्हारी तरह।
1: नहीं नहीं, ये जिया भाई से तुम्हारा बहुत पुराना ताल्लुक है।
2: हाँ, मैं बड़ी हैरत है, मुझे 15 साल पुराना ताल्लुक।
1: अरे अभी तो आपको बहुत सारे ताल्लुकात अपने बताए नहीं हमने।
0: हाँ।
2: अरे वाह भाई वाह, तो छुपा के क्यों रखे हुए?
1: ऐसा ऐसा खोलते ना पत्ते, हर एक साल थोड़ी खोल दिए जाते हैं।
2: ये बात तो है। हाँ। लेकिन बहरहाल हमारे बहुत प्यारे प्यारे आरजीज हैं जिनको सुनने के लिए वाकई रहता है लगन। लेकिन इन लोगों के शो में मेरी कॉल नहीं मिलती भाई। आज तो मैं 3 लकी थी, मेरी पहली कॉल।
0: आज आप लकी हैं, आज आपकी पहली कॉल।
1: मैं आपको सच सच बताऊं, आपको सच बात बताऊं या झूठ बताऊं?
2: नहीं नहीं बताएं।
1: मैंने अभी जिया भाई को कहा ये परवीन आसिफ का नंबर नजर आ रहा है, आप कॉल पिक कर लें।
0: क्यों मरवा रहे हैं हसीब भाई? यहाँ पे लोग पहले ही हमारे पीछे गिरेबानों को आए होते हैं कि आप हमारी कॉल उठाते
1: हैं। लोग ये समझते हैं कि नंबर नजर आते हैं, जानबूझ के नहीं उठाते।
0: हाँ, यहाँ पे लोग ये समझते हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं, इस्लामाबाद में नंबर नजर आता है।
2: अच्छा।
0: हाँ, इस्लामाबाद में नजर आता है, लाहौर में नहीं नजर आता।
1: सर इस्लामाबाद में भी दीवार के उस पार नजर आता है?
0: नहीं नहीं, इस पार नजर आता है हमें, वहाँ के एक।
1: अच्छा,
0: बंदे ने बताया कि ये हमारे पास
1: नहीं, सर, जब वो भूख हड़ताल चल रही होती है, सन्नाटा होता है, उस वक्त वो फिर स्विच हो जाता है, यानी वो फिर आपका जो सिस्टम है वो आपके स्टूडियो में आ जाता है, वरना पहले वहीं दीवार के उस पार जाता
0: है। नहीं ना, मैं आपको बता रहा हूँ उनके सीएलआई के ऊपर आ रहा होता है।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: तो देख ले अब ये
2: देखिए, हमें तो आज तक पता ही नहीं थी।
1: नहीं, नहीं ये हमारे कराची और लाहौर में ये फैसिलिटीज मयसर नहीं है, मुहैया नहीं है।
2: नहीं वैसे अच्छी बात है, नहीं है ना हसी, वरना फिर वो और भी ब्लेम लगते कि जी अपने अपने नंबर देखते और पिक करते
1: हैं। ब्लेम लगता रहा लगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, आपको पता नहीं हम तो बागी लोग हैं।
2: अच्छा वो जरा शेर तो सुनाए, वो किस बारिश में किसी और छत पे बरस गई जो हमेशा गलत पड़ते थे।
1: मैं हमेशा कहता था वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और की छत पे बरस गई। तो ये कॉल करके एक दफा कॉल पे बात हो जाती थी, फिर अगली दफा फिर कॉल करती थी, ये की कहाँ से आ गया बीच में।
0: अच्छा,
1: यानी है कि वो तो तेरे तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, यानी की का एडिशन किया। इसी तरह आपने एक और चीज दिया भाई, आपने टोकी थी मेरी, मैं भी याद दिलाऊंगा
0: कि था शेर मेरे हाथ से, फराज साहब का था,
1: अहमद फराज साहब का शेर था।
2: अक्सर लोग ना गलत पड़ जाते हैं, मुझे
1: याद आ रहा है आपने कहा था कि भाई चच्चा का शेर थोड़ी है ये।
2: जिया का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होता है सीम, बहुत खूबसूरत बोलते हैं जिया भी, रहमान भी,
1: और जिया भाई मेरे उस्ताद भी हैं।
0: अरे सर,
1: हां उस्ताद हैं, बहुत सारी चीजें सिखाई हैं इन्होंने, कुछ चीजें वो सिखाई है जो यहाँ पे कही नहीं जा सकती।
0: वो हम आपको बता भी नहीं सकते, यहाँ पे
1: बता भी नहीं सकते,
2: नहीं हम पूछेंगे भी नहीं।
0: हाँ बस आप समझ जाएं,
1: समझ जाएं, आप समझ जाएं,
2: बिल्कुल समझ गए, हम समझ गए। तो ये तो भाई छाए रहते हैं माशाल्लाह, दिखते रहते हैं जिया भी फेसबुक पे, और हमारे डॉग्स भी, और रहमान भी, रहमान जरा कम कम दिखते हैं, आते भी कम कम है इनके प्रोग्राम में, तो ऐसी कॉलर्स की लाइन लगी होती है, नहीं मिलती भैया। आज मैं बड़ी हैरान हूँ, आज मैं सुबह जरा अपना सबका दूंगी, मुझे नजर ना लगे।
1: सदका भी ना, दो रकात नफिल भी पढ़े शुक्राने के
0: साथ, लगे हाथ में हम दोनों का भी निकाल दीजिएगा सदका।
2: बिल्कुल बिल्कुल, लाहौर के भी हमारे अजीज बहुत प्यारे हैं, आपकी तो मैं क्या खैर क्या तारीफ करूँ, आप तो हैं ही सो हैं। इंतजार रहेगा कि कराची से भी आप कब बोलते हैं
1: इंशाल्लाह।
2: बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और जिया ने बुलाया है तो भाई जिया को बड़ा क्रेडिट जाता है, जिया थैंक यू वेरी मच।
0: हाँ आज हम वैसे वैसे ही मिलने वाले थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं हसीब भाई को ना ऑनर लेके आते हैं,
1: मुझे पकड़ कर इधर ले आए हो।
2: अब देखें कराची से कितनी कॉल आती है, कौन
1: और देखें कराची में गर्मियों में आ जाए तो इधर शाम में बारिश भी हुई है,
2: हल्की
0: लाहौर में बड़ा
1: लाहौर में बारिश हुई है, दिन में गर्मी भी थी,
0: लेकिन वो वाली गर्मी नहीं, अभी आपने देखी नहीं लाहौर की,
1: महसूस किया
2: मैंने। कराची में भी हसीब बहुत गर्मी पड़ी, पता नहीं उस वक्त आप लौटे थे या नहीं, लेकिन जो जो कामयाबियां समेट कर आए उसके लिए बहुत मुबारकबाद,
1: बहुत शुक्रिया,
2: रहो खुश, रहो आबाद, रहो, सबको मेरा सलाम और बहुत सारी दुआएं, अल्लाह हाफिज।
0: थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है हसीब भाई,
1: बस ये कुछ
0: कैसे कर लेते हैं यार, आप
1: कोशिश करते हैं, हम तो बाकी हो खुद में खुद जाता है।
0: नहीं यार कोई सीन है आपके,
1: सर आपने तो नंबर देख के कॉल एक्सेप्ट किया। अच्छा जो मक्खी भिनभिना रही है ना कॉल के पीछे, वो कराची में भिनभिनाती है।
0: अच्छा
1: एक जो सिटी की आवाज आ रही है ना,
0: क्या करें, कुछ चीजें फिर यूनिवर्सल है ना,
1: कुछ यूनिवर्सल है, मतलब वो कांस्टेंट है,
0: वो शनाख्ती अलामत
1: है, बिल्कुल
0: पता चलना चाहिए ना कि वो किसी
1: गाल सीधे गाल के कौन सा मसातिल, तो बहरहाल वैसे ही है।
0: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है आप?
0: ठीक ठाक है लगा शुक्र, कौन बात कर रहे हैं?
3: मैं जफर इकबाल बात कर रहा हूँ, रेलवे स्टेशन लाहौर से। बड़ी खुशी हुई कि आज हमारे पास ये मंसूरी साहब आए हुए हैं, हम इनको लाहौर में लिखी अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं।
1: सर बहुत शुक्रिया आपका,
3: बड़ी खुशी हो रही है कि चले हमारे पास ही हमारे मेहमान आए हुए हैं।
1: सर आप रेलवे में क्या कर रहे हैं?
3: इधर हमारा घर है रेलवे के साथ।
1: अच्छा, रेलवे
3: रेलवे कॉलोनी है ना, तो फिर उसका उसके साथ ही हमारा घर है।
1: सही सही।
3: जी जी, तो मैं वास्ता में ड्यूटी करता हूँ।
1: अच्छा जबरदस्त जबरदस्त,
3: वास्ता में ड्यूटी करता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी है मंसूरी साहब आए हैं, हमारे मेहमान हैं, हम इनको वेलकम करते हैं, और आपका भी शुक्रगुजार हैं कि आप माशाल्लाह ऐसे जो आरजे हैं उनको बुलाया, और हमारे लिए जो है ना ये फख्र की बात है, बहुत शुक्रिया
1: सर। मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया, ये आपकी समातों का कमाल है, हमारा कोई भी कमाल नहीं है इसमें।
3: ये बस आपकी जो आवाज सुनने को मिली है बड़ी खुशी हुई इस बात
1: सर,
3: और अल्लाह आपको खुश रखे। अब मैं तमाम मेरे सुनने वाले जहाँ जब मेरी आवाज जा रही मैं सबको सलाम देता हूँ।
1: वालेकुम
3: और जिया भाई जो है हमारे हमेशा इस तरह सलामत रहे, माशाल्लाह बहुत प्यारा बोलते हैं।
0: आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप आए।
3: थैंक यू,
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। ताहिरा मसूद साहिबा हैं, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हसीब मंसूरी साहब, कहाँ गायब हो गए आप?
1: भाई यही है, मौजूद हैं।
0: नहीं पहले किधर गायब थे?
1: छुपे हुए थे दुनिया से, दस्तूर से।
0: ओए ओए, छुपे हुए,
1: छुपे हुए थे।
0: क्या टर्म वैसे,
1: जिन थे जिन।
0: अब जहूर हो गया आपका,
1: अब जहूर
0: जाहिर हो गया,
1: जाहिर हो गया।
0: ले ताहिरा जी, ये हसीब साहब आ गए।
1: कैसी है ताहिरा मसूद साहिबा, खैरियत से हैं आप?
0: जवाब नहीं दे रही आगे।
1: जवाब तो नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता।
0: ठीक है, नौशीन रशीद हैं पिशावर से, सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। किंग खान फजल हैं, थैंक यू, आपका शुक्रिया। इसके अलावा जी मरीना बिलाल हैं, बहुत शुक्रिया। जुगनू जूनियर, थैंक यू आपका, आपने कुछ पोइट्री भेजी है, शामिल करूंगा मैं ज़रूर। एच एन आयत खान, सलाम करते हैं, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया आप आए। शफकत अली ख़ान म्यू हमारे साथ हैं, सलाम करते हैं, और आप हमें सुन रहे हैं कहाँ से? पीर महल से। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप हमारे साथ हैं। माज़ अली हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, बदाबर, बहरहाल माज़ अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, सलाम करते हैं, प्रोग्राम को सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। और इसके अलावा मलिक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी, आपका भी बेहद शुक्रिया, और इसके अलावा उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो कि हमें सुन रहे हैं, जिनके हमें कमेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, आपकी मोहब्बतें हैं। और हसीब भाई, आपको बहुत सारे दोस्त तकरीबन सभी यहाँ पे सलाम कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपके काफ़ी ऐसे लिसनर्स हैं जो आपको सुन के और पहचान रहे हैं, और पहचान के वो इस नाराज़ी का इजहार कर रहे हैं कि किधर गायब है।
1: बस आते हैं इंशाल्लाह, बहुत जल्द करते हैं शुरू वापस। अच्छा, मेरी अक्सर ख्वाहिश रही है कि FM 101 कराची, FM 101 इस्लामाबाद, एंड FM 101 इंटरनेशनल, ख़ास तौर पे मैंने बोला है 101 इंटरनेशनल,
0: इंटरनेशनल
1: ठीक है, कोई एक कंबाइन शो करते हैं हम सब अपने स्टूडियो में बैठे, एक कंबाइन किसी दिन शो का प्लान करते हैं।
0: यानी आप जूम मीटिंग करना चाह रहे हैं?
1: जूम मीटिंग कर लें, रेडियो जूम कर लें, जूम करके रेडियो कर लें, कुछ भी कर लें,
0: वो जैसे हम स्काइप पे किया करते थे,
1: स्काइप पे किया करते थे, मजा आएगा, एक अच्छा है।
0: हाँ।
1: अच्छा, मैंने अभी एक नई प्रैक्टिस शुरू की है, जब तक मैं शो कर रहा था मैं डिफरेंट FM 101 के रीजनल जो चैनल्स हैं FM 101 के, उनके डिफरेंट RJs को मैं अपने साथ कॉल पर ले लेता हूँ।
0: अच्छा,
1: तो काफ़ी देर गुफ्तगु हो जाती है,
0: जबरदस्त।
1: तो अगले शो में इंशाल्लाह हम आपको लेते हैं अपने साथ,
0: ज़रूर ज़रूर।
1: तो एक तो ये तरीका है, दूसरा एक कोई हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अब तो ये इंटरलिंक है एक दूसरे से सिस्टम, तो हम बड़ा अच्छा इसको एक अच्छा प्रोग्राम एक जो है ना हम कर सकते हैं।
0: हाँ, अच्छी वैसे आपकी,
1: तो इस्लामाबाद से भी कुछ दोस्त हों कुछ, और इसी तरह का 12 से 2 बजे का कोई प्रोग्राम हो जिसमें कोई ना सुने, हम एक दूसरे को सुने।
0: ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
4: जी वालेकुम सलाम।
0: कौन बात कर रहे हैं?
4: मैं डॉक्टर सुहेल बात कर रहा हूँ, लंबाई बॉल फोन से।
0: डॉक्टर सुहेल
4: सलीम,
0: डॉक्टर सलीम
4: साहब, एक बार जो मेहमान आए हैं, पहले तो इनको खुश आमदीद,
1: बहुत शुक्रिया जी,
4: बड़े अरसे बाद आवाज सुनने को मिली है अहले कराची वालों। अगर ये मेरे हैं तो कल हाजिर हूँ आफ्टर कोर्ट टाइम, क्योंकि मैं भी मरी से आया हूँ आज, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा इनका एक्सेंट होता है कराची वालों का, उर्दू बड़ी प्यारी उर्दू बोलते हैं।
1: सर कोशिश करते हैं, हमें भी उर्दू कहाँ आती है बोलना, हम तो जदीद लोग हैं जो उर्दू के साथ पता नहीं क्या क्या मिक्स करके चला देते।
4: वो ऐसे ही है, वो मैं बचपन में हम लोग सुना करते थे रेडियो, उन दिन ऐसा नहीं होता, ये रेडियो पाकिस्तान पे लाहौर से वो जुबैरी साहब होते थे, नईम साहब होते थे, जमील मलिक,
1: जमील मलिक,
4: इस तरह इस्लाम आबाद से वो अंकल होते थे कि मुमताज महल सी, कराची का भी रेडियो स्टेशन वो वहां से शकील साहब, तरह ये बड़ी बेहतरीन उर्दू बोलते थे। ऐसी उर्दू आजकल तो बिल्कुल खत्म हो गई, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिलती,
1: बिल्कुल नहीं मिलती।
4: लेकिन इनका जो एक्सेंट होता है ना वो बड़ा जबरदस्त, बड़ा अच्छा है
1: सर। अक्सर बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देता है ये।
4: नहीं नहीं, ये बड़ी इनके खाने भी बड़े अच्छे हैं। वो मैं एक दफा गया था कराची, वो साहिल समंदर पे वो बेचते हैं ना जेवरात बने होते हैं सीटियों, वो हमारे पंजाब में नहीं मिलते। तो मैं गया उसी के लिए था ना, वो एक सेट चाहिए था बहुत।
1: सर आप हमें कह देते, हम भिजवा देते आपको।
4: उन दिनों आपकी आवाज नहीं सुनी।
1: अच्छा, आवाज नहीं सुनी थी। चलिए सर, आइंदा कभी जरूरत हो तो बताइएगा, हम भिजवाते हैं आपको।
4: वहाँ के खाने शाने
1: सर वो भी टिन में मिल जाता है, वो भी भिजवा देंगे आपको।
4: खराब हो वो साथ आमने सामने टेबल पे बैठ के जो
1: सर मोस्ट वेलकम, आइए कराची आइए, मेहमान बनिए हमारे।
4: अभी तो आप है ना, कल कल बैठ जा सकते हैं। रंजन साहब से वो मैं सुनता हूँ जब मैं हो रहा हूँ, तो जो मुलाजमत के दूसरे दूसरे शहरों में फिरता रहता हूँ, काफी कुछ मिल जाता है सीखने को। बहरहाल बहुत अच्छा लगा मुझे
1: सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
4: बहुत कि अब मैं आके साथ गुजारूंगा और इंशाल्लाह ताला
1: इंशाल्लाह। चलिए सर, सर मुझे वो शेर याद आ गया, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। अब तो मैं असली वाला, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है क्या क्या था उसमें। तो शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। इसमें मैंने कोई एडिशन किया था।
0: हाँ, यही शेर था।
1: ये तो ओरिजिनल है ना।
0: शेर यही था। इसमें आपने कोई
1: तो उस पर आपने कहा था कोई चच्चा की दुकान थोड़ी है ये कि अपनी मर्जी से शेर बनाए जाते।
0: हाँ, यहाँ कुछ ऐसे ही था। फराज साहब का मेरा बड़ा फेवरेट शेर
1: सर, बहुत जबरदस्त।
0: और अब मेरा फेवरेट शेर के साथ अगर कोई करेगा ऐसे तो फिर मैं छोड़ूंगा।
1: सर आप सुनाएं ना, शुरू से पूरी नज़म सुनाएं।
0: वो है सिलसिले तोड़ गया,
1: तोड़ गया
0: वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो ये पूरी गजल है, मैडम नूरजहां ने भी इसको गाया है।
1: पूरी, वो, पूरी नहीं की ना।
0: मुझे पूरी अभी जुबानी याद नहीं, मुझे खोलनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी
1: अपने डायरी के और आग खोलने पड़ेंगे।
0: असी भाई एक बात बताएं, धोखा हुआ आपके साथ कभी?
1: सर कौन सा वाला?
0: वो लोग जो दोस्त बन के
1: दगा करते हैं
0: और बाज़ुकात ऐसे होता है कि वो दोस्त होते हैं, वो आपके बड़े पुराने, उनके साथ आपका एक ताल्लुक होता है। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली मोहब्बत की बात नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग सिर्फ मोहब्बत के धोखे को ही धोखा कहते हैं, खासतौर पे हमारे जैसे प्रोग्राम्स में। लेकिन हम एक जेनेरिक बात कर रहे हैं, हमें धोखे जगह जगह मिलते हैं, बारहा मिलते हैं। तो कुछ लोग बाज़ुकात ज़िंदगी में ऐसे भी आते हैं जो हमें धोखा दे रहे होते हैं। हमें मालूम पड़ जाता है कि यार ये शख्स ना हमारे साथ मुखलिस नहीं है, और हम उसको कहीं ना कहीं ये बावर भी करवा देते हैं कि हमें
1: पता है,
0: पता चल गया है। लेकिन वो लोग फिर भी हमें बेवकूफ़ समझ के मुसलसल हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते रहते हैं। और वो कभी हमारे पार्टनर होते हैं, कभी वो हमारे साथ काम करने वाले लोग होते हैं, कभी हमारे हमसाए होते हैं,
1: रिश्तेदारों
0: कभी रिश्तेदार होते हैं, कभी उनके साथ कोई लेन देन के मामलात होते हैं, कभी कॉलो करार के मामलात होते हैं, बहुत सारे सिलसिले होते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे मैनेज करना चाहिए?
1: सर मैनेज करने के कुछ आसान तरीके हैं कि हर इंसान के अंदर ना एक स्विच होता है, वो जो तकलीफ किसी की कोई आदत, कोई किसी की हरकत, किसी का कोई अमल आपको तकलीफ देता है, क्योंकि आप इतने सेंसिटिव हो चुके होते हैं, सेंसिटिव होता है इंसान, तो वो अंदर से किसी की कोई बात तकलीफ पहुंचा जाती है।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: तो आप वो स्विच अपने अंदर से निकलवा ले।
0: क्या करना चाहिए ऐसे लोगों से? कता ताल्लुक कर लेना चाहिए?
1: कता ताल्लुक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको उसको पता होना चाहिए कि आप सारी चीजें जानते हैं, आपको उसके हर एक कदम का इल्म है, हर एक बात का अंदाजा है कि ये जो बात कर रहा है वो उसका क्या मतलब है। तो उसको इतना मोहतात कर देना चाहिए कि तुम अगर मुझे बेवकूफ बना रहे हो तो इसमें मेरा ज़र्फ है कि मैं तुम्हारी इज्जत रखते हुए कि मैं अपने आप को बेवकूफ
0: अच्छा,
1: बना
0: बहुत सारे लोगों की ना जब हम इज्जत रख रहे होते हैं ना तो वो आपको बेवकूफ ही कंसिडर कर रहे होते हैं
1: समझते हैं
0: के, हाँ जब तक के आप उनको खुल के चार लोगों के सामने जलील ना कर दो ना कि भैया मुझे पता चल गया है तेरा ये सारा सिलसिला खुल गया अदरवाइज ना वो बाज नहीं आते
1: ऐसे ही है
0: वो टलते नहीं
1: वो फितरत इंसान की ऐसी हो जाती
0: है और वो बाजूकात उनके साथ सिलसिला या रिश्ता भी ऐसे होता है कि आप कट ऑफ भी नहीं कर सकते
1: नहीं कर सकते, नहीं कर सकते
0: तो आपको चलना पड़ता
1: चलना
0: है तो क्या ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए
1: सर
0: कैसे स्विच ऑफ करें
1: सर स्विच तो निकलवाना है ना स्विच ऑफ नहीं करना
0: निकलवा दें
1: निकलवा दें
0: अब मैं स्विच निकलवाने का मतलब तो ये है ना कि आप उनको छोड़ दें
1: नहीं नहीं नहीं नहीं आपको वो जो उसका अमल है वो तकलीफ नहीं देगा यानी इसकी एग्जाम्पल है अगर कराची का ट्रैफिक बहुत वाहियात सा ट्रैफिक है ठीक है कहाँ लोग पार्क कर रहे हैं किधर खड़े में हैं सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं एक वक्त तक जो मुझे इससे तकलीफ होती थी मैं खड़ा हूँ मेरे आगे से बाइक वाला गुजर गया क्रॉस करते हुए तो मुझे गुस्सा आता था फिर मैंने सोचना ये शुरू कर दिया कि जिस जगह मौजूद हूँ ये सब करना वहाँ का उसूल है
0: उसूल है
1: वहाँ का उसूल है यानी ये रूल्स एंड रेगुलेशन
0: करेंगे
1: रूल्स एंड रेगुलेशन है मैं किसी और मुल्क से वहाँ आया हूँ रहने के लिए पढ़ने के लिए कारोबार के लिए तो मैंने उस रूल को अपना आदि बना लेना करना नहीं है लेकिन उन रूल्स का आदि बना लेना
0: ठीक है
1: जैसे अगर कोई शख्स आपको किसी वजह से कोई तकलीफ दे रहा है चीट कर रहा है बेवकूफ बना रहा है तो आपको पता है कि ये बना रहा है लेकिन ये सिस्टम ही ऐसा है यहाँ का वो बनाएगा वो नहीं तो कोई और बनाएगा कोई नहीं तो कोई और बनाएगा लेकिन वो बनाएगा तो आप जब अपने आप को तसल्ली दे देंगे ना तो बहुत सारी मुश्किलात से वैसे ही आप बोलेंगे ठीक है परे हट भाई चलो
0: बिल्कुल ठीक बात की आपने इसकी मिसाल ऐसी ही है कि आप किसी सफर पे निकलते हो

0: और आपको पता है कि रोड ख़राब मिलेगी इनके लिए, तो फिर आप पहले से मेंटली तैयार होके जाते हैं कि यार रोड ख़राब होगी,
1: खराब हो
0: तो मैंने रोड को नहीं ब्लेम करना,
1: रोड को ब्लेम नहीं करना।
0: सफ़र पे निकलते हैं और आपको पता है कि रोड ख़राब मिलेगी इनके लिए, तो फिर आप

0: क्या कहना चाहेंगे?
1: मेरे प्यारे से जिया भाई, क्या हालत
0: है? अल्लाह का शुक्र है जी, आप ठीक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तबीयत ठीक हुई है आगे से?
0: आगे से थोड़ी सी, हाँ ठीक है।
1: चले, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपको सलामत रखे अल्लाह पाक। अच्छा, आपका टॉपिक क्या? मैंने ना शोर रहा, थोड़ा सा लेट लगाया था प्रोग्राम।
2: सर मैं बताता हूँ, आज हमारा टॉपिक है कि आम तोड़कर कैसे खाना चाहिए।
1: आम तोड़कर कैसे खाना चाहिए?
2: जी जी,
1: जैसे खाना खाने का तरीका वैसे ही खाना चाहिए।
2: नहीं सर, मुंह से खाना चाहिए, कोई और तरीका है ही नहीं।
1: मतलब मुंह से खाना
0: नहीं, आम तोड़ के उसको फिर ठंडा करके, फिर उसको छुरी से काट के, फिर उसके ऊपर कुछ क्रीम लगा के
2: खाना मुंह से ही पड़ेगा,
0: है ना?
1: ऐसे ही नहीं, ऐसे ही ऐसे ही आम तोड़कर उसको फ्रिज में रखेंगे, ठीक है, फ्रिज से निकाल कर उसको काटेंगे, काट कर उसके छिलके लावा करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसको खाएंगे, जो जिस तरीके से मैं खाता हूँ।
0: लेकिन जो भी करो, गुठली खाते हुए ना लग पता जाता है।
1: ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है।
2: जब अपनी मुट्ठी से निकलती है ना गुठली,
1: ऐसे ही है, वो कपड़ों को भी गिर जाती है।
0: चलो असद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपने कॉल की।
1: बहुत शुक्रिया जी भाई आपका, अल्लाह
0: आपको सलामत, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
3: कराची का आजकल मौसम कैसा है?
2: लाहौर का जो दोपहर का मौसम था उससे बेहतर है। अच्छा, वहाँ पे समंदर की हवा है, तो जब गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो समंदर की हवा रुक जाती है, तो तकलीफ देह हो जाता है मौसम।
3: अच्छा,
2: जब हवा चल रही होती है तो बड़ा बेहतरीन रहता है। तो आजकल तो बादल चादल बढ़े, बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन मौसम कदरे बेहतर है लाहौर से। लाहौर में बारिश हो गई शाम में, लेकिन वैसे जो हवा की वजह से शामें कराची की हमेशा अच्छी रहती हैं, समंदरी हवाएं खुल के आती हैं।
3: वाह वाह वाह।
2: तो जो शाम में बैठ कर किसी होटल पर, कराची में बड़ा कॉमन है, लाहौर में इतना रुझान नहीं है ना इस्लामाबाद में, कि चाय के होटल में जो रश होता है ना, वो मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ पर लोगों का रूटीन है 10 बजे के बाद घर से निकल के फिर चाय के होटल।
3: अच्छा, यहाँ पे पंजाब में आजकल वो 10 बजे के बाद की एक कंस्ट्रेंट लगी हुई
2: नहीं
3: है।
2: अब तो वो खत्म हो गया ना?
3: नहीं, पंजाब में तो है
2: अभी भी।
3: हाँ, वहाँ पे है,
2: वहाँ पर है।
3: अच्छा, वहाँ पे है। भी है वो जो डाइन इन है वो?
2: नहीं नहीं, वो है, सिर्फ इम्प्लीमेंट है या नहीं है वो एक अलग मसला है।
3: नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं है,
2: नहीं है,
3: यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं बैठे।
2: लेकिन अभी तो वो ठीक हो गया, मतलब रिजॉल्व नहीं हुआ अभी?
3: नहीं, अभी रिजॉल्व
2: नहीं हुआ, तो खत्म कर दिया।
3: नहीं, यहाँ पे तो चल रहा।
2: अच्छा,
3: यहाँ पे चल रहा है 10 बजे के बाद डाइन इन नहीं है यहाँ पे।
2: अच्छा,
3: 10 से 11 बजे के बाद फिर वो आप टेक अवे कर सकते हैं, आप डिलीवरी करवा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे कुछ खास जगहों
2: तो के। आपका कभी कराची आने का इत्तफाक हुआ?
3: मेरा अभी तक नहीं हुआ इत्तफाक।
2: सर तो इत्तफाक करें,
3: देखें कितना वैसे महरूम इंसान हूँ।
2: माशाल्लाह, बच्चे बड़े हो गए आपको?
3: बच्चे बड़े हो गए, मेरे कर्ज जितने आ गए,
2: सीपियों के वो चीजें ज्वेलरी लेने के लिए कराची आ गए।
3: वाह वाह वाह। तो इंशाल्लाह कभी, असल में जैसे आपका भी लाहौर चक्कर लगता है ना, तो वो किसी काम की वजह से लगता है।
2: ऐसा ही है।
3: और यकीनन आपके बहुत सारे शहरों में चक्कर इसलिए नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे कोई काम नहीं होता।
2: सर मैं एक आपको भी किस्सा सुनाता हूँ। दिसंबर के कुछ आखिरी हफ्ता था, दिसंबर 2025, मुझे बैठे बैठे पता नहीं क्या ख्याल आया, मैंने बेगम बच्चों को कहा यार आओ कहीं घूम के आते हैं। कह रही कहाँ? मैंने कहा लॉन्ग ड्राइव पे। कहाँ? मैंने कहा मुल्तान।
3: अच्छा। वाह वाह।
2: तो क्यों, कोई काम है? मैंने कहा नहीं, जाना क्यों है? लॉन्ग ड्राइव,
3: बस चलते
2: हम पहुंचे मुल्तान बाय रोड ड्राइव करके।
3: कितना टाइम है?
2: तकरीबन 12 घंटे।
3: अच्छा, 12 घंटे। वाह।
2: वो वजह ये है कि मोटरवे जो है वो कराची से सक्कर तक का मोटरवे नहीं है।
3: अच्छा,
2: तो वो जो है वो आपको तकरीबन 7-8 घंटे लगते हैं सक्कर पहुंचने में। अच्छा। उसके बाद 4 घंटे।
3: ठीक है,
2: तो ये है। तो हम आए, हम एक जगह स्टे किया हमने, बच्चों ने वहाँ पे खेला कूदा इंजॉय किया, फिर हमने कहा आओ तुम्हें हम हलवा खिलाते हैं मुल्तान का।
3: अच्छा।
2: हमने मुल्तान का हलवा खाया, रात को एक मॉल में पिज्जा खाया जो कि हम कराची में अक्सर खाते हैं, लेकिन हमने मुल्तान आके फिर पिज्जा खाया। उसके बाद हम सुबह उठे और हमने कहा चलो कराची वापस।
3: वाह वाह।
2: तो किसी दिन आप भी आए।
3: चलें जरूर।

0: कराची चक्कर लगाएं, कराची अच्छा है, लोगों को खौफ ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
1: नहीं है
0: ऐसा नहीं है जैसा समझते हैं।
1: एक बाजू का हवा बना होता है ना।
0: नहीं नहीं ऐसा ही है। मैं भी गया था साउथ अफ्रीका केप टाउन लास्ट ईयर नवंबर में, तो लोगों ने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं पहले दिन तो होटल से बाहर ही नहीं निकला।
1: अच्छा, वहाँ के साथ
0: यूं करता था और मैं होटल के दरवाजे से फौरन अंदर आ जाता था।
1: अच्छा,
0: मतलब इतना डराया था कि स्नैचिंग होती है, वो जो आते हैं आपको स्नैप करके चले जाते हैं और कहते हैं छीन लेते हैं। तो पहले दिन इस तरह गुजारा, उसके बाद हमें पता चल गया कराची वाले को तुम डरा रहे हो यार।
1: सही है।
0: तो उसके बाद हम फिर नॉर्मल रूटीन में आ गए, 12 बजे भी निकल रहे हैं, 1 बजे भी निकल रहे हैं, रात सन्नाटा हो जाता है। लेकिन तो बहुत सारी चीजें वैसी ही हैं, बस हैं। आई एम द पर्सन जो शायद 20-25 साल से मोबाइल फोन यूज कर रहा है,
1: ठीक है,
0: आज तक मेरा मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छीना।
1: क्या बात है, ये तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: कल एक हमारा वो इस्लामाबाद से दोस्त इस वक्त कराची में मौजूद है, तो हम रात में वही दोस्त बैठे हुए थे, वो इस्लामाबाद से आए किसी मकसद की वजह से।
1: अच्छा,
0: तो वो टेबल पे जो है ना ये मोबाइल,
1: जिस तरह आपने मकसद कहा है ना, मुझे कुछ कुछ समझ
0: नहीं, जिस तरह आपने कहा ना काम की वजह से ही आता है इंसान, तो उसका अपना कोई मकसद था जिसकी वजह से आया है वो।
1: अच्छा,
0: तो हमारा मोबाइल यूं रखा हुआ था, कहता है असीब भाई आज आपने मोबाइल नहीं छुपाया। तो मैंने कहा तुमने मुझे कब मोबाइल छुपाते हुए देखा।
1: सही है,
0: तुम उठा के अपनी जेब में रख लेते हो भाई, हम तो कभी नहीं रखते।
1: ठीक है,
0: तो बहुत सारी चीजें बस है, लेकिन ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है।
1: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
0: मैंने एक आपसे नज़म सुननी है, मैं आपको भी भेजता हूँ, वो पढ़नी है।
1: जरूर जरूर, क्यों नहीं। अभी हम एक गाने की तरफ बढ़ेंगे और वापस आके फिर बातचीत के सिलसिले को यहीं से जोड़ते हैं। सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे ज़ियान जुम कहते हैं, मेरे साथ हैं अब्दुल अजीज़ मंसूरी साहब, और एक गाना, उसके बाद वापस आके आपसे मज़ीद बातचीत के सिलसिले यहीं से जोड़ते हैं।
2: SUD

0: वल जी वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। एक बज चुका है और 2 बजे तक आपका और हमारा साथ रहने वाला है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, सियालकोट, कोयटा, मुल्तान, पेशावर, जहाँ जहाँ पे भी हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सबको एक दफ़ा फिर से वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आपके बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं अब्दुल हसीब मंसूरी साहब, जो कि 101 कराची के बड़े ज़बरदस्त मंझे हुए आरजे हैं और आज लाहौर तशरीफ़ लाए हैं, और इत्तेफाक से उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, तो मैंने कहा कि आएँ आज इकट्ठे प्रोग्राम करते हैं। हसीब भाई से तकरीबन कोई 15 साल पुराना एक याराना है, एक ताल्लुक़ है, तब का ताल्लुक़ है जब बिल्कुल नया नया हमने इकट्ठे ही स्टार्ट किया था, लेकिन आज पहली बार रूबरू मुलाकात हो रही है। खैर, ये सिलसिले भी चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त खटक फ्रॉम चिराट हैं। कहते सर, मुझे बड़ा शौक है रेडियो में जाने का, मगर स्टूडेंट हूँ, था आपने आज कहा कि हम स्टूडेंट लाइफ में रेडियो ज्वाइन की, तो आप बता सकते हैं कि मैं कर सकता हूँ? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कर ली है या कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आप यकीनन रेडियो पाकिस्तान को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आके ऑडिशन दे सकते हैं, और अगर आप में पोटेंशियल हुआ तो आपको ज़रूर यहाँ पे सेलेक्ट किया जा सकता है। तो कोशिश करते रहना चाहिए। कभी कभी कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं, यकीनन हर चीज़ के लिए कोई ना कोई क्राइटेरियाज़ होते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए वो क्राइटेरियाज़ ही हों। कभी कभी जब आप जुनून के साथ, पैशन के साथ किसी चीज़ के पीछे लगते हैं ना, तो फिर बाज़ुकात क्राइटेरियाज़ पीछे रह जाते हैं, आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं मिल जाती है। जहाँ पे लोगों के लिए एलिजिबिलिटी का सवाल होता है, क्राइटेरिया का सवाल होता है, आप वो चीज़ें किसी और तरीके से अचीव कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश, लगन और बड़ा एक हार्ड वर्क चाहिए होता है, पैशन और जुनून चाहिए होता है। तो वो अगर आप दिखाएंगे तो यकीनन बहुत सारे मामलात हो सकते हैं, फिर बाज़ुकात आप क्राइटेरिया को भी बीट कर देते हैं। बाज़ुकात हम बहुत सारी चीज़ों के लिए कोशिश ही नहीं करते और नतीजे हम किस्मत पे डाल देते हैं कि यार वो तो ऐसे था वैसे था। यार आपने कभी कोशिश भी तो नहीं की? यकीन जानिए, कोशिश करने से बहुत कुछ मिल जाता है। हसी भाई, कभी ऐसे हुआ कोशिश की हो बड़ी लेकिन कुछ मिला ना हो?
1: अक्सर हुआ और कई बार तकलीफ दे हुआ, कई बार बस अल्लाह की रजा समझ के कबूल किया।
0: ठीक है,
1: तो हुआ, कई बार हुआ। जिस तरह ये साहब कहते हैं कि शौक है रेडियो का लेकिन मौका नहीं मिला, तो हो सकता है कि इनको मौका इतनी आसानी से मिले भी ना। ठीक है, हो सकता है कि पहली दफा इनका रिजेक्शन हो, फिर ये इम्प्रूव करें अपने आप को, फिर रिजेक्शन हो, और कहीं तीसरी चौथी दफा में जाके मिल जाए वो। तो ये जिंदगी का पार्ट है, मिलता है।
0: अच्छा,
1: है।
0: ऐसे हुआ है असीब भाई कि कभी आपने किसी चीज के लिए बड़ी स्ट्रगल की हो, बड़ी कोशिश की हो, और वो चीज वैसे आप ना हासिल कर सके हो जैसे आप चाह रहे थे, या टोटल रिजेक्शन हो गई हो, या आप बिल्कुल नाकाम हुए हो, लेकिन फिर एक वक्त के बाद जिंदगी में जब आप आगे बढ़े और पीछे मुड़ के देखते हैं और आप कहते हैं कि यार वो अच्छा ही हुआ, अगर वो हो जाता तो शायद आज जो हो रहा है जैसे हो रहा है,
1: वैसा ना होता,
0: वैसा ना होता।
1: ऐसा भी हुआ और ऐसा भी हुआ है कि जो हुआ वक्त पे हुआ, फिर चीजें हाथ से छूट गई।
0: हाँ, कभी कभी बिल्कुल ऐसे
1: ऐसा भी होता है ना कि बड़ी चाहत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ किसी चीज की ख्वाहिश की जाती है
0: और वो मिल जाती है,
1: वो मिल जाती है, लेकिन शायद कुदरत के लिहाज से वो आपके लिए बेहतर नहीं होती, तो वो आपके फिर छूट जाती है, तकलीफ बड़ी होती है।
0: कभी कभी यूं भी होता है ना, मैं इसकी अक्सर एक मिसाल देता होता हूँ कि कभी कभी आपको कुछ चीजें मिल जाती हैं लेकिन आप उसके अहल नहीं होते, बाजू
1: अहल नहीं होते, लेकिन कुछ चीजें मिल जाती हैं, आप अहल भी होते हैं, लेकिन वो आपके लिए बेहतर नहीं होते।
0: कैसे
1: ये बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे शायद वो इसको किसी भी तनाजुर में जोड़ सकते हैं, मोहब्बत के लिहाज से भी, किसी नौकरी के लिहाज से
0: बीच में ना मोहब्बत आ जाती है।
1: मोहब्बत तो ना हो तो फिर जिंदगी क्या है?
0: आए, अच्छा,
1: मोहब्बत ही ना हो तो जिंदगी क्या है भाई?
0: अच्छा
1: जी जी जी,
0: तो ये आप आ रहे हैं अभी
1: 12 से लेके 2 बजे,
0: एक बजे ना तो आप आ गए।
1: मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर 12 से लेके 2 बजे भी ये बातें ना करें तो जितने सुनने वाले हैं उनको मजा कैसे आएगा? नहीं तो मोहब्बत तो जरूरी नहीं है कि मिल जाए।
0: अच्छा,
1: कुछ मोहब्बतें खोने का भी नाम होता है,
0: कुछ मोहब्बतें यानी आप ज्यादा मोहब्बत।
1: हाँ, मोहब्बतें बहुत सारी हो सकती हैं
0: जो जिसमें से कुछ खो जाने चाहिए।
1: मुझे नहीं पता कि कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, तो अजराए मजाक कह देते हैं, कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं यार तुम्हें मोहब्बत हुई, तो हम उनको कहा कहते हैं कि एक बार खुद से हुई, उसके बाद हर साल मोहब्बत की है।
0: क्या बात है। अच्छा, की है,
1: की है हर साल मोहब्बत की है। कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जिसमें हमने किसी से मोहब्बत ना की हो।
0: अच्छा, जो मोहब्बत हो जाती है
1: खुद ब खुद जो हो जाता है,
0: हाँ, एक वक्त के बाद उसको भी फिर करना पड़ता है।
1: उसके बाद माहौल ऐसा बनता है कि करना पड़ता है, ऐसा ही है
0: कि नहीं? ऐसा नहीं,
1: नहीं, वो डिपेंड करता है,
0: डिपेंड करता है,
1: डिपेंड करता है।
0: आप मोहब्बत कर रहे हैं अभी तक?
1: मोहब्बत तो हमेशा करते हैं लेकिन हर साल अब नहीं कर रहे।
0: हर साल नहीं कर रहे,
1: वो हुदूद जो है ना।
0: अच्छा,
1: पांव बांध दिए गए हमारे,
0: बांध दिए गए, नहीं तो कर लेनी थी
1: मतलब मोहब्बत करने में हर्ज क्या, आप मुझे बताएं ना।
0: लेकिन अगर हो जाए खुद ही तो फिर
1: हो सकती है, हो सकती है। अगर आप मुफ्ती तारिक मसूद को सुनते हैं तो कोई फिर मसला भी नहीं है कोई।
0: हम तो बस उन्हीं के मुरीद हैं।
1: हमारी बेगम साहिबा कहती है कि यार आप सबको सुना करें, इनको ना सुना करें, आप सब सुने, मुफ्ती तारिक मसूद को ना सुने।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: तो जिया भाई, मैं आपने मुझसे सवाल किया और थोड़ा सा मोहब्बत की तरफ चलते हैं। कभी ऐसा हुआ कि मोहब्बत मिली भी और फिर बिछड़ने का भी मजा आपने लिया हो?
0: मोहब्बत मिली भी,
1: मोहब्बत हुई फिर मिली, मोहब्बत पाई आपने, उसके बाद फिर बिछड़ने का भी मजा लिया?
0: यार हसीब भाई बता दूं यहाँ पे।
1: बिल्कुल बताएं, डरना किस बात से है?
0: बता दूं मैं।
1: बस घर पे नहीं पता तो आप बिल्कुल,
0: घर वाले भी बाजू का सुन रहे होते हैं चुप चुप।
1: कोई बात नहीं।
0: हाय क्या बात, आपने मेरे कौन से जख्मों को आपने छेड़ दिया
1: सर, बताएं। आज
0: हुआ है, बिल्कुल ऐसे हुआ है,
1: मतलब मिली भी और फिर बिछड़ भी गए। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, वो तेरे नसीब की बारिश है, किसी और छत पे,
0: किसी और की छत पे,
1: किसी और की छत पे। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। मंजिलें भी उसकी थीं।

0: रास्ता भी उसका, एक मैं अकेला था,
1: वाह
0: काफिला भी उसका,
1: क्या
0: साथ साथ चलने की सोच भी उसकी थी, फिर रास्ता बदलने का फैसला भी उसका, था। आज क्यों अकेला हूँ दिल सवाल करता है, लोग तो उसके थे क्या खुदा
1: भी उसका था। क्या बात है,
0: तो होता है जिंदगी में हर तरह की,
1: जिंदगी में हर तरह की चीज होती है,
0: हर तरह के मामलात होते हैं। और
1: अच्छा, इंसान को अल्लाह ताला ने मोल्ड भी इसी तरीके से किया है कि वो हर तरीके से हर चीज में एडजस्ट भी हो जाता है, वो
0: हो जाता है, लेकिन बाज़ूकात कुछ जख्म कुछ सिलसिले ऐसे रह जाते हैं कि वो हमेशा आपके साथ जिंदगी भर चलते हैं,
1: चलते रहते हैं।
0: आप मोल्ड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं रह जाते हैं, लेकिन
1: कुछ
0: चीजें आपके साथ रह जाती हैं,
1: कुछ चीजें।
0: मैं अक्सर ना कुछ बड़े लोगों के साथ जब बैठूं ना, तो बड़े लोगों के साथ बैठ के ना आपको एक चीज मैंने बड़ा नोट की है, वो अगर आप उनके साथ थोड़ा सा खुलेंगे ना, या वो आपके साथ थोड़ा सा खुल जाएंगे, तो वो आपको बताएंगे अपने पास्ट के रिग्रेट्स के मुतालिक कि यार मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। और जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से होते हैं हर इंसान के कि अगर आप उनके साथ जब जब बैठेंगे ना, वो आपको वो किस्से रिपीट पे सुनाएंगे।
1: बिल्कुल ऐसे ही
0: वो कहेंगे कि यार वो फलाना वक्त था, वो ऐसे हो गया वैसे हो गया। और वो उसके अंदर मैंने देखा है कि अमूमी तौर पे खुश यादें कम और तलख यादें
1: ज़्यादा होती हैं,
0: और वो ना एक केसेट होती है जो कहीं ना कहीं फंसी होती है,
1: फंसी भी होती है।
0: और आप जब उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे और थोड़ा सा आप उनको बस ज़रा टच कर दें, तो वो ना अपने वही किस्से बार बार रिपीट से सुनाएंगे,
1: दिल के वो जो तार होते हैं ना वो छिड़ जाते हैं।
0: तो ये एक बड़ा एक सिलसिला है, उसके अंदर फिर कुछ ऐसे जख्म भी होते हैं। बहरहाल ये जिंदगी है,
1: ऐसे ही है, ऐसे ही है, चलता रहेगा, ऐसे ही मामला बढ़ता रहेगा। तुमसे क्या कहें जाना इस कदर जमेले में,
0: वाह वाह,
1: वक्त की रवानी है सख्त लामकानी है, हिजर के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है,
0: क्या
1: तुमको जो सुनानी है, बात गो जरा सी है, बात उम्र भर की है, उम्र भर की बातों में गुफ्तगू इजाफी है, हो आगे पीछे कर दिया होगा मैंने, हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर जमेले में।
0: वाह वाह यार, कैसे कर लेते हैं यार कैसे कर लेते हैं
1: भाई, क्या
0: आप ये जो है ना, ये आजकल फुल शायरी वाले मूड में चल रहे हैं
1: क्या करें, दूर है ना खैर है
0: ये भी ठीक है। अस्मा कौसर हैं, हमें सलाम करती हैं, वालेकुम सलाम, आप सुन रही हैं अली हैदर जुनेजो प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ताहिरा मसूद साहिबा कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं और मंसूरी साहब के शोज़ को बहुत मिस कर रही हूं, आज दो कीमती हीरे एक साथ हैं, मज़ा दुबाला हो गया,
1: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नौशीन रशीद कहती हैं कि बदबर पेशावर बेस है ये सर इलाके का नाम है, ओके थैंक यू, आपने करेक्शन की। आयशा खान सलाम करती हैं, वालेकुम सलाम, और फ्राइडे का शो अभी आजकल नहीं हो रहा, सिर्फ ट्यूसडे का शो हुआ करेगा रात 12 से 2 हरफे जुनू जो कि नेटवर्क पे होता है, जुमे वाला शो अभी फ़िलहाल पोस्टपोन है, देखते हैं कि इसको हम रिज्यूम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन अभी वीकली हफ्ते में सिर्फ एक शो होगा जो आज का शो होता है, आप अभी एक ही प्रोग्राम हमें सुन पाएंगे। एक कॉल लेते हैं हसीब भाई,
1: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं?
2: जी मैं बात कर रहा हूं पेशावर से, मोहम्मद अली।
1: क्या बात है सर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं?
2: अल्लाह का शुक्र है, मैं तो एक ट्राई कर करके आखिर आप यकीन करें मेरा दिल टूट गया, टूट रहा था कि मैं क्या नहीं मिलाता हूं, कॉल जाती है या फिर बिजी कहते हैं आ रहे हैं
1: सर, टूटने का दिल टूटने का मौका नहीं दिया ना आपको हमने।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आप सब दोनों को सलामत रखे,
0: आमीन,
2: और आप दोनों को सेहत, अल्लाह आप दोनों को सेहत दे इसी तरह कि आप दोनों भी यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम करें खुशी।
1: बहुत शुक्रिया, आमीन।
0: क्या कहना चाहेंगे, क्या वो बात थी जो बार बार आपको कॉल करने पर मजबूर कर रही थी?
2: बस ऐसे ही दिल कर रहा था कि यार बात करूं, कोई कर रहा है किससे कर रहा है, कोई कहां से कर रहा था, मैं कि चलें मैं पेशावर को हूं, मैं भी कर लूं बात।
1: तो कभी पेशावर में कोई ऐसी तलख बात, कोई तलख चीज आपके साथ हुई हो, आपके साथ गुजरी हो?
2: सर गुजरी तो बहुत है, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है इसी चीजों में, और सीखा भी है अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि इंसान की जिंदगी में ये चीजें ना आए

0: चीजें ना है तो फिर इंसान कुछ सीख नहीं सकता,
1: मजा भी नहीं आता।
0: तो हमने जी हमने तल्ख बातें सीखी भी हैं और शुक्र है अल्लाह का कि हमने तल्ख बातें सीखी हैं की नहीं है।
1: यही तो कमाल है कि अगर तलख बातें करने भी लगे तो फिर इंसान तो इंसान नहीं हुआ ना।
0: ये बात
1: यानी एहसास जब इंसान के अंदर से खत्म हो जाए तो फिर वो इंसानियत कहाँ रहती है, फिर तो वो हैवानियत की तरफ ट्रांसफर हो जाता है उस इंसान का।
0: ये बात है सर, हमें बड़े बड़े छोटे बड़े तो खैर बड़े होते हैं, बड़ों की बात हम बहुत से सुनते थे क्योंकि हमारी एज भी ऐसी है, और छोटे अगर हमें कह देते हैं कोई ऐसी बात तो हम छोटों की बात को भी इग्नोर ही कर देते हैं।
1: अच्छा।
0: छोटा है खैर है, अभी नहीं समझता क्योंकि हम तो गुजरी हुई है, हमें पता है यार हमने भी कैसे वक्त गुजारा है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे वक्त में एक हया होती थी, एक इज्जत होती थी बड़ों के लिए, तो यार दोस्त का बड़ा अगर देखते थे कि यार आ रहा है तो हम रास्ता चेंज करते कि नहीं यार वो दोस्त कब आ रहा है शायद तो जो हालांकि हम मुझे क्या करता था कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से वो करते थे कि नहीं यार फलाने कब हुए। तो हमारे वक्त में एक शुक्र अल्लाह का रखा यहाँ होता थी, इज्जत होती थी बड़ों के लिए। तो आजकल के बड़े छोटे जो है वो इन चीजों को नहीं समझते, तो हम भी कहते हैं नहीं यार छोड़ो खैर है
1: चलने दो।
0: उम्र ऐसी चीज है ना कि उम्र वक्त जो है ना वक्त ऐसी चीज है कि हर चीज सिखा देती है।
1: जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे, तो वो भी वक्त आएगा उनका भी, वो भी सीख जाएंगे ऐसा इस तरह मसले की बात।
0: हाँ बिल्कुल, तो हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं अच्छी तरह से बताते हैं रास्ता ये नहीं, क्योंकि बड़े हैं हम। मेरी इस वक्त थोड़ी से 5 ईयर और 6 पे जा रहा हूँ, और अगर अब मैं आपके सामने बैठूं तो आप मुझे कहेंगे कि यार आप ऐसे वजूद बोल रहे हैं।
1: माशाल्लाह आप तंदुरुस्ती के साथ रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, और हमेशा दूसरों की खुशी का जो है ना जरिया बनाया आपको।
0: बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है सर, ऐसे ही करते हैं।
1: जबरदस्त,
0: मैंने हमने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारा भी दिल किसी ने नहीं दुखाया।
2: बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच आपने कॉल की,
0: आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह,
2: बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू, सब सुनने वालों को सलाम।
2: खटक फ्रॉम चिराट हैं और वो कहते हैं कि वो लोग आपकी दूरियों के ही काबिल हैं जिन्होंने आपकी नज़दीकियों की कदर नहीं की। क्या बात है, खटक फ्रॉम चिराट, और चिराट से मेरे ख्याल से मुझे पहली दफ़ा ये मैसेज आया है। और आपको पता है चिराट कहाँ पे करके है?
1: आइडिया सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं।
2: चिराट पेशावर के करीब, एक पेशावर से पहले एक इलाका आता है, और मैंने ज़िंदगी में जो सबसे पहला कोई पहाड़ी सिलसिला देखा था, यानी मैं किसी पहाड़ पे गया था, तो वो था चिराट कैंट।
1: अच्छा।
2: चिराट कैंट बेसिकली आप कह लें कि हेडक्वार्टर है या मेन बेस है जहाँ पे SSG कमांडोज की ट्रेनिंग होती है।
1: ठीक है।
2: और मेरे मामू थे वो वहाँ पे चिराट कैंट में उस वक्त मेजर हुआ करते थे SSG में, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में, तो मैं उनके पास ना छुट्टियाँ गुजारने गया था, तो वो पहला एक एक्सपीरियंस था
1: पहाड़ देखने का,
2: और पहाड़ भी ऐसा कि फौजियों के गिर्द घिरा हुआ, ना सिर्फ फौजी बल्कि
1: खुश नसीब इंसान,
2: बल्कि कमांडोज जिनको आप कमांडोज बोलते हैं। तो वो चिराट से आज मुझे ये मैसेज ब्लिंक हुआ, चिराट का नाम आया, इन्होंने चिराट शहर से किया होगा लेकिन वो चिराट कैंट था।
1: ओके।
2: तो वो एक बड़ी एक मेरी याद है और एक बड़ी मज़ेदार सी जगह है। और आपको पता है कि बॉयज को ना कमांडोज फौजी बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं,
1: ऐसे ही।
2: और मैं जब वहाँ पे गया और वहाँ पे जो कमांडोज की ट्रेनिंग्स हो रही थी वो मैंने देखी, और उनकी ट्रेनिंग्स बड़ी हट के और टफ होती हैं, बड़ी मज़ेदार किस्म की। और वहाँ पे ना वहाँ की खास बात ये है कि वहाँ पे ना कमांडोज जो ट्रेनिंग जितने भी होते हैं, अगर कोई चलता हुआ नजर आ जाए ना तो उसको सजा होती है।
1: अच्छा।
2: वहाँ पे हुक्म है कि आपने जो काम करना है वो दौड़ते हुए करना है।
1: ओहो।
2: यानी आप चल के नहीं कर सकते, आपने भागते हुए करना है, और ना सिर्फ भागते हुए बल्कि कुछ ना कुछ उनके कंधों पे सामान होता है वो उठा के भाग रहे
1: सर, वो अगर चाय
2: तानू ना होते
1: चाय लेके आ रहा होगा तो कैसे भागेगा?
2: तो वो बस ना वो तो कमांडो नहीं कर रहा होगा ना, वो तो कोई खास सामा टाइप का कोई बंदा होता है
1: उसके ऊपर,
2: वहां पे जो वो ट्रेनीज होते हैं ना जो वो भाग रहे होते हैं, तो आपको हर सड़क पे कोई ना ऐसा ट्रेनी भागता हुआ नजर आ रहा होगा। तो वो एक ना एक अजीब ही एक सिलसिला और एक अजीब ही दौर, और वो बड़ा मजेदार सा एरिया है।
1: अच्छा, वो कुछ पुराने वाकयात जगहें ऐसी होती हैं जो आपको
2: कहीं ले जाती,
1: नहीं कहीं ले भी जाती हैं, और उस जिंदगी में आप कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं।
2: हाँ।
1: उससे कुछ ना कुछ सीखे हुए होते हैं आप, तो अच्छी चीज है। यादें भी बड़ी अच्छी होती हैं,
2: बिल्कुल
1: तल्ख जरूरी नहीं है, कभी हसीन यादें भी होती हैं।
2: अच्छा, वैसे यादें आप दोनों तरह की हो ना, चाहे तल्ख हो चाहे हसीन यादें हो, वो कहीं ना आपको थोड़ा सा
1: टॉर्चर करती है,
2: वो नमी सी दे जाती है, थोड़ा सा कहीं ना आपको वो थोड़ा सा उदास कर जाती है, खुशी वाली भी और गमी वाली भी। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। अनिला जी, कैसी हैं आप?
3: जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, और आप ठीक हैं जी?
2: अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक।
3: हसीब भाई को वेलकम है।
1: बहुत शुक्रिया जी। कैसी हैं आप अनिला? खैरियत से हैं
3: जी अल्हम्दुलिल्लाह, और खूबसूरत आवाज के मालिक हैं माशाल्लाह से।
1: ऐसा ही होगा, लाहौर हम कम आते हैं और स्टूडियो में तो पहली दफा ही 101 लाहौर आने का इत्तेफाक हुआ है।
3: ये तो फिर जिंदाबाद।
1: हाँ हाँ, मैंने तो कह रहा हूँ कि हमारे उस्ताद हैं ये, इन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई हैं हमें, ये बहुत सारी चीजों का जिक्र कर नहीं सकते क्योंकि कुछ चीजों में बंधे हुए हैं, लेकिन काफी कुछ चीजें इन्होंने सिखाई हैं।
2: ये पता है कौन सा उस्ताद? वो उस्ताद नहीं होते, उस्ताद जरा जाके दही
1: 10 नंबर का पाना ले।
3: ठीक
2: है जी अनिला जी,
3: कुछ वो भी तो होते हैं जो बड़ी उस्तादियां मारते
1: हैं, ये सारा सारी चीजों का मजमू है ज़िया अंजुम,
3: बड़े अच्छे आ रहे हैं हमारे ये भी।
1: अच्छा अनिला, मैं आपसे एक बड़ा पिटा हुआ सवाल है लेकिन मैं आपसे करना चाहता हूँ, बिल्ली जो है वो 3 साल के बाद क्या हो जाती है?
3: बागर बिल्ली तो नहीं हो जाती।
1: ये तो आपने बताना है, अगर मैंने जवाब देना हो तो मैं पूछता क्यों आपसे?
3: पता नहीं, वैसे तो कहते हैं शेर की खाला होती है।
1: नहीं नहीं, 3 साल के बाद क्या होती है, ये तो बड़ा जनरल नॉलेज का सवाल है, ये फिजिक्स की कई किताबों में, तारीख की कई किताबों में लिखा गया है, स्कूल में पढ़ाया गया है। मतलब ये तो आपकी किताब में मौजूद होगा ना, ये
3: बिल्ली पता नहीं क्या हो जाती होगी, क्या से क्या हो जाती
1: है। भाई आप क्या कहते हैं?
2: 4 साल की हो जाती
1: है। 4 साल की हो जाती है।
2: देखिए अनिला जी, फिर देख ले
3: आप। ऐसे सवाल क्या कमाल होते हैं ना, मैं भूल गई।
2: आप समझ रही क्या, बिल्ली ने सांप बन जाना था 3 साल के बाद? आप किसी और तरफ निकल गई थी आप ना।
3: हाँ, मैंने सोचा ना शायद बड़ी होके कोई नानी वानी दादी खाला बन गई।
1: ये तो हम इतनी तफसील में नहीं जा सकते, किसी के पर्सनल मैटर्स में पढ़ना नहीं चाहिए।
2: हाँ, उसके अपने इस दवाई के मामले आते हैं,
3: वरना मारे की बिल्ली है मैं।
1: यानी किसी के मामले, हमारी उस्तानी थी वो कहा करती थी कि अपने पड़ोस के मामलात में सिर्फ इतना ही पढ़े कि उसको जरूरत हो तो आप जाए, वरना उनके घर में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं वो, उसमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए।
3: वो हसीब भाई बोल था ना कि वो एक साहब घर बैठे थे, तो बेगम जो वो कहती है, सुनो सुनो साथ वाले घर में लड़ाई हो रही है, कहते हैं तो कहती जाए ना आप जरा होके आए, कहते वहां होके आया हूँ तो ही तो ये हो रहा।
1: ज़िया भाई, ये आपके टाइप का था कोई?
2: ये बस मुझे लगा है बहुत जोर से।
3: नहीं नहीं ज़िया, डोंट वरी, ये हम टाइम से भी होते हैं ना।
2: अच्छा मुझसे ना, मैं बड़ा इस वक्त मजबूर हूँ कि मुझसे हंसा नहीं जा रहा।
3: ओह माय गॉड।
2: तो लेकिन खैर कोई नहीं।
3: और टॉपिक क्या चल रहा था कि
2: बिल्ली बिल्ली
1: बिल्ली
3: बिल्ली
2: देखिए आप बेशक आरजे डॉग्स के प्रोग्राम में जवाब दे देती लेकिन यहाँ पे आप रह गई।
1: नहीं नहीं, अभी तो बड़े सवालात हैं, आप कभी महफिल रखें हम पूछेंगे।
3: नहीं नहीं, इस टाइप के मैं समझ नहीं पाई थी।
2: आप समझिए कि कोई अदबी सी बात होगी,
3: इतनी संजीदगी से इतना खूबसूरत जोक होगा।
2: चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।
3: वैसे क्या गुफ्तगू आप कर रहे थे अभी, कुछ टॉपिक के लोगों के साथ क्या?
1: आप कौन सी बात करना चाहती है, आप बताइए अपना।
3: जो धोखा दे देते हैं,
1: तो आप अगर मतलब अपना कोई पैगाम किसी को कोई पहुंचाना चाहती हैं तो आप दे दें, हम आपकी डाक लेके जो है हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे।
3: नहीं, सबके लिए इस्लाम दुआ तो है ही है, अल्लाह ताला सबको जो जो सुन रहे सलामत रखे। और ये कि धोखा तो फिर धोखा हर पास से है ना।
1: अच्छा, कराची में, मैं कराची से हूँ इसलिए कराची की बात करूंगा, तो कराची में अक्सर चीजें जो है ना धो के दी जाती हैं। धोके धोके बहुत खाए जाते हैं, आम धोके खाए जाते हैं, अमरूद धोके खाए जाते हैं, हर चीज धोके खाई जाती है उधर। तो हमारे यहाँ तो बड़ी कॉमन है ये कि धोके खाए आपने, हमने धोके आम भी धोके खाए हैं, केले धोके नहीं खा सकते, अमरूद जो है वो धोके खाए हैं। जी जी,
3: हाथ धोके खाना खाते हैं, हाथ धोके खाना खाते हैं,
4: हाथ धोके तो पीछे पड़ते हैं,
1: पीछे भी पड़ते हैं,
3: हाथ धोके ना हाथ धोके पीछे पड़ते हैं।
1: देखिए, मैं जिया भाई को किस दौर में ले गया हूँ, ये सिर्फ अब वही बातें कर रहे हैं।
3: मैं सोच रही हूँ उस वक्त कुछ संजीदा से हो जाते हैं, बीच में सोच में मुझे लगता है वो पिछली दुनिया में चले जाते
1: हैं,
3: कुछ खंगाल नहीं चले जाते
1: हैं। इनकी माजी की बड़ी यादें हैं, मैं क्या जिक्र करूं, बहुत सारे लोग इनके छोड़ के कहीं चले गए, कोई कहीं चले।
4: मुझे माजी की सारी मोहब्बतें याद आ रही
1: हैं। सर अभी आपको याद अभी करते हैं कॉल के बाद, कुछ बात याद आ गई,
3: कितना जुल्म हो गया, ज्यादा सब कुछ याद आ गया।
4: अनिला जी, आपको तो पता ही है ना मैं कितना टूटा हुआ इंसान हूँ।
3: भोला
4: भाला नहीं, टूटा हुआ इंसान,
3: वो टूटे फूटे तो आप हैं, हमें
1: अच्छा आप कॉल काफी तवील हो गई, लेकिन फिर भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मतलब अमूमन लोग जो है ना रात को इस वक्त रेडियो शो क्यों सुनते हैं?
3: क्यों सुनते हैं?
1: हाँ, और कौन लोग सुनते हैं?
3: कौन लोग सुनते हैं
1: जी?
4: अच्छा, आज ये सेम सवाल ना मेरे वालिद साहब भी मुझसे, अच्छा मैंने उनको कहा कि मैंने 12 बजे शो करने जाना, तो वो कहते हैं कि 12 बजे कौन जाता है शो करने और 12 बजे सुनते कौन लोग होंगे?
3: तो वो सुनते होंगे ना जिनकी कोई नहीं सुन।
4: मैंने कहा, मैंने वाले साहब से कहा कि हम लाहौर में रहते हैं, लाहौरी कहाँ पे 12 बजे सोते हैं? कहते हैं तुम्हारा प्रोग्राम कहाँ कहाँ पे आता है? मैंने कहा पूरे पाकिस्तान में आता है। कहते फिर लाहौरी नहीं सोते लेकिन बाकी पूरा पाकिस्तान तो सोया हो रहा है। तो वो बस इसी वजह कि वो मुझे चाह रहे थे कि ये 12 बजे बंद करो ये सब कुछ, ये तुमने क्या सिलसिला शुरू किया हुआ।
3: तो बड़े तो
4: बताएं अनिला जी, क्यों जाग रही होती हैं 12 बजे तक, क्यों ये सुन रही होती हैं रेडियो शेटी?
3: मेरी को सुनता नहीं ना, जा समझा करो ना, फिर मैं सुनती रहनी है रात को, तो फिर अपनी सुनाने की कोशिश कर रही हूँ।
1: नहीं, आप कहाँ सुना रही है?
3: मैं सुना तो रही हूँ, जिया को पता है मैं बड़ी बड़ी चीजें सुना,
1: खरी खरी तो नहीं सुनाती ना, बाकी ठीक है।
3: नहीं बस वो मैं जरूरत नहीं कर सकती,
1: फिर ठीक है।
3: हाँ, मैं वो शायरी सुनाती हूँ, सॉन्ग सुनाती हूँ, बात कर।
4: चले नीला जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपने कॉल की, बहुत
3: शुक्रिया, अच्छी रौनक लगा दी आज
1: अपनी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया,
3: थैंक
1: यू।
4: आज हसीब भाई फुल अपने जोबन पे हैं,
1: हसीब भाई जोबन पे हैं, जिया भाई आज अपने जोबन पे आ गए हमारी वजह से।
4: तो क्या बात है
1: सर, वो मुझे याद आया एक आपकी पुरानी साथी होती थी धारा पटेल।
4: नहीं वो धारा,
1: हाँ,
4: धारा पटेल नहीं थी,
1: वही तो थी, दो तीन नाम थे,
4: वो कविता कुलकर्णी थी।
1: नहीं नहीं सर, धारा पटेल थी,
4: कविता कुलकर्णी थी
1: सर, एक वो भी थी, एक और थी
4: अनन्या मिश्रा भी
1: ना है ना सर वो,
4: हाँ अनन्या मिश्रा
1: सर, मैं एक नाम भूल रहा हूँ ना, वो मेंडिस करके क्या नाम था,
4: योलेंडो
1: मेंडिस।
4: हाँ बिल्कुल ठीक है।
1: अच्छा मैंने बड़ी कोशिश की सबको एक प्लेटफॉर्म पे वापस लाने की, लेकिन कुछ अभी मैंने डाली है तस्वीर उस ग्रुप में।
4: अच्छा
1: हाँ
4: है, अभी इस
1: आप भी
4: ग्रुप चल रहा
1: है, आप भी हैं?
4: कौन सा ग्रुप? नहीं मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ
1: आप।
4: अच्छा नहीं मैं नहीं हूँ
1: सर, आप खामोश हैं लेकिन है,
4: नहीं हूँ
1: सर,
4: चलें देख लेते हैं उसको भी, देख लेते हैं। मुझे याद है कि जिस दिन मेरा पहला प्रोग्राम था ना, उस दिन वो कहाँ से थे, योलेंडो मेंडिस
1: याद है?
4: मुझे नहीं याद, वो मेरे ख्याल से कोई,
1: मेरे ख्याल से पड़ोसी मुल्क से थी हमारे,
4: मलेशिया से थी या पता नहीं क्या, कोई सीन था उनका, और अंग्रेजी में शो करती थी शायद,
1: पता नहीं किस जमाने में
4: वो ना, उस दिन मेरा भी पहला शो था और वो योलेंडो मेंडिस का भी जो था ना वो पहला शो था, तो मुझे इस वजह से ना वो नाम याद रह गया कि पहले पता नहीं मेरा था, उसके बाद उसका था, ये उससे मतलब आगे पीछे थे ना, पहले हम दोनों के प्रोग्राम थे।
1: आरजे अलीना चौधरी भी हुआ करती थी,
4: वो अभी भी हैं,
1: अभी भी हैं, अभी भी मतलब रेडियो पे नहीं
4: आते ज्यादा, अब तो वो टीवी पे ड्रामों पे
1: लिंक्स भेज रही होती है।
2: ये भी है, अच्छा है, वो बड़ा मजेदार
1: अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं,
2: कहाँ लेके जा रहे हैं आप बार बार मुझे?
1: सर आप जहाँ रुख मोड़ना चाहें आप अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं।
2: क्या बात है, एक कॉल लेते हैं, एक और।
4: अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
5: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
5: कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, ये रेडियो पाकिस्तान है।
5: जी बिल्कुल।
1: कैसे हैं आप?
4: कहते जी बिल्कुल।
5: ये लाहौर से खबरें सुने?
1: नहीं नहीं, लाहौर से नहीं, आप हमारे मुंह से सुने।
5: सुनाए
1: सर, क्या सुनना चाहेंगे बताएं आप?
5: मैं जया की तबीयत पूछने आई हूँ, तो अपने प्यारे से भाई से मिलने आई, इतनी प्यारी आवाज लेके आए।
1: बहुत शुक्रिया।
5: मैंने तो सारा आपको पहली दफा सुना, बहुत खुशी हो रही थी। अल्लाह सुने इन्नी अच्छी इंसान बनाए ने, सूरत ना सीरत, सीरत ना सूरत।
1: आप रेडियो वालों की अक्सर जो है ना, सूरत अच्छी हुआ नहीं करती, ये सिर्फ अदाकारों का कमाल है।
4: रेडियो वालों की शक्लें देख के ना अक्सर लोगों के दिल नहीं टूटते,
1: दिल टूट जाते हैं।
4: हाँ सही कह रहे हैं। मुझे याद है, मैं बुशरा जी, मैं ना आपको एक वाक्या सुनाता हूँ। नया नया मैंने रेडियो ज्वाइन किया, ये पुरानी बात है, तो तब ये फेसबुक का और सोशल मीडिया का इतना कल्चर नहीं था और कम लोग सोशल मीडिया पे थे और ज़्यादातर लोग रेडियो सुनते थे। तो जो अच्छे फ़ैन हुआ करते थे वो अक्सर ना फिर वक्त निकाल के, अगर कोई रेडियो पे कोई तकरीब होती थी तो तकरीब में ना वो फिर कोशिश करते थे कि किसी तरीके से वो पहुंच जाएं और फिर अपने फेवरेट आरजेज और डीजेज वगैरह से मिलें। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि इसी तरह से कोई 101 की शायद सालगिरह थी, तो तमाम रेडियो पाकिस्तान लाहौर के आरजेज इकट्ठे हुए हुए थे। तो इसी तरह से ना कुछ हमारे लिसनर्स आए और हमें पता चला कि उस तरह ना लिसनर्स आ रहे हैं, तो वो लिसनर्स आए, उन्होंने आके पूरी तकरीब वगैरह सारी अटेंड की और अटेंड करने के बाद वो चले गए। बाद में ना हमें उड़ती उड़ती खबरें मिली कि वो कहते हैं कि यार हम तो पता नहीं क्या सोच समझ के आए थे उधर जाकर, सबकी शक्लें देख के ना हमारे दिल ही टूट गए कि यार ये कैसे हार जे है मिंगे चिपे से।
5: तो मुकम्मल करें,
4: तो ये बस मुकम्मल कर ली। वो मुझे ना बात आज तक नहीं भूलती कि वो ना उनके मुझे मुझे अल्फाज याद है कि यार मेरा हमारा तो दिल ही टूट गया कि कैसे हार जाते विंगे चिब्बे से। तो
5: होता जी है जी। नहीं नहीं बात सुनो, खूबसूरत दिल को खूबसूरत दिल ही सुनते हैं।
4: वाह,
5: तो जो सोता तो जाओ तो फिर तो तुसी अपने घर से ही सोता
4: है, तो तुसी करना अदबी गल। लेकिन
5: मुझे भी ना आप जैसी तकलीफ नहीं गई है, मैंने उस दिन आपको सुना था, मैं हर दुआ की अपने प्यारे से भाई के लिए, मैं कह लिया मेरी भी जिंदगी भरा बड़े महंगे होंगे, बड़े महंगे होंगे। तो मैंने ना आप काफी अरसे बाद ही आपको सुना, तो मैं बड़ी परेशान थी, लेकिन आप सुना मैं बड़ा दिलो राजी हुआ। जो मेहमान मीठे से लेके आए इन्होंने तो आपका मेरा दर्द ही दूर कर दिया।
1: बहुत शुक्रिया जी, ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, हमारा मतलब इसमें कुछ भी कमाल नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको।
5: नहीं नहीं भाई, नहीं,
1: ये, नहीं, नहीं, आप, नहीं। आपका जो है ना हुस्न समात है के
5: अल्लाह जानता है, मुझे इतना दिल आजी होता ना मीठी बात सुन के, मैं करी तो मेरा दिल बहुत बाग हो जाता, मैं तो मेरे सोने के वीर को इतना सोना जरूर आ गया।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
5: तो मैं शहादत करूँ थोड़ी सी आप दोनों भाई के साथ कर लू, नवा है सोने मेरे लिए तो आप नए हैं।
4: अच्छा चले ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया बुशरा जी, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
6: घुंगरू नचा मिल जावे प्यार तेरा, बन बन के घुंगरू नचा मिल जावे।
2: गाना सुनते हैं जी, खूबसूरत गाना, और फिर इसके बाद मिलते हैं, साथ साथ रहिएगा 101 पे। मेरा नाम जियान जुम है और मेरे साथ हैं
1: अब्दुल हसीम मंसूरी।
2: इस गाने के बाद मिलते हैं।

0: अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, अब तुम आए हो, अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: कौन बात कर रहे
1: हैं? शब्बीर हुसैन बोल रहा हूँ जी। भी मैं जोड़े पुल से, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है।
0: शब्बीर साहब
1: तो बहुत अच्छा है। थोड़े प्रोग्राम में मैं सुनाना चाहता हूँ, थोड़े बोलो आपको।
0: जी सुनाइएगा।
1: दिल लगा दिल लगी

0: के लिए।
1: वाह।
0: जो लटकना था वो बिकर ढाला, जो लटकना था वो बिकर ढाला, हमने जालम तेरी

0: के लिए।
1: क्या बात है शब्बीर भाई, छा गए आप।
0: की बात करते हो तुम, फरिश्तों की बात करते हो, हम तरसते आदमी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी।
1: क्या बात है शब्बीर भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ा जबरदस्त गाना सुनाया आपने,
0: बहुत मेहरबानी।
1: रात के इस पहर में इतना रात के इस पहर में इतने दुखी आप क्यों हैं?
0: ये आपका प्रोग्राम भी सब सुनते हैं, हम भी सुन रहे हैं, तो हर बंदा कोई ना कोई उसको दुख होता है।
1: यानी आपको भी दुख है कोई?
0: जी जी, मुझको भी दुख है।
2: अताउल्ला साहब से जो है ना एक बात याद आ गई मुझे।
0: जी जी।
2: वो पर्दे के पीछे में पर्दे के आगे, ना वो आगे आए ना मैं जाऊं पीछे।
0: वो पर्दे के पीछे ना पर्दे के आगे,
1: छेड़ दिया
0: आपने। आगे ना मैं जाऊं पीछे, ना मैं जाऊं पीछे, वो आगे बढ़ेंगे तो
2: कुछ भी ना होगा,
0: कुछ भी ना होगा।
2: मैं पीछे हटूंगा तो दुनिया हंसेगी।
0: जी हाँ, वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी ना होगा, मैं पीछे हटूंगा तो दुनिया हंसेगी। मैं फिर किसी दिन फिर जिंदगी रही तो आप से बात फिर
1: जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप आए।
0: बाजी लीला भी आई थी, उस उनकी बात प्यारी है माशाल्लाह। वो बाजी साजदा आती हैं, एक और लड़की है वो भी आते हैं आपके प्रोग्राम में।
1: हाँ, वो लड़की भी आती होती है, सही कह रहे हैं आप।
2: सर जिया भाई की मतलब खासियत ही है, हम तो कराची वाले हैं, हमें सिर्फ लड़के कॉल किया करते हैं। जिया भाई की यहाँ पे महफिल जो है ना लगी रहती है।
1: हाँ यार, मुझे आती खवातीन की कॉल है। वो तो वैसे ही आज वो शब्बीर साहब की कॉल,
2: मेरी वजह से आई है ना शब्बीर साहब की कॉल।
0: तो ये भाई जो आपके घर से आए हैं ये भी बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं।
2: शुक्रिया।
1: अच्छा, मैं आपको वैसे बताता चलूं, शब्बीर भाई बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपसे फिर इंशाल्लाह बात होगी। ठीक है,
0: बहुत
1: थैंक यू।
0: पूरे पाकिस्तान जिंदाबाद,
1: पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मैं आज हसीब भाई को ना बिल्कुल भी गेस्ट कंसिडर नहीं कर रहा,
2: करना भी नहीं
1: चाहिए। हसीब भाई जो है ना वो गेस्ट नहीं है, वो खुद 101 के बड़े जबरदस्त आरजे हैं।
2: नहीं नहीं, और ये आपने अब जो है ना ये,
1: और इस वक्त हसीब भाई मेरे को होस्ट हैं बेसिकली।
2: वाह वाह वाह,
1: गेस्ट नहीं है। और मैं आज बड़ा रिलैक्स हूँ, क्योंकि जब आप कोई गेस्ट आया होता है ना तो आप बड़े
2: टेंशन होती है
1: आपको गेस्ट के साथ। इस वक्त मुझे, मैं बड़ा, जब को होस्ट होता है ना तो आप ये समझ लें कि आपने अपने साथ साथ ड्राइविंग सीट उसको भी दी होती है। क्या ठीक है, अगर मुझे नहीं हो रहा ना तुम भी इसको देखो, जहां मर्जी लेके जाओ, जैसे मर्जी लेके जाओ। जो गेस्ट होता है ना उसको आपको खुद प्ले करना पड़ता है, उसको लेके चलना पड़ता है। तो हसीब भाई आज मेरे प्रोग्राम में लाहौर में गेस्ट जरूर हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में वो मेरे को होस्ट
2: हैं। ऐसा ही है, और ये 101 फैमिली है।
1: Exactly.
2: चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, भावलपुर हो, या 101 इंटरनेशनल हो।
1: बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
2: सर कॉल आ रही है,
1: कैसे कर लेते हैं यार,
2: कोशिश करते, सीखा आपसे।
1: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: ईदू कबूल, क्या हाल है?
3: मैं अल्हम्दुलिल्लाह।
2: देखिए आप देखिएगा कैसे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ हो?
3: लाहौर पहचान ली, यहाँ पे भी, लाहौर पे भी।
2: तो क्या मतलब लाहौर में आवाजें तब्दील हो जाया करती हैं?
1: यार कितना,
2: मैंने कहा अलग डिजाइन का ही। इस डिजाइन के आना भी बंद हो गया फैक्ट्री में।
1: वाह।
2: और बर्तन बर्तन धो लिया सारे ईदू कबूल?
3: हाँ बिल्कुल, बर्तन बर्तन सर्तन वगैरह सब,
2: भाभी ने सब धुलवा लिए हैं, सारे काम करवा लिए हैं, कपड़े धो दिए।
1: इनके नाम क्या है?
2: इनका नाम ईदू गबोल है।
1: ईदू,
2: ईदू,
1: ईदू गबोल,
2: गबोल। ये एक वो काली बिल्ली है।
1: अच्छा।
2: अगर किसी की कॉल ना मिल रही हो तो तीन दफा नाम लेके अपने फोन पे दम कर दे तो उसकी कॉल जिंदगी भर नहीं मिलेगी।
3: रेहान भाई के टोटके
2: है। रेहान भाई की क्या टोटके, रेहान भाई सीख, हम रेहान भाई से रहे सारी चीजें। तो भाईजान क्या हाल है आपके, कैसे हो आप, खैरियत से हो?
3: मैं
2: अब देखो बात बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मैं जिया भाई को नहीं बता रहा कि आप अक्सर बर्गर खाते हुए पकड़े गए उधर उधर।
3: नहीं वो तो पता है सबको, पता है इस्लामाबाद पूरी
2: लाहौर में भी पता है।
3: जी जी बिल्कुल लाहौर का नहीं पता लेकिन इस्लामाबाद
2: आज पता चल जाएगा। पूरे लाहौर को बताऊंगा मैं, चीख चीख के बताऊंगा।
3: इसका मुझे कोई टेंशन नहीं हसी भाई।
2: अच्छा वो एक दफा वो हसी तो सुनाओ ना हमें।
3: कौन सा वाला?
1: यार ये मजे का है
3: मेरे ख्याल से। ये मजे का है, एक मतलब बात हो चुकी है। जिया भाई आपको याद नहीं है?
1: मुझे नहीं,
2: अच्छे लोग याद रखते हैं हम सिर्फ।
3: नहीं एक बार तो मैंने कॉल किया था जिया भाई के शो में।
2: रेहान भाई क्या कहते हैं, लाल बालों वाला आदमी?
3: लाल बालों वाले ईदू।
2: तो और ईदू सब खैरियत है, घर में सब ठीक है
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
2: मुझे बहुत सारे लोग
3: लगा आज बहुत टाइम के बाद आपको सुना। मैंने जैसे ही एफएम ऑन किया मैंने कहा ये तो भाई आसिफ भाई की आवाज, मैंने चलो सुन लेता हूं।
2: आपको ऐसे खबर नहीं आई होगी कहीं ना कहीं से पैगाम आया होगा भाई?
3: नहीं नहीं सीरियसली मैंने बस कहते ना।
2: अच्छा कौन सा आरजे कब शो कर रहा है वो इनको पता होता है? आरजे को खुद नहीं पता होता। मैंने किसी का क्यों नाम लेना है? मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि अफशा की बात हो रही है।
3: किसकी?
2: अफशा की।
3: तो आपने बताया, अभी तो बता दिया।
2: नहीं नहीं, नहीं ये हमारी अफशा इधर FM 101 लाहौर में। आप मुझे सुन सकते हैं हर जुमेरात की शाम 6 बजे से 4:45 बजे FM 101 लाहौर में।
3: नहीं लाहौर में नहीं होती, वो कराची है।
2: नहीं नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपको अपने शो का टाइम बता रहा हूँ। मैं 101 लाहौर शिफ्ट हो चुका हूँ मैं।
3: अच्छा
2: जी जी, रोज 6 बजे से 4:45 बजे तक।
3: ये कौन सा टाइम है?
2: 6 बजे
3: से
2: 4:45 अच्छा आज ईदू कबूल जल्दी से कुछ जल्दी से देखें। जिया भाई जो है वो माशाल्लाह शायरी के एक्सपर्ट हैं।
1: जल्दी से
2: जल्दी से कोई नज़म सुनाया।
1: खोल बोल देता हूँ मैं,
2: सीरियस सुनानी है लेकिन आपने
3: किसको? मैं सुनाऊं?
2: कहां कोई नज़म सुनाओ ना यार, अच्छी जैसे वहाँ कराची में सुनाते
3: हैं। कहां आते हैं आसिफ भाई, आप तो देखा हुआ है मुझे।
2: देखा हुआ है तभी तो परेशानी है।
3: आपसे तो मुलाकात हो चुकी है।
2: इसीलिए तो टेंशन है मुझे, तुम्हारी जिससे मुलाकात हुई है उसकी अखबार तस्वीर में जरूर आएगी।
3: अच्छा चलो आने दो तस्वीर में।
2: चलो अल्लाह खैर करे, दुआ में याद रखो, खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, और जिया भाई को अपनी हंसी के साथ जो है ना एंड करके बताओ। और जिया भाई को वो कह देना अपने ख्याल का ख्याल रखे वाला जुमला।
3: जी जी बिल्कुल बताऊंगा।
2: हाँ जल्दी से कहो, जल्दी बोलो।
3: अच्छा भाई अभी आप कराची से कब शो करेंगे?
2: मैं कर रहा हूँ ना कराची से ही तो कर रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही के स्टूडियो में।
3: कराची में कहाँ है अभी तो, मैंने लाहौर स्टेशन ऑन किया था।
2: कराची करो तो भी आएगी।
3: तो मैंने कराची पे अभी तो आ रही है ना,
2: तो अभी तो आ रही है।
3: अब तो नहीं मैं बोलूं, वैसे जो आम का रूटीन है जो आप,
2: तो मुझे फोन करके मेरी आवाज सुन लिया करो ना अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो।
3: नहीं फोन आप रिसीव नहीं करेंगे फिर।
2: मैं क्यों करूंगा रिसीव? तुम वो हो गया।
1: चलिए बहुत शुक्रिया ईदू, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, बड़ी मेहरबानी।
3: चलो थैंक यू सो मच। और आसिफ भाई बहुत अच्छा लगा आपको इस वक्त सुनकर,
2: बहुत शुक्रिया। और वो तो कह दो जिया भाई को
3: कौन सा वाला
2: ख्याल रखें, उनका
3: अपने
2: भी
3: ख्याल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।
1: ये तो करना ही पड़ेगा, अब जरूरी हो गया। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू कॉल करने के
3: लिए।
2: अल्लाह हाफिज।
1: ये मजे की हंसी थी।
2: हाँ ये हमारा कराची का एक अलग डिजाइन है।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: बिस्मिल्लाह करा ते वालेकुम सलाम कवा।
1: कहो।
0: हाँ जी कराची से आगे साढ़े मेहमान
2: सर, बहुत शुक्रिया जी, सलाम अलैकुम।
0: जिन्हें सुन के दिल में खुशियां हो गई है हजार। देंदा नहीं मेनू को हजार ते केड़े पासे जावा ते मंजी किथे डाम।
2: क्या बात है सर, ये आपकी मोहब्बत है जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कल वापसी अपनी
0: घूम। जिन्हें सुन के दिल में खुशियां हो गई है हजार। देंदा नहीं मेनू को हजार ते केड़े पासे जावा ते मंजी किथे डाम।
2: क्या

0: तो क्या आपका
1: सर दुआ दुआ करें सर, इससे बड़ी और क्या चीज होगी,
0: क्या खिलाने,
1: दुआ दुआ करें सर।
0: हाँ दुआ तो हम बहुत करते हैं, जया भाई को मालूम है, अल्लाह ताला इनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे,
1: आमीन।
0: तो जया भाई आप ठीक है? आप
2: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
1: हो हुए हैं
2: आप कैसे?
0: अल्लाह ताला आपकी जिंदगी तंदुरुस्ती रखे। देखे जी आपका शो जब लगता है ना तो हम जहा नहीं जाता तो जब तक बात ना कर ले आप।
2: बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, थैंक यू सो मच।
0: तो बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छे हमारे मेहमान आए, अल्लाह ताला इनकी भी जिंदगी तंदुरुस्ती रखे, बहुत ही बहुत ही दुआएं इनके लिए।
1: बहुत शुक्रिया,
0: वो आगे जिनका हमें इंतजार था, जिनके सुनने के लिए ये दिल बेकरार।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या
2: कैसे कर लेते हैं यार शहजाद भाई।
0: जिया साहब आपके लिए जी
2: जी,
0: आपको दिल से निकालू के दिमाग से, आपको दिल से निकालू के दिमाग से, आप तो रग रग में बसे हैं मेरी जान में।
1: ओहो क्या बात है जी, वाह
0: माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला रौनके राज रखे आप, अल्लाह ताला आपको बहुत ही बहुत ही खुशी दे। आप हम वन वन के जो है ना अपना बहुत खुशी होती है, हम जुड़े हुए हैं वन वन। जया भाई वैसे ये भाई उधर ही बैठे, जया मैं बैठा था
2: जी उधर ही बैठे
0: माशाल्लाह जी।
1: सर अगर छोड़नी है तो कुर्सी छोड़ देता हूँ मैं।
0: नहीं नहीं कुर्सी नहीं, दूसरी पे ना बैठ जाना, इसी पैसे रहना।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं मैंने कहा दूसरी कोई टूटी भी तो नहीं है।
0: नहीं नहीं टूटी नहीं है, सही है, मैं बैठा हूँ
1: बस। जबरदस्त फिर ठीक है
2: शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: बहुत दुआएं जी आपके लिए, अल्लाह खैर,
2: अल्लाह हाफिज,
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह।
2: मोहब्बत करते हैं लोग बहुत ज्यादा
1: आपसे,
2: सबसे
1: सबसे
2: सबसे मोहब्बत करते हैं,
1: खास मोहब्बत करते हैं।
2: मैं तो फिर डुल जाता हूँ
1: बिल्कुल हम दुआ दुआ लिखते रहे, वो दगा दगा पढ़ते रहे।
2: एक नुक्ते ने
1: महरम से
2: मुजरिम से महरम बना दिया,
1: महरम से
2: यार हमारे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट।
1: अच्छा आपने यहाँ पे अलग थोड़ा रखा,
2: हम क्यों मुजरिम बने, हम महरम बनेंगे।
1: देख ले ये फंसने वाले काम है,
2: कोई बात नहीं।
1: देखिए आप सारे पुराने जाग रहे हैं,
2: जरूरी होता है ना, देखें
1: आज सारी चीजें
2: जगह जगह महरम बनना भी जरूरी होता है।
1: चार दफा बन सकते हैं,
2: चलें जहाँ पे जितना होता है उतना तो कर लेना चाहिए ना,
1: जितनी भी मयसर हो
2: एक वक्त में, चार दफा पता है आपको
1: एक एक। हाँ बिल्कुल ठीक है।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम
3: जी। वालेकुम सलाम, वेलकम सर।
1: सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, बहुत शुक्रिया आपका।
3: अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं हैं।
1: सर कहां से बात कर रहे हैं?
3: आपकी तरह तो हम उर्दू नहीं बोल सकते क्योंकि आप काफ आयन आयन सब कुछ मिला लेते हैं, लेकिन हम आपकी तरह उर्दू नहीं बोल सकते। आप बहुत अच्छी उर्दू बोल रहे हैं सर।
1: कहां बोल रहे हैं सर, हम तो खुद सीख रहे हैं अभी।
3: नहीं नहीं कसम से कराची वाले बहुत मजे की उर्दू बोलते हैं।
1: कराची वाले तो हम भी नहीं बोलते ऐसे कराची वाले
3: सर यकीन जाने बहुत बहुत दिल खुश हुआ
1: सर, बहुत
3: आपको जिया भाई के प्रोग्राम में आने का सर, वेलकम कहते हैं
1: सर, थैंक यू सर।
2: कौन बात कर रहे हैं?
3: मैं हक नवाज बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से।
2: जी हक नवाज
1: कैसे हैं
3: जिया भाई? आखिर ढाल ही दिया ना अपने रंग में आसिफ भाई को भी।
2: नहीं अभी तो मैं हसीब भाई के रंग में ढला हुआ हूँ
1: सर, खो
3: चुके हैं। नहीं पहले वाले हसीब भाई जो पहले अपने चैनल्स पे प्रोग्राम करते थे ना उन रंग पे नहीं आए अभी हसीब भाई, अभी अब अपने अपने आपने अपने रंग में डाल लिए।
2: अच्छा
1: मतलब आपने कराची में सुना है मुझे?
3: हाँ जी मैंने एक दो दफा आपको कराची में सुना।
1: एक दो दफा में आपने पूरी सारी हिस्ट्री निकाल ली हमारी।
3: नहीं नहीं सर असल में हम वो लोग हैं जो बड़ी बारीकी सुनते हैं।
1: ओहो
2: बारीक इंसान है,
1: बारीक
2: फनकार,
1: बिल्कुल बारीक पतले से।
3: नहीं नहीं मतलब वो वाले पतले नहीं, कान के पतले हैं, कान के।
1: क्या बात है सर, मतलब ये तो बड़े टैलेंटेड लोग
2: कर लेते हैं यार आप ही सब कुछ।
3: या भाई आप ही से तो सीखे सब
2: यार, ये सारे मुझसे ही सीख रहे हैं आज
3: है? जाहिर है आप हम सबके उस्ताद है, तो हम
1: काफियों के उस्ताद है, इन्होंने बड़ी उस्तादियां की है।
2: मर्जी है फिर आपकी, आपने ऐसे कहना होता तो पहले बता दिया करें।
3: असी भाई थोड़ी सी इनकी कोई बायोग्राफी हमें भी थोड़ी सी आप सुना देना।
1: इनकी बायोग्राफी बता दूं आपको मैं?
3: हाँ
1: सर काफी सारी चीजें तो बताई, वो कुछ चीजें मुझे इशारा करके कह रहे हैं कि यार ये वाली ना बताओ, तुम्हारी भाभी घर पे सुन रही है।

0: अच्छा तो मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। एक तो ये कह रहे हैं कि 15 साल से 22 अभी हमारा आज रब्ता हुआ है।
1: जी जी, रब्ता नहीं हुआ, मुलाकात बिल मुसाफा,
0: मुलाकात यानी कि वो मुलाकात ना, मतलब बिल मुसाफा। तो मतलब फिर आपकी दोस्ती भी इतनी गहरी है।
1: बिल्कुल ऐसा ही है।
0: ये कैसे बना लिया, मैं कैसे कर लिया? नहीं जब मैं अल्लाह ना करे अल्लाह आपकी दोस्ती कायम और दायम रखे।
1: चाहत क्या है आपकी, आप हमें बताएं।
0: अल्लाह आपकी चाहत को सलामत
1: तो
0: कायम,
1: चाहत तो आपकी है, ख्वाहिश भी आप कर रहे हैं।
0: वैसे ज़िया भाई ने अभी तक आपको लाहौरी चाय पिलाई है या कि नहीं?
1: सर लाहौरी चाय में बस सुबह से आया हूँ, चाय चाय चल रही है, चाय के दौर चल रहे
2: हैं। हाँ लाहौर की चाय तो ऐसी चीज नहीं है जो पीने वाली।
1: नहीं नहीं, लाहौर की चाय ऐसी,
2: लाहौर की लस्सी है जो पीने वाली।
1: सर लस्सी भी है, वो नान चने भी है।
2: लाहौर में चाय मेरे ख्याल से
1: नहीं, चाय अच्छी भी मिलती है।
2: अच्छी नहीं, अच्छी मिलती है, लेकिन लाहौर का अगर जिक्र हो तो चाय नहीं, लस्सी का जिक्र होता है।
1: लस्सी का जिक्र भी है,
2: लस्सी का जिक्र होता है। तो नवाज थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और कुछ कह रहे
1: सर, ये आपके एहतराम में खड़े हो गए, आपको पता है, क्योंकि आपने कहा मैं रावल पिंडी से कॉल कर रहा
0: हूँ। वेरी वेल डन सर, आप प्लीज बैठ जाए, कौमी तराना नहीं पढ़ रहा।
1: नहीं सर, पिंडी वालों की कॉल पे तो अच्छे अच्छे खड़े हो जाते हैं सर।
0: मतलब पिंडी में भी आपकी कोई सीक्रेट है?
1: नहीं नहीं, सीक्रेट नहीं है सर, कुछ दोस्त है हमारे अच्छे।
0: पता चल गया जिया भाई।
2: हाँ बस सही कह रहे हो, सही कह रहे हो।
0: मैंने जुगती रग में हाथ रख ली है इनकी।
1: सर कराची वाले अपनी रगे ही तो नहीं देते, वो ब्लड टेस्ट करने वाले को रगे नहीं मिल रही होती, ब्लड निकालना कहाँ से।
0: सर बहुत शुक्रिया, खुश
2: रहें, सलामत। थैंक यू
1: जी, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज का ये था हमारा प्रोग्राम। जिया भाई ऐसे ही करते हैं आप भी क्लोज?
2: जी हाँ।
1: कॉल लेनी है, कोई शामिल करनी है?
2: नहीं है मेरे ख्याल से, हम ऑफ करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है, तीन चार में बल्कि एक कॉल ले लेते हैं, लास्ट कॉल ले लेते हैं।
1: जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? कौन कहाँ से?
3: आसिफ
1: अब्बासी, आतिफ अब्बासी साहब, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
1: जिया अंजुम कहते हैं मुझे।
3: नहीं वो आपसे तो ऑफ एयर बात है, दूसरी आवाज की बात करें।
1: मुझसे तो बात होती रहती है ना, ये हमारे कराची से दोस्त आए अब्दुल हसीब मंसूरी।
3: हाँ वो ये नाम तो मैंने नहीं सुना, लेकिन शायद ये आवाज सुनी है, लेकिन वन वन तो नहीं सुनी, कहीं और शायद सुनी है।
1: सर हो सकता है वो जो जेलर की आवाज होती है ना अक्सर उस रेडियो पे भी, उस माइक स्पीकर में भी।
2: मैं 1001 पे हुआ करता था।
3: नहीं हम 1001 ही सुनते रहते हैं, और ट्रिपल वन
2: 1001 पहले मैं उधर होता था।
3: अच्छा तो चले जहाँ भी थे, अच्छी आवाज है माशाल्लाह माशाल्लाह, रेडियो पे अच्छी आवाजें चाहिए होती
1: हैं। सर बड़े मुश्किल से ढूंढ के लाए इनको, हम कराची से खो गए थे कहीं है।
3: अच्छा बहुत शुक्रिया आपका, ऐसे हम दोस्तों को लाते हैं।
1: बहुत आतिफ साहब की तरफ से बहुत शुक्रिया, हसीब मंसूरी साहब शुक्रिया, कराची से आए।
2: ज़िया भाई शुक्रिया,
1: आपकी आपकी मोहब्बत, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। आतिफ भाई अगर आप मेरे बिहाफ अब्दुल हसीब मंसूरी का शुक्रिया अदा कर दें तो हमें बड़ी खुशी होगी।
3: बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।
1: सर हंस क्यों रहे हैं आप?
3: नहीं असल में इतना अच्छा प्रोग्राम, और हमने तो फोन मिलाने में सारा वक्त लग जाता है यार, फोन टीम के यहां तो पर वो जो जा भाई आप जो वजन पाउडर थे आपकी फेवरेट थी फराज साहब की, तो वो किसी ने मुकम्मल किया या मैं कर दूं?
2: अभी वक्त हमारे पास थोड़ा है, इस वजह से हम मुकम्मल कर नहीं सकेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में से।
1: इंशाल्लाह मुझे कहते हैं अब्दुल हसीब मंसूरी, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ज़िया अंजुम साहब जो कि FM 101 लाहौर में शो करते हैं और कराची से दोस्तों को बुलवाते हैं और दोस्तों से शो करवाते हैं। और अच्छा लगा ज़िया भाई, बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का, बात कर। मैंने आपसे कहा था कि मैं
2: आपको जाते जाते एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि
1: सर आपका शुक्रिया,
2: मैंने आपको कहा और आप फटाफट से आए।
1: सर मोहब्बत है आपकी।
2: दूसरा ये कि बहुत ही कम ऐसे होता है, क्योंकि आपको भी एक अरसा हो गया है प्रोग्राम्स करते हुए, मुझे भी एक अरसा हो गया प्रोग्राम्स करते हुए। जब हम किसी अपने को आरजे को अपने साथ बिठाते हैं ना, बड़ा मुश्किल होता है केमिस्ट्री मैच करना।
1: ऐसे ही, ऐसे ही।
2: कभी कभी होता है कि आपकी किसी के साथ अच्छी यारी दोस्ती ज़रूर होती है, लेकिन आप ना ऑन एयर माइक पे मैच नहीं कर पाते,
1: मैच नहीं कर पाते।
2: लेकिन आपके साथ आज पहली बार, एक तो हमारी पहली मुलाकात है,
1: ऐसे ही है।
2: हम वैसे बहुत अरसे से कनेक्टेड हैं, लेकिन रूबरू आज पहली बार मिल रहे हैं और तकरीबन ऑन एयर ही मिल रहे हैं। हमारी ऑफ एयर बात ना होने के बराबर हुई, हमने ऑन एयर आके ही बातें जातें की हैं। और यकीन जाने इतना कंफर्टेबल मैंने महसूस किया आपके साथ, और इतना मजा है, और मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ,
1: सीखा हमने ये,
2: मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि हम पहली बार कंबाइन शो कर रहे हैं।
1: ऐसा ही है, ऐसा ही है।
2: तो क्या बात
1: है
2: आसिफ भाई, थैंक यू सो मच,
1: आपका बहुत शुक्रिया, तमाम सुनने वालों का शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से रابطे में रहेंगे, दुआ करते रहें, जिन्होंने पसंद किया उन लोगों का शुक्रिया, और FM 101 लाहौर के जितने भी सुनने वाले हैं उनसे मैं हमेशा अपने शो के आखिर में वही एक शेर अर्ज करता हूं, क्योंकि मैंने इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है कि बहुत सारे मौके आएंगे, आपको गलत चीज़ें होती भी नज़र आएंगी, बहुत सारे मामलात गलत होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन जो आपने करना है वो अपने तरफ से अपना अच्छा अमल कर देना है, वो ठीक हो या ना हो लेकिन आपने उसको करना है। तो इस पर एक शेर है जिसपे मैं अपनी बात को भी ख़त्म करता हूँ और ज़िया भाई के हवाले करता हूँ कि शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। बाय बाय, टाटा शब्बा खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
2: बहुत शुक्रिया तमाम सुनने वालों का, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे फिर आपसे मुलाकात होगी रात 12 से 2 प्रोग्राम हरफ जुनू में। तब तक के लिए मुझे ज़ियान जुम को दीजिए इजाज़त, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।

तुम्हारे लिए चार पायों में भी इब्रत और निशानी है कि जो उनके पेटों में है उससे हम तुम्हें दूध पिलाते हैं और तुम्हारे लिए उनमें और भी बहुत से फायदे हैं और बाज को तुम खाते भी हो। और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार होते हो।

0: मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती थीं और तुम उल्टे पांव फिर फिर जाते थे।
1: मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून,
0: उनसे सरकशी करते, कहानियों में मशगूल होते और बेहुदा बकवास करते थे।

0: हूं
1: ताकि मैं उसमें जिसे छोड़ आया हूं नेक काम किया करूं। हरगिज नहीं, ये एक ऐसी बात है कि वो उसे जबान से कह रहा होगा और उसके साथ अमल नहीं होगा, और उनके पीछे बरजख है जहां वो उस दिन तक कि दोबारा उठाए जाएंगे रहेंगे।

0: मोमिनों अपने घरों के सिवा दूसरे लोगों के घरों में घर वालों से इजाजत लिए और उनको सलाम किए बगैर दाखिल न हुआ करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है, और हम ये नसीहत इसलिए करते हैं कि शायद तुम याद रखो।
1: फिर